0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 20% चांस है बारिश के आज, लेकिन आज का सनसेट होगा 7:26 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुलाब का स्वागत करते हैं आज फिर से इस आर में, यानी कि सेकंड आर शुरू हो चुका है। मेरा नाम केतन है, मैं हूं 3 बजे तक। बहुत सारी बातें करेंगे, एक सवाल किया था मैंने थोड़ी देर पहले और वो ये था कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर में किस टेम्परेचर पर सेल्सियस जो है, मतलब किस टेम्परेचर सेल्सियस पर प्योर वाटर बॉयल हो जाता है, कितने डिग्री तक जाएगा हीट, इतने डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तो वहां पे जाके ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जवाब दीजिए आप मुझे 5599 पे। अभी वैसे ज्यादा जवाब मिले नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट मोर। वैसे मैंने पोस्ट भी डाला फेसबुक पे, भी जाके इसका जवाब दे सकते हैं। बने रहिए, बहुत सारी बातें होगी बॉलीवुड से लेके कुछ लेटेस्ट अपडेट अबाउट आवर कंट्री, एंड यस आप बने रहिए, एक से बढ़कर एक गाने यहाँ पे चलने वाले।
0: बचाओ क्या,

0: लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे मैसेज भेज दीजिए 5599 पे. पर यस एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि पॉडकास्ट के बारे में, आज के दिन 5 बजे 5 से 6 के बीच सनी कौशल, उनसे बात होने वाली है जो कि चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द इंडियन न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और वो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्रियल एडवाइजरी ग्रुप ऑन रिटेल क्राइम एज वेल. उनसे बात हुई है, बात होगी अबाउट द कीवी बिजनेस ओनर्स वांट फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और क्या चेंजेस कुड बी इट ईजियर टू रन बिजनेस, टैकल रिटेल क्राइम और एम्प्लॉयज को सपोर्ट मिलना और इकोनॉमी को ग्रो करना. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ड्राइव लिख के 5599 पे भेज सकते हैं. बट यस, व्हाट आर बिजनेस आस्किंग फॉर द इलेक्शंस एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज, ये सारी बातें उन्हें बताने वाले हैं. सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप बिजी हैं तो थोड़ा सा इफ पॉसिबल आप टाइम निकाल दीजिए 5 से 6 के बीच, बिकॉज गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ऑफकोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें भी होने वाली है, बिकॉज ऑफकोर्स इलेक्शन टाइम आने वाला है एंड यू विल बी गिविंग वोट. सो बेस्ड ऑन वॉट? बेस्ड ऑन कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, बिकॉज नॉट नेसेसरीली आप हमेशा एक्टिव रहते हैं टू नो कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या इंप्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं हुई है. सो यस, इसके जरिए जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके जरिए एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत सारी बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. सो उसके थ्रू यू कैन मेक अ डिसीजन. पर यस, मेक श्योर आप 5 से 6 के बीच कनेक्टेड रहिए, बिकॉज सैंडी एंड रुजबे यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे हम पे. जी हाँ, एंड साथ में ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट शो. अगर आपको विजय पूजा की कन्वर्जेशन सुननी है रिगार्डिंग वॉट डज सक्सेस एक्चुअली मीन, तो आप उसे सुनने के लिए मुझे BF लिखे और 5599 पे भेज दीजिए. बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन ऑन 5599.
1: With Ketan.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हाँ.

0: भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: At PB Tech, they like to cut out the middleman so you pay less. Smart sourcing means sharper pricing on top tech. Search pbtech.co.nz to see how much you can save.
6: Check with PB Tech.
7: MediaWorks Complaints. How can I help?
8: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
7: Nice.
8: And you talked me into creating this funny character.
7: Great.
8: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
7: Are you?
8: Yes.
7: Are you Bobby the Baker?
8: Yes.
7: What's that thing you do again?
8: Stop it.
7: You bring the mouth.
8: Stop it.
7: I'll bring the pie.
8: Stop it, please.
7: Okay.
8: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
7: So what's the problem?
8: My name's Bruce.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
11: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
12: Lunchbox with Ketan.
13: मुझे पसंद है लड़का।
12: हम। Lunchtime Rant Line.
14: Well, ये रही बातें और Lunchtime Rant Line के लिए जो मैंने मैसेज पिक किया है वो है मीना का। मीना जी कहती हैं, I am from Manukau. My rant is about people who borrow your phone charger and somehow forget that they have bought it. They have borrowed it. My colleague asked for mine because her phone was almost dead. I gave it to her in the morning and by the end of the day she had already gone home with it. Now I am the one walking around the office looking for the charger. Wow. Well, yes, classic to hai baat. Charger mango to bas 10 minute ke liye aur fir wo charger aapki property se unki permanent property ban jati hai aur jab wapas mango to bolenge, "Oh, sorry. Mere bag mein reh gaya tha." Bhai charger wapas karna bhi yaad rakhne padta hai yaar. क्या यार, तो कर सकते हो ना, इट इज नॉट वेरी हार्ड, राइट? बट एनीवेज, आई मीन मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट टाइम पता है क्या लिखना है, आपको या तो नाम लिख देना चाहिए या फिर जस्ट यू नो इंश्योर कि वो किस टाइम जा रहे हैं, तो ही जस्ट आस्क हर बिफोर ओनली। बट यस, कभी कभी चार्जर की रिक्वायरमेंट तो होती है, राइट? एक और आइडिया आपको दे सकता हूँ, दैट इफ दे नीड द चार्जर, व्हाई डोंट यू आस्क देम कि भाई तू यहीं चार्ज कर ले एंड देन यू कैन गो। सो इट दिस वे क्या होगा, ऑब्वियसली वो फोन तो नहीं भूलेंगे। एंड देन यस, आपका केबल जो है चार्जिंग केबल वो भी मिस नहीं होगा, वो भी गलती से उनके बैग में नहीं जाएगा। वो देते हैं
12: लंच के मंच पे। टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Well, yes, 27 सितंबर को न्यूजीलैंड में नेशनल और लेबर दोनों पार्टी ने ऑफिशियली अपनी 2026 इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दी थी और अब इलेक्शंस के लिए कैंपेन का पूरा फेस शुरू हो चुका है। ऑकलैंड में नेशनल लीडर क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी पार्टी को 10 पॉइंट प्लेज कार्ड प्रेजेंट किया है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, नो न्यू टैक्सेस, कीवी सेवर चेंजेस, पेड पेरेंटल लीव, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉ एंड ऑर्डर जैसे इश्यू शामिल है। लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने साउथ ऑकलैंड में कैंपेन लॉन्च किया है और अनाउंस किया है कि अगर लेबर इलेक्ट होती है तो न्यूजीलैंड में रहने वाले एलिजिबल स्टूडेंट लोन्स बोरोवर्स को लोन का 10% राइट ऑफ किया जाएगा। दोनों मेजर पार्टीज का कैंपेन लॉन्चेस के साथ अब इलेक्शन से पहले अगले कुछ हफ्तों में पॉलिसीज और कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमी, हेल्थ केयर और हाउसिंग जैसे इश्यूज पर डिबेट और कैंपेनिंग और तेज होने वाली है। व्हाट यू थिंक अबाउट दीज ऑफर, द काउंटर ऑफर्स? जवाब दीजिए मुझे आप 5599 पे।

0: वेलकम बैक। वेल यस, आप बने रहिए बिकॉज बॉलीवुड की खबर में लेके आने वाला हूँ। बॉलीवुड से बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खबरें लेके आती, कुछ फिल्में जो हैं, हनुमान अंश अभी भी कमाल कर रही है। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट वो लेके आते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी लेके आए और इतना कलेक्शन जो है लिटरली बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि मैंने आपको लेटेस्ट बताया था कि क्या डिसीजन लिया है उनकी जो प्रोड्यूसर है रिगार्डिंग व्हाट शी विल बी डूइंग। एंड एज आई सेड, क्यों एक सिंगर है, उन्हें फाउंड किया था टुवर्ड्स यू नो इन द ट्रेन स्टेशन, जो उन्हीं की मूवी का गाना गा रहे थे। एंड देन सम हाउ दे ऑल्सो गॉट टू सी एंड उन्होंने डिसाइड किया दैट ही दे विल ट्राई टू फिक्स हिज आई थ्रू यू नो द मनी व्हाट दे हैव रिसीव्ड बाय टिकटिंग एंड ऑल। बट सच अ ग्रेट गेस्चर, राइट। वेल, बॉलीवुड में और भी खबरें मैं लेके आऊंगा थोड़ी देर में, आप बस बने रहिए। अमेजिंग खबर, वैसे कल एक बहुत ही बड़ी फिल्म भी आने वाली है, कौन सी पता है?
1: क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका

0: Sandy and Rusby on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं।

0: loan, commercial loan or construction.
1: MediaWorks Complaints. How can I help?
2: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
1: Nice.
2: And you talked me into creating this funny character.
1: Great.
2: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
1: Are you?
2: Yes.
1: Are you Bobby the Baker?
2: Yes.
1: What's that thing you do again?
2: Stop it.
1: You bring the mouth.
2: Stop it.
1: I'll bring the pie.
2: Stop it, please.
1: Okay.
2: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
1: So what's the problem?
2: My name's Bruce.
3: Advertise with MediaWorks.
1: New Zealand listens to us.
4: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
5: Lunchbox with Ketan.
6: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
5: इसके पीछे हम लंच के मंच पे
7: एक नई फिल्म आने वाली है कल, गेम ओवर। वेल बॉलीवुड, एक बॉलीवुड की जो लोकल न्यूज चैनल है उनकी तरफ से एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा है कि गेम ओवर नाम का नया सॉन्ग रिलीज किया है ठीक एक दो दिन पहले जब रिलीज होने वाली है दृश्यम द कंक्लूजन। सॉन्ग को कर्मा ने सिंह कंपोज और राइट किया है और इसका थीम जो है सालगांवकर फैमिली के अराउंड सस्पेंस को हाईलाइट करता है। सवाल यह है कि क्या उनका गेम सच में ओवर होगा इस बार या नहीं। फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और जयदीप अलावात लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं और अभिषेक पाठक ने इसे डायरेक्ट किया है। दृश्यम 2, जस्ट टू रिमाइंड यू, कल 2 अक्टूबर को द कंक्लूजन के नाम से रिलीज होने वाली है। दृश्यम द कंक्लूजन सिनेमा घरों में आने वाली है। सो यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो एंड वॉच दिस फिल्म। मैं बहुत हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत हूँ।
5: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4 NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वेल, एक सवाल किया था मैंने लास्ट आवर में कि कितने डिग्री सेल्सियस पर अगर आप पानी को गर्म करेंगे तब जाके पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। एंड यस, एवरीवन्स हैड अ ग्रेट आंसर, कुछ कुछ का है बट इट्स ओके, आप आस पास जरूर हैं। सो यस, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, 100 डिग्री सेल्सियस पर आई थिंक समवेयर अराउंड 210 और समथिंग फ़ारेनहाइट, वहाँ जाके ये जब होता है तब जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है पानी। सो सही है ना, लाइक इट इज़ वेरी वेरी ऑसम। वैसे एक सवाल मेरा यहाँ पे पता है क्या एक और है, वो ये है कि मार्वल की फिल्म आ रही है डूम्सडे, एंड आई वांट टू आस्क कि कौन से वो एक्टर्स हैं जो मार्वल में मार्वल सीरीज में और यू कैन से दैट मार्वल की जितनी मूवीज हैं मार्वल कैरेक्टर्स में उसमें उन एक्टर्स ने दो अलग अलग किरदार निभाए हैं, यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर निभाए हैं। ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं? ऑब्वियसली यू नो, एक तो अभी डूम्सडे में विलन का रोल कर रहे हैं, सो यू नीड टू राइट डाउन द नेम एंड सेंड इट टू मी 5599 पे। बट वो अकेले नहीं है, और भी हैं, भेजिए मुझे 5599 पे।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: क्या हाल नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम बोलो आपका स्वागत करते हैं आज के इस फिर से लंच बॉक्स शो में। बल यस बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है, गपशप करने हैं, एक से बढ़कर एक गाने चलाने हैं यहाँ पे। शुरुआत करेंगे एकदम धुआंधार गाने से और उसके बाद बात करेंगे और भी। पर ये सार में आपके लिए स्पोर्ट्स खबर भी लेके आऊँगा, लेटेस्ट खबर भी लेके आऊँगा और गाने भी दमदार चलते रहेंगे, टेक टॉक की बातें भी होगी यहाँ पे। सो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
1: बचाओ क्या

0: अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। मकेटू पाइज, जो बे ऑफ प्लेंटी का एक काफी वेल नोन पाइज ब्रांड है, पाई ब्रांड है, सेल के लिए जा रहा है और इस डिसीजन से 21 फुल टाइम जॉब्स पोटेंशियली अफेक्ट हो सकती है और इधर मे बी द अदर पर्सन माइट हायर देम अगेन, बट अगेन थोड़ा बहुत तो टेंशन में रह गई माहौल। कंपनी के करंट ओनर मोंटाना ग्रुप ने बताया कि मकेटू फैक्ट्री का जो लीज है वो दिसंबर में खत्म हो रहा है और पुरानी फैक्ट्री अब फ्यूचर प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है, उसे प्रैक्टिकली रीबिल्ड करना पड़ेगा। मकेटू पाइज को मोंटाना ग्रुप ने लेट 2024 में लिक्विडेशन के बाद खरीदा था और तब से ब्रांड ने काफी ग्रोथ की है। अब पाए 600 से ज्यादा पाए वार्मर्स और 200 से ज्यादा सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है, बट अब कंसल्टेशंस प्रोसेस चल रही है और नेक्स्ट ओनर डिसाइड करेगा कि बिजनेस मकेटू में कंटिन्यू होगा या किसी और लोकेशन में। बट हैव यू ट्राइड मकेटू? मैंने ट्राई नहीं किया वैसे, बट आई हैव हर्ड अ लॉट गुड थिंग्स, गुड टेस्ट अबाउट दिस पाए। बताइए मुझे अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसी लगी। लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे। सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड ब्रिंग्स यू वैलेंटाइन्स बफे रेस्टोरेंट लाल्स ट्रांसपोर्ट इन राम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 होस्टेड बाय एनजेड सनातन स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम सितंबर 30th ओकलैंड कम्स अलाइव विद सोकर नेटबॉल वॉलीबॉल एंड गोल्फ टीम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड फिजी ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड अमेरिका कंपीटिंग अक्रॉस बिल मैकिनली पार्क एंड लोकल वेन्यूज यूनिटी थ्रू स्पोर्ट कल्चर एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्ट टूनमन Jason Jiten Lal on 021-452-503
1: followed by nyfservices.com professional visa services and baitcaps.com.
2: Stay tuned to Hub, your official media partner.
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
7: हे नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, फिर ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
9: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
7: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
11: दिस इज वेयरहाउस कंट्री। We're on your way home from work, school, or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread, and milk at the best price in the country. From, well...

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
0: हम skip your replay.
3: Not your fault. Attention Uber drivers. Well, yes, अगर आपने क्लेम कर दिया है not your fault सर्विस में तो it is right time for you. I mean, it is time for you just to wait for the call from the claims manager, जो कि आपसे टच में रहेंगे या फिर कॉल या फिर ईमेल के थ्रू. एंड यस, अगर आपने नहीं किया है तो टेक इनटेक 4 शुरू हो चुका है, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं. मेक श्योर आप उन्हें कॉल नहीं करें बिकॉज दे आर सो बिजी एंड द हाई चांसेस दैट दे माइट नॉट बी एबल टू पिक अप योर कॉल्स. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज आप nyfservices.com पर जाइए और उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए उसके ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू वेट फॉर द आंसर और एनीथिंग लाइक दैट. यू जस्ट अप्लाई एंड देन जस्ट वेट फॉर देम टू रिप्लाई बैक, बट दैट विल बी द बेस्टेस्ट वे एज ऑफ नाउ.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेल, मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिन्होंने दो या दो से ज्यादा बार अलग अलग किरदार में रोल निभाया इन द मार्वल सीरीज, मार्वल मूवी सीरीज। सो यस, गेमा चैन ये पहला नाम आया है। मिनी एरवा कैप्टन मार्वल में इन्होंने रोल किया था, और उसके बाद इटर्नल्स में सर्सी का भी रोल इन्होंने निभाया था। उसके बाद मिशेल गियो, एलिटा ऑगर्ड, और जिन्होंने एलिटा ऑगर्ड जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में थी, और यिंग नैन शैंगची में भी इन्होंने रोल किया था। उसके बाद केनेथ चोई जो कि जिम मोरिटा है, इन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और उसके साथ ही प्रिंसिपल मोरिटा स्पाइडरमैन होमकमिंग इसमें इन्होंने रोल निभाया था। लॉरा हेडॉक ऑटोग्राफ सीकर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में इन्होंने रोल निभाया था, उसके साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 में मेरिडिथ क्विल का रोल निभाया था। उसके साथ एल्फर वुडर्ड मीरियम शर्फ जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी थी, लेकिन मारिया दिलार्ड ल्यूक केज टीवी सीरीज में भी थी। और उसके साथ ही रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो कि टोनी स्टार आयरन मैन का तो किरदार निभाए है, लेकिन इस बार वो डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम का भी किरदार निभाने वाले हैं। वैसे एक और थे क्रिस हेवेंस भी थे एक्चुअली दो रोल में, वो खुद कैप्टन अमेरिका तो थे ही लेकिन वो फैंटास्टिक फोर में भी थे, बट ऑब्वियसली नॉट इन दिस वन, एक अलग वाली सीरीज थी। सो यस, आप मुझे बताइए वो कौन सी वाली सीरीज थी जिसमें इन्होंने रोल निभाया था। 555 पे

0: Well, yes, India ke spin bowling coach Siraj Bahutule ne Rohit Sharma aur Virat Kohli ke team mein impact ki tarif ki hai. Unka kehna hai ki dono ka experience young players ke liye bahut hi zyada valuable hai aur dressing room mein unki presence se youngster ko kafi seekhne ko milta hai. West Indies ke against first ODI mein Virat Kohli ne 139 runs banaye jabki Shubman Gill ne 110 run banaye aur India ne match 8 wicket se jeet liya. कोहली ने इसी मैच में 15,000 ओडीआई रन बनाए और वो दूसरे खिलाड़ी बने हैं दुनिया के. उसके बाद मेरे ख्याल से पहले तो सिर्फ एक ही है जो कि है सचिन तेंदुलकर, जिनके 18,000 रन हैं. एंड या इट्स और उसके साथ ही उन्होंने बहुतुले ने कुलदीप यादव की भी तारीफ करी है, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे 40 रन पे, विच इज़ ग्रेट यार, विच इज़ ग्रेट. वेल यस, लेट्स सी कैसा रहता है स्कोर, बिकॉज और भी मैचेस हैं और भी तरह तरह के यू नो अलग अलग एंटरटेनिंग दिन आने वाले हैं. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द डे व्हेन न्यूजीलैंड एंड इंडिया का जो मैच होने वाला है यहाँ पे. मेरा टिकट तो 30th है, 30th को यानी कि ऑकलैंड का ही है, तो लेट्स सी उसका कैसा रहता है, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड.
1: मुझे पसंद है लड़का. हाँ. 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. स्प्रिंग आ गई है, माइट 10 मेगा हैंड

0: फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
1: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
3: Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
3: इसके पीछे
6: हम.
3: Tech Talk.
7: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. सो वेल यस, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. न्यूजीलैंड में एक रीसेंट सर्वे ने हाईलाइट किया है कि कार टच स्क्रीन्स ड्राइवर्स का अटेंशन जो है करीबन ज़्यादा ले रही है. ऑटो सेंस के सर्वे में टच स्क्रीन्स वाली कार यूज़ करती है 93% ड्राइवर्स. यू नो 93% ड्राइवर्स का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव है, जबकि जब पुराने ओल्ड बटन्स टाइप के होते हैं उन्होंने ये कहा है कि 49% ही ड्राइवर ऐसे हैं जो फिजिकल बटन उसको प्रेफरेंस देते हैं. सो यस, दैट इज़ ऑल द न्यूज़ इज़. एंड ऑफ कोर्स आप क्या इसमें प्रेफर करते हैं? वैसे यस, ड्राइविंग के टाइम उन्होंने यूज़ करना जबकि सिर्फ 6% ही टच स्क्रीन को प्रेफर करते हैं. अगर प्रेफरेंस की अगर बात करें सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. बट यस, आप बताइए मुझे आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टच स्क्रीन या फिर Old button style. 5599 is the number.
3: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: And that's all for today. बहुत ही बढ़िया आज का शो एंड आज की बातें एंड आई होप कि आपने भी एंटरटेन आप भी एंटरटेन हुए होंगे और कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। बट ये साल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू ऑन फ्राइडे वाले शो कल के दिन सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया आप
2: लोग. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
5: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
7: नहीं बेटी के लिए justice चाहिए.
8: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
6: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
6: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
10: Time check.
11: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
10: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Greens have matched Labor's commitment to restore pay equity law if elected to government. The party would also settle the pay equity claim that was stopped for roughly 65,000 care and support workers. Co-leader Marama Davidson says it would cost $1.1 billion a year for 4 years.
13: This would be paid by taxing the super rich and mega corporates, because we know that we have to tap into those resources and invest them back into the well-being of the community.
12: Annual data shows a slight increase in the number and rate of suspected self-inflicted deaths in New Zealand. 602 were recorded in the last financial year, a rate of 10.5 per 100,000 people. If you or someone you know is struggling, free call or text 1737. The Australasian College for Emergency Medicine's latest report found Māori patients attending ED rose by 39% in the past decade. Spokesperson Dr. Michael Connolly says it's concerning.
14: As with the entire report, it's highlighting needs that are required throughout the system. That's something that has to be addressed at all levels.
12: And excitement is brewing as The Amazing Race gets set to showcase Christchurch. Season 39 of the reality show will premiere to millions of viewers across North America, featuring the city and wider Canterbury region. To sport, the Wallabies won't have the powerful second five hunter, Paisami, for the Bledisloe Cup starting Saturday week. He's been given a four-game ban for a high shot in the win over South Africa on Sunday. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, exclusive Rugby World Cup packages selling now. And returning captain Chris Wood is keen to play his part in continuing the All Whites goal-scoring trend. New Zealand face Panama and Japan from 10 past 7 tonight.
0: Sports News.
10: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
15: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.9 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे मौसम आज का थोड़ा सा क्लाउडी सनी मिक्स्ड काइंड ऑफ वेदर है. कल परसों ऐसा ही वेदर रहने वाला है. सनसेट आज का 7:26 पर.
10: द बीट ऑफ बॉलीवुड
16: वर्ल्ड्स बेस्ट. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
15: कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यू हैविंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. 4 बजे मेरा साथ यहाँ पे रुस्बे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? यू नो वेदर के बारे में रिपोर्ट आई है कि हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है ये रहने वाली है फ्रॉम फ्राइडे. सो मेट सर्विस ने ये बोला है कि साउथ आइलैंड में वैसे काफ़ी ज़्यादा बारिश वहाँ पे ज़्यादातर एक्चुअली में रहने वाली है. साउथ लैंड, डनेडन, सेंट्रल ओटैगो, सदर लेक्स, वहाँ पे थोड़ा वेदर ऐसा ही रहने वाला है. हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड वॉच, ये सब कुछ वेदर वहाँ पे रहने वाला है. सो या लेकिन यहाँ पे ऑकलैंड में लुक्स लाइक ऑलमोस्ट फाइन वेदर. ऑकलैंड में इतना कोई पंगा नहीं है. कैसे आप अक्टूबर में आ चुके हैं, फर्स्ट अक्टूबर हो चुकी है, कल 2nd अक्टूबर है, देन 3rd अक्टूबर है, और बाय द वे 3rd अक्टूबर को दिवाली की सेलिब्रेशन भी है मैनकाउ में. इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में मैं आपको देने वाली हूँ. एंड सनातन वर्ल्ड कप में क्या क्या अपडेट्स है ये भी आपके लिए थोड़ी देर. 1, 2, 3, 4.

0: updates on Hum brought to you by NYF Services. Uber drivers, apply for your claims online at nyfservices.com. Build Cabs Real Estate. Invest in Dubai. Book your one-to-one consultation today. Visit buildcabs.com. And Professional Visa Services, based in Auckland and Hamilton, offering multiple visa pathways with a team of licensed immigration experts.
1: सनाथन वर्ल्ड कप से वैसे मेरे साथ डायरेक्टली ग्राउंड से शामिल हो चुके हैं नमन. नमन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: हाय, गुड आफ्टरनून सैंडी, आई एम फिट एंड फाइन. आप मुझे बताओ कैसा चल रहा है?
1: बहुत बढ़िया. वेदर तो देखो कैसा अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है, लेकिन गेम्स वहाँ पे कैसे चल रही है?
2: गेम्स तो बहुत ही गर्मा गर्म है, एक के बाद एक बड़े बड़े जो खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं और क्या कमाल का खेल दिखा रहे. तो मैं आपको बता दें, सुबह से जो गेम हुआ, अगर हमारे लिसनर्स ने मिस आउट कर दिया है, फ्रॉम 9 AM जो पहला गेम हुआ था, एनजेड नांड्रोंगा सनातन वर्सेस फीजी वरिमितिया सनातन, इसमें एनजेड नांड्रोंगा सनातन की शानदार जीत 3-1 से हुई है. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा गेम हुआ मेनिकाओ सनातन और फीजी नांदी सनातन के मत में, इसमें मेनिकाओ सनातन की जीत 2-0 से हुई है. फॉलोड बाय एनजेड सनातन और मेलबर्न सनातन के मध्य में जो गेम हुआ, ये जो गेम था बहुत ही क्रेका मैच था, दोनों टीम 1-1 से बराबर ठहरे. और इसके साथ में एनजेड लंबासा सनातन और फीजी नरेरे मकोई सनातन, ये वाला जो गेम था बहुत ही जबरदस्त था, इसमें बहुत ही शानदार जीत एनजेड लंबासा सनातन की हुई है 5-0 से. एंड काफी लोग यहाँ पर है और यहाँ पर आ रहे फैमिली के साथ, जबकि स्कूल हॉलीडेज है. सीन काफी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे, अशोका प्लेस के साथ तस्वीर ले रहे हैं. और आज हम के फेसबुक पेज पर आप चेकआउट कर सकते हैं एक से बढ़कर एक जो मंझे हुए खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस्ड जो अशोका प्लेस है, इनका जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज है, आप हम के फेसबुक पेज पर भी चेकआउट कर सकते हैं. और मैं आपको बता दूं, अगले घंटे पर जो गेम्स जो जारी है वो रहेगा वेलिंगटन सिटी सनातन और वुतवालेबू सनातन के मध्य में, वेकाटो सनातन और नांड्रोंगा सनातन के मध्य में गेम होगा, क्वींसलैंड सनातन और साथ में सवंबुला सनातन इनके मध्य भी गेम होगा. तो इन सभी खेलों पर जो अपडेट से लेटेस्ट अपडेट से जानकारियां है, इसे हम आपके नंबर वन स्पोर्टिंग डायल हम पर लेकर आते रहेंगे. और भी अपडेट्स हम आपको देंगे पारी पारी से. फिलहाल के लिए 11th सनातन वर्ल्ड कप के तहत नंबर वन हम के लिए, दिस इज राउडी नमन.
1: थैंक यू सो मच नमन.
3: कॉफी ब्रेक विद सैंडी. वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
4: It's my turn on dinner and my flatmates have only ever seen me make toast, burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Woolworths sweet chili butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of Woolies.
5: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz.

0: काफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड मेरे साथ इस समय पर अभी शामिल हो चुके हैं सनातन वर्ल्ड कप में जो मैचेस चल रहे हैं वहाँ की अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। हाय अवी, कैसे हैं आप?
1: हेलो सिंधिया, बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम यहाँ पर ओमिस्टन में बिल्कुल बढ़िया है। इट्स आइडियल कंडीशंस फॉर अ फुटबॉल मैच, जबकि 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत यहाँ पर जो खेल हो रहा है अभी सिंधी, यहाँ पर MIB बा साथ में ETS कीवी होम सिडनी लंबासा ये खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग ऑन एन आर्टिफिशियल टर्फ जो कि बिल्कुल सुपर्ब है इस कंडीशन के लिए और अच्छा फुटबॉल देखने को भी मिल रहा है। और खेल को शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर लंबासा सिडनी लंबासा ने लेफ्ट फ्लैंक से क्रॉस किया और वहां पर उनके जो स्ट्राइकर थे उन्होंने गोल बनाया है और अभी इसी कारण से सिडनी लंबासा जो है यहां पर इस खेल को 1-0 से लीड कर रही है अगेंस्ट MIB पा। तो कंडीशंस काफी फाइन है, बढ़िया है, पार्किंग की भी सुविधाएं हैं और यहां पर ढेर सारे लोग हैं जो आकर इस खेल को देख रहे हैं। यहाँ पर जो फिजी के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कभी ना कभी खेला है और आज वो भी नजर आने वाले हैं या फिर इस गेम में भी वो नजर आ रहे हैं, तो बाद में इनसे भी बातें करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए ओमिस्टन प्राइमरी स्कूल ग्राउंड से कीवी होम सिडनी लंबासा साथ में MIB बा के बीच में जो खेल हो रहा है यहाँ पर ETS कीवी होम सिडनी लंबासा की जीत 1-0 से हो रही है। मैं हूँ अभी ओमिस्टन ग्राउंड से सनातन वर्ल्ड कप 2026 में, हम मीडिया ऑफिशियल पार्टनर की तरफ से।
0: थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू।
2: सनातन वर्ल्ड कप अपडेट्स ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय NYF सर्विसेज। उबर ड्राइवर्स, अप्लाई फॉर योर क्लेम्स ऑनलाइन एट nyfservices.com। बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट, इन्वेस्ट इन दुबई, बुक योर 1-to-1 कंसल्टेशन टुडे। विजिट buildcaps.com एंड प्रोफेशनल वीजा सर्विसेज बेस्ड इन ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, ऑफरिंग मल्टीपल वीजा पाथवेज विद अ टीम ऑफ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड आज 1 अक्टूबर से काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी रोड रूल्स जो है यहाँ पे चेंज हो रहे हैं. जो की चेंजेस है, आपको रिमाइंड करवा दूँ कि मिनिमम पासिंग डिस्टेंस ये चेंज हो रहा है. ड्राइवर्स मस्ट लीव एटलीस्ट 1 मीटर व्हेन पासिंग अ रोड यूजर एट स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 मीटर व्हेन ट्रेवलिंग अबव 60 किलोमीटर पर आवर. Then buses leaving the bus stop. Drivers must give way to buses signaling to leave a bus stop subject to new rules. So buses होता था ना should go first, must go first actually में हो चुका है वो. And kids on bikes, children 12 and under can ride on footpath with conditions, of course supervised. E-scooters, riders can use the cycle lanes when जहाँ पे भी permissions हैं. Bump parking के बारे में rules around the parking on grass, verges, berms are being clarified. So including clearer signage requirements as well. So काफ़ी changes है आज से 1 अक्टूबर से. Make sure कि you are aware of these changes. 80s के retro गाने.

0: कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे इसी सैटरडे को महिंद्रा एनजेड दिवाली की सेलिब्रेशन मैनागाव वेलोड्रोम पार्क में होने वाली है, जहाँ पे मोहम्मद सदीक एंड टीम इंडिया से आके यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। डीजे लकी ये भी यहाँ पे इंडिया से पहुँच के लाइव डीजेइंग करने वाले हैं। सो डिलीशियस फूड स्टॉल्स, फन राइड्स, ये सब कुछ तो रहेगा, फायरवर्क्स भी रहेंगे। सो मैनागाव वेलोड्रोम पार्क में आपको पहुँचना है 1 PM to 9 PM, फ्री एंट्री है। वैसे 1 PM to 3 PM मैं और रुजबे भी वहाँ पे रहने वाले हैं, तो दोपहर के टाइम पे अगर आप आते हैं बिटवीन 1 to 3 AM तो मेक श्योर कि आप मुझसे और रुजबे से ज़रूर मिलते हैं। Throwback.
1: Brought to you by 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, that's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.9 डिग्रीज और आज को बनाए 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे मौसम आज का थोड़ा सा क्लाउडी सनी मिक्स्ड काइंड ऑफ वेदर है. कल परसों ऐसा ही वेदर रहने वाला है. सनसेट आज का 7:26 पर.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ एंड रुज़बे मेरे साथ थोड़ी देर में यहाँ पे शामिल हो जाएगा. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? इट इज थर्सडे विच फील्स लाइक ऑलमोस्ट फ्राइडे. आई थिंक दिस इज द एनर्जी ऑफ अक्टूबर या फिर फेस्टिव सीजन होने वाला है अभी. देन हॉलीडे सीजन शुरू हो जाएगा. बैक टू बैक चीज़ें चल रही है. हॉलीडे से याद आया, वैसे ईस्टर 2027 का आपका क्या प्लान है? अगर अभी तक आपने कोई प्लान नहीं बनाया है तो आप ये प्लान हमारे साथ बना सकते हैं, मेरे और रुज़बे के साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप को लेके जा रहे हैं बाली एंड बैंकॉक, दो जगह पे. और ये जो पैकेज डील है ये सन टूर्स ने बनाई है. तो इन्होंने एक डील बनाई है जहाँ पे फ्लाइट टिकट्स रहेगी, 5-स्टार एकोमोडेशन, तीनों टाइम का खाना एंड एक्टिविटीज़ भी. बीच में आपको जब खुद को घूमना है तो वो टाइम भी दिया जाएगा. सो एक गाइडेड टूर भी ये रहने वाला है. इट्स वेरी सेफ टूर. आप अगर अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाना चाहते हैं, आप एज अ कपल जाना चाहते हैं साथ में, तो आप कोई भी कैटेगरी में बच्चों को साथ में लेके आना चाहते हैं, किड फ्रेंडली इवेंट ये रहेगा, तो उनके साथ भी आप आ सकते हैं. सो बाली बैंकॉक हम मार्च 2027 ईस्टर वीकेंड पे जा रहे हैं. एंड द गुड थिंग इज़ कि एक दिवाली की प्रमोशन चल रही है. सन टूर्स ने बोला है कि अगर आप ये बुकिंग करते हैं, अगर ये बाली बैंकॉक का जो टूर है अगर ये आप बुक कर लेते हैं तो आपको फ्री एक क्रूज़ पैकेज मिल रहा है. 2 नाइट 3 डे का क्रूज़ पैकेज ऑफ कार्निवल क्रूज़, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है और ट्रांसफरेबल भी है. सो ये आपको फ्री मिल रहा है. सो दिस इज़ आई थिंक रियली गुड ऑफर. और इसी वीकेंड पे हम एक्चुअली नॉट दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड पे हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं. सो इस चाय पे चर्चा पे आप मेरे और रुज़बे के साथ बैठ सकते हैं और साथ में सन टूर्स की टीम रहेगी. अगर आपके माइंड में कोई सवाल है रिगार्डिंग आइटनरी या फिर हिडन कॉस्ट, इन सब चीज़ों को लेके, तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब वहाँ पे हम देने वाले हैं. अगर आपको सही लगता है सब कुछ देन आप बुक कर सकते हैं, नो प्रेशर. बट या अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कीजिए सन टूर्स को 0800-4786-868 पर. या फिर अगर आपको चाय पे चर्चा ये ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको सवालात करने हैं, क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, ट्रिप लिख के भेजिए 5599 पर, तो आपको फॉर्म मिलेगा. जस्ट फिल द फॉर्म एंड आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी. कहीं एक

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Mobile Radio.
1: Streaming on Rover.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
3: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: A Kogan TV is just like a TV. Both TVs do very similar TV things, but with slightly different little logos, remote shapes, and legs. One's a Kogan 55-inch LED 4K Smart Google TV. The other TV costs an arm and a leg. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
8: Are you ready to go home?
9: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
11: Sanathan World Cup updates on Hum, brought to you by NYF Services. Uber drivers, apply for your claims online at nyfservices.com. Build Caps Real Estate, invest in Dubai. Book your one-to-one consultation today. Visit buildcaps.com and professional visa services based in Auckland and Hamilton, offering multiple visa pathways with a team of licensed immigration experts.
12: सनातन वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पे एंड धूम मची हुई है. जैसे नम्मा ने थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल हॉलीडेज है और बहुत ही परफेक्ट टाइम है. पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को भी वहाँ पे लेके जा रहे हैं. इट्स गुड. कई बार बच्चों को भी ये सब कुछ सिखाना एंड स्पोर्टिंग में उनको एक्टिव रखना, तो मेरे को लगता है ये परफेक्ट टाइम है. स्कूल हॉलीडेज का टाइम है उन्हें मोटिवेट करने के लिए. सो हाई नमन, कैसे हो?
13: Hi Sandy, मैं बहुत ही बढ़िया. I'm so excited. And guess what? आज तो 1st October भी है, you know? और सनातन वर्ल्ड कप जा रही है पूरे पैमाने पर एंड काफी जो गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं, सभी के जो आंख में देखा हाल है हम अपने लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं. तो एक बार फिर से मैं बता दूं, शायद लोगों ने मिस आउट कर दिया. आप पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं कि यहाँ पर अभी ब्रेक हुआ है और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं. सुबह जो गेम हुआ एनजेड नंडरोगा सनातन और वर्मितिया सनातन की मध्य में, इसमें एनजेड नंडरोगा की जीत 3-1 से हुई है. मेनिकाल सनातन और नैनी सनातन की मध्य में जो गेम हुआ, मेनिकाल सनातन 2-0 और एनजेड सनातन 1 मेलबर्न सनातन 1. एनजेड लंबासा सनातन और नरेरे मकोई सनातन की मध्य में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ. इसमें एनजेड लंबासा सनातन की शानदार जीत 5-0 से हुई है. एंड रिकैप करते अगर शायद आप लोगों ने मिस आउट कर दिया था कल वाले जो गेम्स हुए थे वेंसडे 30 सितंबर को, इसमें हॉक्स बे सनातन 0 एनजेड सनातन 1, एनजेड लोटो का सनातन 0 और एनजेड नंडरोगा सनातन 4, मनुरेवा सनातन 0 और मेनिकाओ सनातन 6, एनजेड रेकिडिकी सनातन वन, एनजेड लम्बासा सनातन वन, टी अवामुतु सनातन नील, वेलिंगटन सिटी सनातन नील, वेकाटो सनातन वन, फांगरे सनातन वन, एनजेड तांबिया सनातन फोर, फीजी नेंदी सनातन नील, एनजेड फीजी रेवा सनातन नील और मेन इन ब्लैक्स यानी कि बा सनातन टू और एनजेड सनातन ऑल स्टार्स फाइव और फीजी नकाई कोंगो रेवा सनातन नील। अच्छा, फ्राइडे वाले खेल की ओर अगर हम नजर दौड़ाते हैं सिंडी, अपने लिस्टर्स को हम बता दे कल भी बहुत सारे रोचक बहुत ही धमाकेदार गेम्स होंगे। फ्रॉम 10 AM से मेलबर्न सनातन और बनारा सांबेतो सनातन का मुकाबला रहेगा। 11:10 AM एनजेड लंबासा सनातन और वैताकरे सनातन के मध्य में गेम होगा। ऑस्ट्रेलिया सनातन और वेलिंगटन सिटी सनातन 12:20 ये मैदान लेंगे। 1:30 PM पर फ्राइडे को वेलिंगटन सनातन और फीजी नकाई कोंगो रेवा सनातन के मध्य में गेम होगा। 2:40 PM वेकाटो सनातन और कैलिफोर्निया सनातन के मध्य में गेम होगा। 3:50 PM फीजी नररे मकोई सनातन और एनजेड रेकिरेकी सनातन के मध्य में गेम होगा। 5 PM पर होक्स बे सनातन और मेलबर्न सनातन का मुकाबला होगा। 6:10 PM एनजेड नरंगा सनातन एनजेड बा सनातन के मध्य में गेम होगा। 7:20 PM मेनिकाओ सनातन ऑकलैंड सनातन के मध्य में गेम होगा। 8:30 PM एनजेड सनातन ऑल स्टार्स दे आर द फेवरेट मैं आपको बता दूं और क्वींसलैंड सनातन के मध्य में गेम होगा। क्वींसलैंड सनातन भी काफी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। इसके अलावा आप हम के फेसबुक पेज पर चेकआउट करो, एक्सक्लूसिवली जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है जो काफी सालों से इस फील्ड में है, जो फोमा फीजी रैप है, नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, इन सभी के जो इंटरव्यूज है आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि शर्विन प्रसाद है, साहिल है और साथ ही वशनील प्रसाद, इन सभी के जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज है आप चेकआउट कर सकते हैं हम के फेसबुक पेज पर। तो जबकि यहाँ पर हंगामा जारी है और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, फिलहाल के लिए सनातन वर्ल्ड कप के तहत आज बिल मैकिनली पार्क से नंबर वन स्पोर्टिंग डायल हम के लिए दिस इज राउडी नमन।
12: थैंक यू सो मच नमन।
10: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
0: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम।
10: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

4:30 यहाँ पे हो चुके हैं एंड वैसे और भी सनातन वर्ल्ड कप में क्या क्या हो रहा है इसके अपडेट्स यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे थोड़ी देर में. लेकिन फ़िलहाल एक ज़रूरी सूचना आपके साथ शेयर कर देती हूँ. अगर आप उबर ड्राइवर्स हैं एंड अगर आपका ऑलरेडी क्लेम है विथ नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड क्लेम्स मैनेजर जो है विल बी इन टच विद यू. इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक 4 अभी ओपन है. प्लीज़ नोट कि नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज फ़ोन टीम जो है करंटली एट कैपेसिटी है, सो डू नॉट कॉल. इंस्टेड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. nyfservices.com इज़ अ वेबसाइट. nyfservices.com इज़ अ वेबसाइट. वहाँ पे कॉल कीजिए एंड ऑनलाइन जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड हमारे पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा. हमारे जो पॉडकास्ट है ये भी हम डिफरेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें इस बार हमने शर्ली सेठिया से बातें की थी अनफिल्टर्ड में. एंड आज इलेक्शन स्पेशल में 5 बजे के बाद सनी कौशल से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. सो कीवी बिजनेस ओनर्स जो है इन हमारी कम्युनिटी के, स्पेशली जो बिजनेस ओनर्स हैं, इनको अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट से क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चेंजेस होनी चाहिए जिससे कि स्मूथली आपका बिजनेस रन हो सकता है, रिटेल क्राइम अच्छे से टैकल हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट मिले एंड इकोनॉमी ग्रो करे. सो सनी कौशल हमें आज ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि चेयरमैन एंड CEO है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के. एंड ही इज़ ऑल्सो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्रियल एडवाइजरी ग्रुप ऑन रिटेल क्राइम. सो बिजनेसेस का आज क्या है दिस इलेक्शन, इसके बारे में उनसे हम बातें करने वाले हैं. सो ये बातचीत आपके साथ हम यहाँ पे लेके आएंगे बिटवीन 5 to 6 PM. अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. 5599 इज़ द नंबर.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Sanathan World Cup updates on hum brought to you by NYF Services. Uber drivers, apply for your claims online at nyfservices.com. Build Caps Real Estate, invest in Dubai. Book your one-to-one consultation today. Visit buildcaps.com. And professional visa services based in Auckland and Hamilton, offering multiple visa pathways with a team of licensed immigration experts.
2: सनातन वर्ल्ड कप के अपडेट्स के साथ मेरे साथ यहाँ पे अवि शामिल हो चुके हैं. अ वेरी गुड आफ्टरनून अवि, हाउ आर यू?
3: गुड आफ्टरनून सैंडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और जितने लोग यहाँ पर आज टेन अप हुए हैं गेम देखने के लिए, वो भी काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर ओमिस्टन प्राइमरी ग्राउंड्स में, फ्लैटबुश में, जबकि सनातन वर्ल्ड कप पूरे पैमाने पर जारी है. और जो पहला मैच मैंने आज यहाँ से आपको, आपके लिए, हमारे लिसनर्स के लिए कवर किया था, वहां पर MIB बा और साथ में जो कीवी होम्स सिडनी लंबासा की टीम थी, जिसके बीच में खेल हो रहा था, यहाँ पर एक इम्प्रेसिव स्कोरलाइन सिडनी लंबासा ने उस मैच को जीता है 7-1 से. और उनके टीम के खिलाड़ी से हमने बातें भी की हैं, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया है शलेन लाल से. और अभी जो मैच चल रहा है फिलहाल, ये है ब्रिस्बन वीती सनातन, ये 50 एज कैटेगरी का मैच है. ब्रिस्बन वीती सनातन साथ में फिजी लोटोका सनातन के बीच में खेल हो रहा है. हालांकि फिजी लोटोका सनातन की दबाव काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने देखा है कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ब्रिस्बन वीती सनातन ने यहाँ पर स्कोर कर दिया है. तो हाल सनातन की दबाव प्रेशर ज्यादा है, लेकिन दे हैव मैनेज्ड टू स्कोर अ गोल. ब्रिस्बन सनातन ने एक गोल स्कोर कर दिया है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. और पहले हाफ का जो खेल है अब चल रहा है, और यहाँ पर अभी भी स्कोरलाइन है ब्रिस्बन वीती सनातन 1 और फिजी लोटोका सनातन कुछ भी नहीं. ओमिस्टन प्राइमरी ग्राउंड से जैसे जैसे और भी रिजल्ट्स हमारे हाथ लगेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे हम, जबकि ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है सनातन वर्ल्ड कप का. तो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग हियर एट ओमिस्टन प्राइमरी ग्राउंड्स हम के लिए. मैं हूँ अवि.
2: थैंक यू सो मच अवि, थैंक यू. सो और भी अपडेट्स यहीं पर आपको प्रोवाइड होते रहेंगे सनातन वर्ल्ड कप की. एंड जैसे कि अवि ने बोला कि हमारे हम के पेज पर जाके आप इंटरव्यू भी चेक कर सकते हैं, तो यू कैन गो ऑन हम के फेसबुक पेज एंड चेक द लेटेस्ट इंटरव्यू जो कि अवि ने अभी अशलेन लाल के साथ की है, जो कि फॉर्मर बा से है. एंड या और भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे सोशल मीडियाज पर ज़रूर मिलेगी.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: 4:46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. फिलहाल ड्राइव शो आप सुन रहे हैं एंड सनातन वर्ल्ड कप के दूसरे पार्क में बिल मैकिनली पार्क में मेरे साथ यहाँ पे नमन शामिल हो चुके हैं. गुड आफ्टरनून नमन, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून सैंडी एंड सभी का वेलकम करते एक बार फिर से सनातन वर्ल्ड कप के तहत. जबकि आज हम बिल मैकिनली पार्क में, आज तो बहुत सारे हम कह सकते हैं रोचक जो गेम्स हुए हैं और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आज मैदान में आए हैं. खासतौर पर ज्यादातर जो प्लेयर्स थे ये सोका रेप्स है, नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं. अभी फिलहाल के लिए जो गेम समाप्त हुआ है, फिनिश हुआ है, वेलिंगटन सिटी सनातन और फिजी वुतवालेबु सनातन के मध्य में, इसमें शानदार जीत हुई है वेलिंगटन सिटी सनातन की 3-1 से. लेकिन प्रीवियसली जितने भी गेम हुए, शायद आपने रिजल्ट अगर मिस आउट कर दिया है, तो सुबह 9 बजे से जो गेम हुआ था एनजे नंडरोगा सनातन और फिजी वरिमितिया सनातन, इसमें एनजे नंडरोगा की जीत 3-1 से हुई है. मेनिकाओ सनातन और नेडी सनातन के मध्य में जो गेम हुआ, इसमें मेनिकाओ सनातन की जीत 2-0 से हुई है. एनजे सनातन और मेलबर्न सनातन के मध्य में जो गेम हुआ, 1-1 से बराबर ठहरा. एनजे लंबासा सनातन, ये बहुत ही बढ़िया गेम था, इसमें इनकी शानदार जीत हुई है फिजी नरेरे मकोई सनातन से 5-0 से. और टी अमामुतु सनातन और ऑस्ट्रेलिया सनातन के मध्य में जो गेम हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया सनातन की जीत 4-0 से हुई. लेकिन फिलहाल के लिए जो गेम अभी फिनिश हुआ है, वेलिंगटन सिटी सनातन की शानदार जीत 3-1 से हुई है फिजी वतवालेबु सनातन से. जो अगला गेम अब शुरू होने जा रहा है वो है वैकाटो सनातन और साथ में नंडरोगा सनातन के मध्य में गेम होगा. एंड देन 5:10 PM क्वींसलैंड सनातन और फिजी समम्बुला सनातन, ये जो 40s के खिलाड़ी है ये इसमें भाग लेंगे. और उसके बाद अगर देखा जाए 6:20 PM आज लास्ट ट्रांसपोर्ट हैमिल्टन सनातन और मेलबर्न सनातन के मध्य में गेम होगा. और आज रात जो आखिरी गेम रहेगा 8:30 PM क्वींसलैंड सनातन और फिजी नकाई कोंगो रेवा सनातन के मध्य में गेम होगा. और कल जबकि फ्राइडे है तो अपने लिस्टर्स को, हम के लिस्टर्स को बताना चाहेंगे कि कल भी आप आ सकते हैं बिल मैकिनली पार्क. सुबह 10 बजे से पहला गेम होगा मेलबर्न सनातन और फिजी बरारा साम्बेतो सनातन के मध्य में. 11:10 AM एनजेड लंबासा सनातन और वैताकरे सनातन के मध्य गेम होगा. 12:20 PM ऑस्ट्रेलिया सनातन और वेलिंगटन सिटी सनातन के मध्य गेम होगा. 1:30 PM वेलिंगटन सनातन और फिजी नकाई कोंगो रेवा सनातन के मध्य गेम होगा. 2:40 PM वैकाटो सनातन कैलिफोर्निया सनातन के मध्य में गेम होगा. 3:50 PM फिजी नरेरे मकोई सनातन एनजेड रकी रकी सनातन. 5:00 PM हॉक्स बे सनातन मेलबर्न सनातन के मध्य गेम होगा. 6:10 PM एनजेड नंडरोगा सनातन एनजेड पास सनातन मैदान लेंगे. 7:20 PM मेनिकाओ सनातन ऑकलैंड सनातन के बीच में गेम होगा. और फ्राइडे को लास्ट गेम रहेगा 8:30 PM एनजेड सनातन ऑल स्टार्स और क्वींसलैंड सनातन. और ऐसे में मध्य लगेगा जो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है जो यहाँ पर सोका प्लेयर से अनीश खेम आ चुके हैं. और इसके अलावा हम आपको बता दें बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आप हमके फेसबुक पेज पर चेकआउट कर सकते हैं. सो बारी बारी से और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे. फिलहाल के लिए बिल मैकिनली पार्क से सनातन वर्ल्ड कप के तहत योर नंबर वन स्पोर्टिंग डायल हम के लिए, दिस इज राउडी नमन रिपोर्टिंग लाइव.
0: थैंक यू सो मच नमन, थैंक यू.
2: सनातन वर्ल्ड कप अपडेट्स ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय NYF सर्विसेज. उबर ड्राइवर्स, अप्लाई फॉर योर क्लेम्स ऑनलाइन एट nyfservices.com. बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट, इन्वेस्ट इन दुबई. बुक योर 1-to-1 कंसल्टेशन टुडे. विजिट buildcaps.com. एंड प्रोफेशनल वीजा सर्विसेज बेस्ड इन ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, ऑफरिंग मल्टीपल वीजा पाथवेज विद अ टीम ऑफ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स.
3: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Accurate traffic.
1: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
2: Partly cloudy overnight with a low of 10 on the northern town to Silverdale, 54 minutes heavy between the Harbour Bridge and Northcote Road. On the southern town to Manukau, 48 minutes to Drury, 1 hour 23. Very heavy south from Newmarket all the way to the Papakura truck stop and north from Princes Street to Green Lane. On the southwestern, heavy traffic through Mangere Bridge in both ways and slow from Puhinui Road to the southern.
1: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
3: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI
10: Big Save's big spring sale ends Monday. We need to clear $20 million worth of sofas, recliners, beds, bunks, sofa beds, dining and bedroom furniture. Get 50% off selected sofas, yes, 50% off. King beds from only $999 and get two recliners for only $699. Plus, 36 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply. Must end Monday only at Big Save.
11: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
12: अरे ये तो Logic Finance के गुरु Kendola का कमाल है।
13: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
11: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
14: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु Kendola को on 0800 Logic Guru.
15: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping,
16: babe. Babe, wake up, look at this meme.
15: Ha-ha reacts and thumbs up from Dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny.
17: Happy, happy, happy, oh.
18: Hum, time check.
19: Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
18: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
20: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The impressive save of a Dubai flight after its pilot was stabbed is still sinking in for the New Zealand company that helped him train. The plane, which was en route to Tel Aviv, plummeted 17,000 feet before passengers gained control of the cockpit. Mainland Air Chief Executive Philip Keane, who knew the captain, says that's the height of Mount Cook and then some.
21: It's very hard to comprehend, actually, sitting on the ground here, driving into the legend. We wish him all a speedy recovery.
20: A serious incident appears to be unfolding in Auckland's Glen Innes. St John's says it sent an ambulance, rapid response vehicle and an operations manager to Sunnymead Road and is referring further details to police who've been approached for comment. The government has declared a medium-scale adverse event in the Deep South after the wettest winter since 1980. The official classification covers all of Southland and Otago's Clutha district, where livestock feed is in short supply. Judging has been happening today for the Bakel's legendary sausage roll awards. Bakel's managing director Brent Kersall says there are several criteria.
22: First of all, it's the appearance and the pastry. How does that look? You know, is it nice and golden? Does it look inviting?
20: A winner will be announced tomorrow. To sport, it comes as no surprise whatsoever that the Blues are set to announce the signing of All Blacks captain Ardie Savea for the next Super Rugby Pacific season. Savea has been teasing an announcement about his Super Rugby future on social media. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, exclusive Rugby World Cup packages selling now. And the All Whites are in action this evening, taking on Panama and Japan from 10 past 7. Captain Chris Wood has joined the squad.
23: Sports News.
18: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
0: World's best, hamari good brands bhi hai.
18: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: वेदर का हाल आज काफी कमाल, वैसे क्लाउडी पीरियड्स भी है, आइसोलेटेड शावर्स होने वाले, साउथ वेस्टलीज का साथ होगा, 7:26 पे आज होगा सनसेट, फील्स लाइक 16 डिग्रीज, ओवरनाइट टेंपरेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट.
17: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
18: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
23: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
2: Power Drive at 5. Good evening. 5:03. आप सुन रहे हैं. Hi Sandy. Good afternoon.
24: Good afternoon, Rusbe. कैसे हो तुम?
2: मैं बढ़िया हूँ यार. I'm here.
24: Finally, yeah, you are here.
2: Finally, I'm here. But yeah, it has been quite a productive day, I would say.
24: Productive day and अभी तो productive hour भी काफी रहने वाला है, because हम सनी कौशल से बहुत ही जल्दी यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप गाना सुनिएगा और उसके बाद यहाँ पे हम उनका नंबर डायल करने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, एंड वी गोना डिस्कस फ्यू थिंग्स. दिस इलेक्शन ईयर बिजनेसेस को क्या चीज़ें अफेक्ट करती है और क्या डिमांड है बिजनेसेस की, ये सारी बातें आज उनसे हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको कोई सवाल है आप अभी लिख के भेज सकते हैं यहाँ पे ड्राइव कीवर्ड के साथ.
2: Yes, 5599 is the number. Any questions that you would want to ask, please yahan pe aap bhejiye. But aaj we want to understand ke business side of things, what should business owners look at, what should employees look at, you know, it's just giving us more information around ki is election mein hum jab vote kare to hum kis kis factors ke bare mein soche.
24: Yeah,
2: and I think that is very important for us, because a lot of times hum aisa sochte ki हमें जो इन्फॉर्मेशन फीड किया जाता है काफ़ी बार, तो हमें ऐसा लगता है कि यही शायद सच है.
24: और मैं ये देख रही हूँ ना, बिकॉज अभी रुजबे हमारी कम्युनिटी के लिए एक फेस्टिव टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, एंड जो पॉलिटिशियंस हैं दे विल मेक श्योर कि वो हर एक इवेंट पे वहाँ पे जा रहे हैं. बट इवेंट पे जाना वर्सेस एक्चुअली में बात सुनना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है. इवेंट्स में जाके अपनी प्रेजेंस दिखाना कि येस वी आर हेयर, बट देन एक्चुअली में उस कम्युनिटी की बात सुनना, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. तो मेरे लिए मायने ये रखता है कि बात सुनी जाए इवेंट पे, चाहे तुम किसी भी मत आओ. मतलब ऑनेस्टली आई थिंक द लीडर शुड बी दिस काइंड ऑफ कि तुम चाहे किसी भी इवेंट में मत जाओ लेकिन तुम लोगों की बात सुन रहे हो.
2: या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं जा रहे हो इवेंट्स में.
24: या इवेंट्स में वैसे भी जाते हैं, बहुत सारे लीडर्स जाते ही हैं
2: इलेक्शन के टाइम पे ना.
24: इलेक्शन के टाइम पे भी वैसे भी जब स्पेशली हमारे जब दिवाली इवेंट्स होते हैं.
2: नहीं नहीं, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद देखते हैं ना कितने इवेंट्स में. अभी होली भी आएगी ना उसके बाद
24: बहुत कुछ आएगा.
2: एनीवे
24: सो सनी कौशल से बहुत ही जल्दी बात करने वाले हैं अराउंड ऑल दिस, सो स्टे ट्यून्ड. कहिए

0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800 722 462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Get into No Leeming's massive sellout today.
3: Partly cloudy overnight, a low of 10, town to Silverdale on the northern, taking 41 minutes. It's heavy heading north through Albany. To Massey, just 21 minutes on the southern. Manukau taking 40 minutes from town. Drury, an hour. It's heavy heading south from Newmarket to just past East Tamaki Road and north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern's heavy from Onehunga to the southern.
2: Shop No Leeming's massive sellout today. TVs, appliances, computers, smartphones and more.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
8: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
10: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
11: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all-time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
12: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like a massive half price off Tegel products. Stock up on Tegel takeouts, burgers, tenders, nuggets and more. TCs and exclusions apply.
0: Hum. Time check.
13: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
0: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Health New Zealand has apologised for the hundreds of serious adverse events occurring in hospitals every year. Its first national report on the issue recorded 440 in the second half of 2025 alone, with 59 deaths. Executive Clinical Director Richard Sullivan says Health New Zealand is sorry for the harm and distress caused.
15: Behind every figure is a person, a family who's experienced, you know, unbelievable distress. And so as an organisation, we need to learn and try and reduce them as much as we can.
14: A homicide investigation has been launched after the death of a man in Auckland's Glen Innes. Police were called to Sunnymead Road this afternoon after reports a person had been critically injured. Despite best efforts, they died at the scene. One person is in custody. The Greens say they'll earmark $4.4 billion to settle the pay equity claim that was stopped last year. Co-leader Marama Davidson says they'll also restore the law so other industries' workers can pursue claims too.
16: We are prioritising care and support workers because their claim is the most progressed. They were almost there and then the carpet got ripped out from under them.
14: Police want to track down the family of a World War I soldier whose medals have been found in Christchurch. They belong to Private Victor Powell. To sport, All Blacks captain Ari Savea has been teasing on social media for a while about his Super Rugby future. As such, it's hardly a shock that the Blues are set to announce his signing for next season. Into Rugby League with Machinery House in a league of their own. Encouraging news for NRL star Nathan Cleary. The 28-year-old was released from hospital yesterday. His surgeon is happy so far with the outcome of his emergency surgery.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
17: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
18: सूचित किया जाता है ऑकलैंड के राम समुज के भाई ऑकलैंड की प्रतिभा राज के पति लोतो का फिजी में ऑसम ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज के डायरेक्टर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के विजेंद्र प्रसाद उर्फ विजेन की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप राम समुज को 021-215-9368 पर कॉल कर सकते हैं ऑकलैंड के राम समुज के भाई ऑकलैंड के प्रतिभा राज के पति लोतो का फिजी में ऑसम ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज के डायरेक्टर ऑकलैंड के न्यूज विजेंद्र प्रसाद उर्फ विजेन की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप राम समुज को 021-215-9368 पर कॉल कर सकते हैं
17: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
20: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
21: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: 6:03 हुए हैं. What a busy day it's been on the Drive Show. Good evening.
9: A very very good evening, Rusbe. And Trend Makers में आपका स्वागत है. और आज Trend Makers में हम एक lyricist को shout out देने वाले हैं. Because today is birth anniversary of this lyricist.
18: Lyricist को आज shout out दे रहे हैं. Shout out देने से पहले Sandy, I just want to talk something. यार मैं बात की नहीं आज मेरे को ऐसा लग रहा है. फर्स्ट अक्टूबर है आज
9: इट इज
18: स्टार्ट ऑफ अक्टूबर आज मैं सुबह रील देख रहा था एक पूजा और विजय की रील आई वेजिटेरियन डे है आज
9: वो आज वेजिटेरियन डे है
18: ऐसा कुछ तो भी मैंने देखा था आज वेजिटेरियन डे आई वुड लाइक टू यूज सम टाइम टू इनवाइट सम कॉल्स टुडे
9: फॉर व्हाट फॉर बीइंग कि अगर आप वेजिटेरियन है
18: नहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पे कॉल कीजिए We'll try to convince you and make you vegetarian.
9: Come on, Rusbe. ऐसा क्यों करोगे?
18: Because World Vegetarian Day है आज.
9: Yeah. तुम आज vegetarian हो क्या?
18: नहीं.
9: तो charity okay. begins has, from home.
18: Has egg? Does egg? Is egg considered to be vegetarian or non-vegetarian?
9: I don't know. जो hardcore vegetarians होते हैं वो तो egg भी नहीं खाते.
18: Egg भी नहीं खाते ना?
9: Yeah.
18: What would you say vegetarians को बोलते हैं आज What would you say to a non-vegetarian to make them a vegetarian?
9: ऐसे तो non-vegetarians भी बोल सकते हैं कि तुम वो उन plants को खाते हो जो हमें oxygen देते हैं
18: आज vegetarian day है Sandy.
9: लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि
18: I'm just reminding you don't be mean आज एक दिन तो साथ दो vegetarians का मेरे को लगता है आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे मुझे लगता है कि जो वेजिटेरियन है ना उसने हर एक नॉन वेजिटेरियन को पनीर ऑफर करना चाहिए और बोलना चाहिए चिकन समझ के खा ले
9: या पनीर वैसे बहुत अच्छा लगता है आई लव पनीर
18: मुझे भी पनीर अच्छा लगता है काफी अगर अच्छे से बना हुआ होगा तो
9: आई लव पनीर की बहुत मेरे को पनीर सैलड में भी पसंद है मेरे को पनीर की भुर्जी भी पसंद है पनीर पालक भी पसंद है पनीर वो मटर पनीर जो बनता है वो भी पसंद है पनीर पकौड़ा भी वंस अपॉन अ टाइम तो पनीर इन एंड एवरी फॉर्म इज गुड
18: समझ गए पनीर आपको पसंद है
9: या शाही पनीर भी बहुत सही होता है यार
18: वो अच्छा कौन सा पनीर खाते हो आप
1: ब्रांड का नाम बोलने हैं क्या?
3: मुझे नहीं पता, आप डिसाइड करो. यू आर द असिस्टेंट कंटेंट डायरेक्टर.
1: एक बड़ी सी सुपरमार्केट है यहाँ पे,
3: उसका ना
1: उसका पनीर बहुत अच्छा मिलता
3: उसका
1: है.
3: पनीर बहुत अच्छा मिलता है.
1: मेरे को नाम याद नहीं है ब्रांड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
3: मुझे भी याद नहीं है,
1: बट उसका जो पनीर मिलता है इट्स सॉफ्ट, इट्स रियली नाइस.
3: इट्स वेरी नाइस, आई कंप्लीटली अग्री.
1: या तो वो
3: दूर पड़ सकता है लेकिन कुछ लोगों को वो.
1: मेरे को दूर नहीं है, मेरे घर से सिर्फ 11 मिनट है.
3: राइट, दैट्स राइट. Anyway,
1: so, अब आते हैं आज के लिरिसिस्ट के ऊपर. आज जो लिरिसिस्ट है ना रुजबे, इनका नाम मजरू सुल्तानपुरी है. अक्सर इनका लोगों ने इनका नाम काफ़ी सुना होगा. एंड 90s में भी, पहले भी इन्होंने बहुत गाने लिखे हैं, लेकिन 90s में अगर तुम कोई भी रोमांटिक गाना उठाओगे ना, उनके पीछे नाम है मजरू सुल्तानपुरी.
3: मैं लिस्ट देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये सारे हिट गाने यार,
1: ये सारे हिट गाने, टॉप गाने. चाहे हम जो जीता वही सिकंदर की बात करते हैं, चाहे खामोशी मूवी की बात करते हैं, चाहे अकेले हम अकेले तुम या इस मूवी के बारे में बात करते हैं. सो लॉट ऑफ दीज मूवीज जहाँ पे रोमांटिक ट्रैक्स है, ये सब मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, जिनका असली नाम है असरार उल हसन खान. तो ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, बट उनका पेन नेम जैसे मजरू था एंड बर्थ प्लेस वो सुल्तानपुरी, सो इसलिए मजरू सुल्तानपुरी.
3: तो चलो शुरुआत करते हैं इस घंटे की ट्रेंड मेकर्स में. आज मजरू सुल्तानपुरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी एंड हिज ब्यूटीफुल क्रिएशंस. लिरिसिस्ट को अक्सर इतना क्रेडिट मिलता नहीं है. ये गाना आपने काफी बार सुना होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा कि एक्चुअली में इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं.
1: नाउ यू नो

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे सनातन वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट्स लेकर आ रहे हैं।
1: और हमारे साथ यहाँ पे अवि शामिल हो चुके हैं फ्रॉम बैरी कटर्स पार्क। हाय अवि।
2: हेलो सिंडी एंड रुज़बे। और हाँ, मैं एक बार फिर शामिल हो गया हूँ ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम, लेकर आया हूँ रिपोर्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ बेरिकेटिस पार्क ओमिस्टन से। जबकि एक और एक इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर हो रहा है अभी, हैमिल्टन लेजेंड्स और साथ में एनजेड नंद्रो सनातन के बीच में, और बहुत ही जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। गोल्स भी काफी स्कोर हो रहे हैं। जबकि स्कोर्स की ओर देखते हैं तो यहाँ पर न्यूजीलैंड नंद्रो सनातन की जीत हैमिल्टन लेजेंड्स से 5-0 से हो रही है। और जो खेल है ये दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुका है, इट्स मिड वे इन द सेकेंड हाफ, और आज के लिए ये आखिरी मैच है यहाँ पर। लेकिन कल भी ढेर सारे मैचेस होने को है, रिपोर्ट हम आप तक बारी बारी से पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए बेरिकेटिस पार्क से 11 सनातन वर्ल्ड कप 2026 के लिए हम आपका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, और मैं अभी आपके लिए लाइव रिपोर्ट्स लेकर आ रहा हूं ओनली ऑन हम।
0: थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग, और आपसे कल मुलाकात होगी।
2: थैंक यू, सी यू।

0: Trend Makers. A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
7: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
8: Stock Take Madness on now at JB Hi-Fi. Save big on phones, TVs, computers and more. Get the Samsung Galaxy A07 64GB for just $215. JB, you've done it again.
9: Ah, the in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: Are you ready to go home?
12: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
13: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, और आपके लिए यहाँ पे हम एक से गाने भी लेकर आ रहे हैं. और आज के गाने तो बहुत ही एक से, क्योंकि ट्रेंड मेकर्स में आज हम शाउट आउट दे रहे हैं टू मजरू सुल्तानपुरी. इनका आज बर्थ एनिवर्सरी है.
14: या एंड काफ़ी चीज़ों को लेके रुजबे, तुम्हें पता है, ये कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं. लिरिक्स इन्होंने बहुत ही कमाल के वैसे लिखे हैं. इनके थॉट्स अगर तुम जानोगे, यू नो, लेट 1940s में ही वॉज डीपली इन्वॉल्व्ड इन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स एंड प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में वो इन्वॉल्व थे. एक वर्कर्स की मीटिंग थी मुंबई में, वहाँ पे उन्होंने एक पोइम को रिसाइट किया था अटैकिंग उस समय की गवर्नमेंट को एंड इंडियाज रिलेशनशिप कॉमनवेल्थ. जो पोइम थी, दे कंपेयर्ड उस समय के एक लीडर को टू हिटलर एंड कॉल्ड हिम अ स्लेव ऑफ द कॉमनवेल्थ.
13: वाओ,
14: ऐसी स्ट्रॉन्ग इनकी जो लिखाई है, मतलब जो लिखते हैं, जो लिखते रहे हैं ये, कई बार जो उन्होंने पोइम्स लिखी है, ऐसी स्ट्रॉन्ग व्यूज वाली भी लिखी है.
13: मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने
14: अरेस्ट वारंट इनको इशू हुआ था,
13: अरेस्ट वारंट नहीं, अरेस्ट हुए, ये ब्रीफ इम्प्रिजनमेंट हुआ इनका 1949 में.
14: He refused to apologize though.
13: बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ सैंडी, कि हम अभी यू नो रो रहे हैं ये बोल के कि अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे, कोई कॉमेडियन बोल रहा है उसको अरेस्ट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं. तो ये पहले भी होता था,
14: पहले भी होता था. या ही स्पेंड 2 years इन प्रिजन.
13: वही तो फॉलो हो रहा है फिर अभी भी.
14: बस प्रॉब्लम ये चेंज नहीं हुआ है.
13: बस प्रॉब्लम ये है कि अभी लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि ये हो रहा है. अभी उनको ऐसा, उनका टेक ऐसा है कि नहीं नहीं, ये इंसान ही गलत है, जो बोल रहा है वो गलत है, जो जेल जा रहा है वो गलत है.
14: या, या.
13: ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन बोलना तो हर किसी का हक होता है.
14: या.
13: उसके लिए तुम जेल में डाल रहे हो तो फिर वो आप देखो फिर कौन गलत है कौन सही है.
14: 100% So, anyway, he been that kind of person, मतलब इनके हम गाने सुन रहे हैं, क्या रोमांटिक से रोमांटिक गाने उन्होंने लिखे हैं।
13: इनके लाइफ में इतने हादसे हो गए कि बाद में उन्होंने बोला कि अभी मैं रोमांटिक गाने ही लिखूंगा मैं नहीं
14: करूंगा। मतलब उनकी जो पुरानी मूवीज में देखो तो उनके गाने KL Sehgal who used to be one of the कहते हैं ना कि ऐसे गाने वो गाते थे जहाँ पे हार्ट ब्रोकन गाने वो गाते थे, तो उनके लिए भी इन्होंने लिखे हुए हैं। अच्छा, जैसे जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करे, दैट सॉन्ग जो एक
13: शाहजहां का गाना है 1946 का,
14: या इवन दैट सॉन्ग ही हैज रिटन
13: ए दिल मुश्किल सीआईडी मूवी का 1956 का।
14: या ये वो है क्या जीना
13: जीना यहाँ
14: मरना वहाँ आया, नहीं नहीं नहीं वो अलग है,
13: नहीं वो अलग है जीना यहाँ
14: वो अलग है
13: मरना यहाँ,
14: ये ऐ दिल मुश्किल मेरे को ऐसा ट्यून याद नहीं आ रही इसकी, बट ये इसी से वो मूवी का नाम बना था।
13: या सीआईडी मूवी 1956 की है।
14: या
13: काफी बढ़िया बढ़िया गाने इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि अभी जो नेक्स्ट गाना आपको सुनाएंगे ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, एंजॉय कीजिए।

0: The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: रुज़बी, टिकट्स बुक हो गए.
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे, ओनली ऑन हम Accurate Traffic.
6: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
7: Partly cloudy overnight with a low of 10 on the northern from town to Constellation Drive, just 16 minutes to Silverdale, half an hour on the northwest and fairly clear to Massey, 15 minutes. On the southern, just little heavy heading south around Green Lane from town to Manukau, 27 minutes and Drury, 38. The southwestern's a bit heavy from Puhinui Road to the southern.
6: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
0: Spring आ गई है Mitre 10 Mega Henderson's Home and Garden Evening के साथ. Hands-on activities, delicious food, great deals और garden inspo. 4 to 7 pm Thursday, October 8th. सिर्फ Mitre 10 Mega Henderson में.
8: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है. अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
9: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
10: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
11: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku.
12: Let's go! 3, 2, 1.
13: Trend Makers.
14: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और रोवा ऐप के जरिए यू कैन लिसन टू अस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड.
15: और आज लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी, इनको हम शाउट आउट दे रहे हैं, उनके लिखे हुए गाने आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं. इनका करियर केएल सैगल से आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब इमेजिन सो मेनी डेकेड्स.
14: इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट लिरिसिस्ट 1965 में. आइकॉनिक सॉन्ग चाहूंगा मैं तुझे फ्रॉम दोस्ती मूवी के लिए उनको मिला था. और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला है 1993 में.
15: फर्स्ट लिरिसिस्ट टू गेट दिस अवार्ड,
14: दैट्स सो कूल.
15: या सो या ये सारी चीज़ें इनके साथ तो होती रही है न्यूज़ में. उस समय पर ये काफ़ी आते रहे हैं रुज़बे, जैसे कि पहले भी हमने बोला. एक और उनका एक फॉलोआउट हुआ था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनके कंपोज़र के साथ, नौशद के साथ. रिपोर्टेडली दे हैड अ सीरियस फॉलिंग आउट आफ्टर देयर अर्ली वर्क टुगेदर. सो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स दे डिडंट वर्क टुगेदर फॉर अराउंड 20 ईयर्स.
14: वाओ.
15: they eventually reconcile and work together on Saathi movie then again.
14: आपको पता है उनका नाम मजरू मजरू क्यों है?
15: क्यों?
14: उसका मतलब है injured, wounded. उन्होंने ये pen name मजरू अपनाया. और मतलब हाँ basically वो सुल्तानपुर में born हुए थे इसलिए उन्होंने सुल्तानपुर रखा and मजरू was because injured, wounded. And I think it's related to the freedom struggle.
15: Oh wow!
14: Yeah, because he was in the leftist, na?
15: Yeah. So wo mind, and also he had an enormous as a self respect. So jab wo prison mein the, 2 saal wo prison mein the na?
14: 2 saal the wo prison.
15: 2 saal mein prison mein. So jab wo prison mein the, to unki family ko kafi financial difficulties aayi. So Raj Kapoor wanted to help him, but he was like ki mujhe charity pasand nahi hai. So fir Raj Kapoor ne kya kiya? Unko ek song situation de di. कि उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए कुछ लिख लो मैं उसके लिए पे कर दूंगा तो देन ही रोट द सॉन्ग दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई
14: wow.
15: वो एक जो बहुत ही फेमस गाना है एंड देन राज कपूर रिपोर्टेडली पेड हिम 1,000 rupees
14: दैट
15: टाइम का विच वाज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू व्हाट लीडिंग लिरिसिस्ट वाज अर्निंग दैट टाइम So then he accepted it.
14: That's good, yaar. Like industry
15: काफी बड़ा गाना था ये.
14: Industry में वो time पे भी like they were nice people as well,
15: yeah.
14: na? Helping out. Raj Kapoor was always known for that also.
15: Yeah.
14: वो हमेशा मदद करते थे लोगों की.
15: Yeah.
14: Well, with that, it's time for us to say bye bye. Thank you so much आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए मुलाकात होगी आपसे कल.
15: So,
14: Because it's going to be a busy weekend as well.
15: Yeah.
14: October is here. Bye.
15: October is started. And remember guys, isi Saturday ko Diwali ki celebration Manakau Velodrome Park mein hone wali hai. And wahan pe main aur Ruzbe 1 to 3 p.m. wahan pe hum rehne wale hain.
14: 1 to 3 p.m. aur aap 4. बस yeah. हम चार बैठ के धूम मचाएंगे वहाँ पे
15: 1 to 3 के बीच में वहाँ पे जरूर पहुंचेगा हमसे जरूर मिलेगा फ्री वहाँ पे पार्किंग है फ्री एंट्री है वहाँ पे एंड वहाँ पे मोहम्मद सदीक भी बाद में परफॉर्म करने वाले हैं

0: Happy Hour on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
1: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
1: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
1: अभी. ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2. Spring aa gayi hai Mitre & Mega Henderson's Home and Garden Evening ke saath. Hands-on activities, delicious food, great deals aur garden inspo. 4 to 7pm Thursday, October 8th. Sirf Mitre & Mega Henderson mein.
5: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo. Or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Drive with Sandy and Ruzbe. ये बहुत interesting topic पर बातें करेंगे. काफ़ी लोगों को लगता है कि आपके family को automatically हर एक चीज़ मिल जाता है हमारे मृत्यु के बाद. तो आप दोबारा सोचिएगा, क्योंकि will's death और क्या होता है हमारे पैसे और property के साथ जब हम चले जाते हैं. ये topic हमेशा हम लोग avoid करते हैं. हमें assumption होती है कि हमारे partner, children या हमारे family will simply sort it out. ऐसा ही हम सोचते हैं. लेकिन क्या एक्चुअली में होता है जब आपकी मृत्यु होती है विदाउट अ विल इन न्यूजीलैंड? क्या आपके एसेट्स को क्या होगा? आपके घर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स का क्या होगा? और ये प्रोसेस अननेसेसरी स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट भी क्रिएट हो सकता है. और इस एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ड्राइव में एस्टेट प्लानिंग कन्वर्सेशंस, जो काफ़ी फैमिली अवॉइड करते हैं, उसी मुद्दे पर बातें होगी. तानिया पिंटो, सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट, बातें करेंगी अबाउट कॉमन मिथ्स अराउंड विल्स और एक्सप्लेन करेगी कि क्या होता है अगर विल नहीं होता है. कुछ सिंपल स्टेप्स भी बताएंगी जिससे आप अपना थिंग्स काफ़ी ईजिया बना सकते हैं फॉर योर लव्ड वंस लेटर. बिकॉज प्लानिंग फॉर योर डेथ इजंट अबाउट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर योर फैमिली इज इन लेफ्ट फिगरिंग एवरीथिंग आउट व्हेन यू आर नो लॉन्गर देयर टू एक्सप्लेन इट. तो ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर, आपको और भी जानकारी मिल जाएगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: Of Bollywood.
3: World's best. Hamari good brands nahi hai.
2: Hum. Night Cafe on Hum.
4: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe आपके लिए जारी है. Breakfast catch up. ये podcast भी सुनना ना भूले. Topic है Beyond the Debt.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन
2: माजे लिए मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए तेरे

0: Cafe on Hum.
1: You are listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इन्जॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं, तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं। आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर। तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो, हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन. नाइट कैफे आप सुनते रहो. रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है, जिसमें प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हम लेकर आ रहे हैं. सारे रोमांटिक गाने आपके लिए होंगे. इसके लिए बस आप हमारे साथ बने रहो. आपके लिए ऐसे गाने हम पेश करते रहेंगे. जितने भी हमारे लवली रोवर लिसनर्स है, नाइट शिफ्ट वर्कर्स है, और जितने लोगों का स्पेशल डे है, आपको भी शामिल करते हैं. और तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है. गणपति पूजा तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी आगे की तैयारियाँ भी बाकी है. ट्रैवल प्लान्स भी बनने लगे हैं. तो आप हमें ज़रूर बताए 5599 पर टेक्स्ट करके कि इस बार आपने कहां सोचा है ट्रेवल करने के लिए, कौन सा डेस्टिनेशन चुना है. क्रिश का साथ है, सुनते रहो हम.

Night Cafe.

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है. दिस इज आवर फाइनल आवर. उम्मीद करता हूँ कि 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक आपने बहुत एंजॉय किया होगा. याद रहे रोवर डाउनलोड करना ना भूले. बहुत सारे फायदेमंद चीज़ें यहाँ से आपको मिलती है. तमाम प्राइजेस भी जीतने का मौका आपके पास होता है. तो फिर बहुत ही मज़ेदार ये जो फीचर्स है और यूज़र फ्रेंडली फीचर्स का भी इस्तेमाल आप कर पाएंगे और साथ ही में फ़ायदे में भी रहेंगे. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: कैफे ऑन हम।
1: एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप काम पर है, काम से ही हमारा मजा ले रहे हैं, आप अभी वहां से रोवर के जरिए हमें सुन रहे हैं, अपने फ़ोन पर सुन रहे हैं या छोटा सा रेडियो आपने रखा है वहां पर, तो वो भी अगर आपके कानों तक पहुँच रही है, आप एंटरटेन हो रहे हैं थ्रू आवर म्यूज़िक, थैंक यू सो मच। वी रियली अप्रिशिएट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कंपनी। ऐसे ही अपना साथ देते रहिएगा। कृष का साथ है 12

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, रिदम एंड रोमांस भी यहीं पर खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि रोमांटिक सॉन्ग्स को आपने एंजॉय किया होगा। हमारी मुलाकात होती है अगले हफ्ते, हम आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 8 to midnight नाइट कैफे में। अपना बहुत ही ख्याल रखिए, कृष का बहुत सारा प्यार, नमस्ते।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: Flight on Hum.
1: Stand up, pyar mujhe kichh.

0: Flight on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

माइंड सिर्फ रोवा पर। मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: ई भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night flight on Hum.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
0: Night Fly.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast. The beat of Bollywood.
3: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: Night Fly.

0: जॉगिंग करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: ए जय माताजी, माताजी ने हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

लड़की कितनी क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है, तू ब्यूटी, तू चानी, तू टनाटन, मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहाँ बनाऊंगा, मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेरे

0: चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
1: मैं हीरो,
0: तू पागल,
1: तू जीरो,
0: आवारा,
1: तुम्हारा। समझ गए इशारा।

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
1: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
1: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
1: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए.
7: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: weekdays, 6 to 10 a.m.
1: स्प्रिंग आ गई है माइटी 10 मेगा हैंडरसन्स होम एंड गार्डन इवनिंग के साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज डिलिशियस फूड ग्रेट डील्स और गार्डन इंस्पो 4 टू 7 पीएम थर्सडे अक्टूबर 8th सिर्फ माइटी 10 मेगा हैंडरसन में.
2: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
5: Time check.
6: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
7: Good morning, इस समय ठीक से बज रहे हैं.
5: हम News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Alarm bells are ringing as physician associates become a regulated workforce. Deborah Powell from the Resident Doctors Association says it has failed in the UK.
9: Patients got confused, thought that the title physician meant that they were a doctor, and these people are not doctors. They have no medical degree, they have not been to medical school, they're not medically trained.
8: Winston Peters has thrown some shade at both the National and Labor leaders during the Stuff Kingmakers debate. The NZ First leader was asked which Chris was the better PM.
10: Well, I've watched over the years a long, long time and seen people who were good at their job and some on training wheels, so to speak.
11: I'm just saying,
10: honestly, they're not in the league of the best I've seen.
8: A search is continuing for a woman in the Mount Jua area near Queenstown. Erica Quilo was reported missing from Skipper's Saddle 12 days ago. 18 search and rescue volunteers and police staff searched for clues in the area yesterday, which continues today. The first woman set for execution in Tennessee in 200 years has survived two doses. Krista Pike was reportedly still alive and snoring loudly before being taken to hospital. It follows another failed execution attempt in the state earlier this year. In sport, a thrilling start to the final round of the MPC on Sky Sport.
12: Clutch! Cam Miller wins it for Otago!
8: Cam Miller landing a penalty after the hooter as Otago beat Auckland 45-42 in Dunedin to move to the top of the table. Rugby with All Blacks travel and hospitality.com. Exclusive Rugby World Cup packages selling now. And the All Whites have beaten Panama in a penalty shootout after the match in Japan finished 1-1.
5: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
13: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं Anne's Funeral Home and on-site cremations.
7: सूचित किया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्वर्गीय राम प्रसाद और रामरति के पुत्र ऑकलैंड के राम समुज के भाई ऑकलैंड की प्रतिभा राज के पति यानी लोटोका फिजी में ऑसम ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज के डायरेक्टर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के विजेंद्र प्रसाद उर्फ विजेन की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 1:30 PM एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप राम समुज को 0212159368 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्वर्गीय राम प्रसाद और रामरति के पुत्र यानी ऑकलैंड के राम समुज के भाई ऑकलैंड की प्रतिभा राज के पति लोटोका फिजी में ऑसम ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज के डायरेक्टर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के विजेंद्र प्रसाद उर्फ विजेन की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 1:30 PM एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप राम समुज को 0212159368 पर कॉल कर सकते हैं.
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
5: जबरदस्त हिट्स
14: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
14: हम
5: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: 18 डिग्री टेम्परेचर ऑकलैंड में अभी आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 12 डिग्रीज रहेगा। मोस्टली आज बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। देयर विल बी सम फाइन ब्रेक्स शाम के समय, सनराइज 6:55 AM पर और आज का सनसेट 7:27 PM पर होगा।
5: Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
5: Breakfast catch up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Puri ki puri gang ke logo. Kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
7: Hello, Kia ora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. This is The Breakfast Show with Vijay and Pooja. And aapke liye aaj ka ye safar hum lekar aa rahe hain only on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Good morning.
11: Good morning and welcome to our Friday. Aaj badi besabri se bahut sare log is din ka intezar kar rahe the, looking forward to a well-deserved break.
7: Haan, kyunki weekend jo hai ye ek अपॉर्चुनिटी मिलती है ना लोगों को थोड़ा रिचार्ज करने की, रिवाइंड करने की। एंड टॉकिंग अबाउट वीकेंड, आपको हम ये भी याद दिला दें कि अभी इस पूरे वीक अगर देखा जाए, द वेदर हैज़ बीन सच कि कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, और ऐसे में इट हैज़ बीन क्वाइट डिफिकल्ट टू यू नो प्लान समथिंग, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज है और बाहर भी एक्टिविटीज़ प्लान करने होते हैं। यू वांट टू एंजॉय नेचर एज मच एज यू लाइक टू एंजॉय सम अलोन टाइम इनसाइड द हाउस। तो इस वीकेंड के लिए भी बताया जा रहा है कि वैसे तो साफ मौसम रहेगा सैटरडे को, लेकिन शाम के समय बारिश होगी और उसी के साथ साथ संडे के लिए भी पार्टली क्लाउडी एंड अ बिट ऑफ शावर्स जो है ये प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं।
11: सो अब सोच लें कि किस तरह से इसी तरह का मौसम जो है इसकी ये रहेगा और उसी के मुताबिक प्लान बनाएं। अगर अच्छा हो गया तो बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग प्लान्ड ऑलरेडी।
7: हाँ, आप ऑप्शंस जो है आपके पास है भरपूर ना, और उनका आप जरूर फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आज फ्राइडे 2nd of October है। आज 2nd of October को क्या कुछ मार्क किया जा रहा है, क्या स्पेशल चीजें हैं आज के इस दिन, इस पर भी डिटेल्स जो है आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे और इसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और फ्राइडे की ओनली ऑन हम।

0: सनी साइड अप।
1: यू नो आज की सनी साइड अप जो स्टोरी है ये एक स्टोरी नहीं बल्कि एक सॉन्ग है, एक गाना है जो काफी वायरल हुआ था अभी यू नो कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले भी। आई मीन बार बार ये होता रहता है, इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि इट्स समथिंग जो पहले हुआ था अब नहीं हो रहा है। इट्स समथिंग दैट व्हेन पीपल कम अक्रॉस तो वो उसे सुनना शुरू कर देते, पसंद करते, राइट? और मैंने सोचा कि आज क्यों ना सनी साइड अप इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, राइट? तो आज ये गाना आपको हम सुनाएं। ये जो गाना है इसके बारे में कुछ चीज़ें अगर हम आपको बताएं, सो ये गाना दरअसल एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है फॉरेस्ट फ्रैंक, इन्होंने कंपोज किया। और इट्स लाइक यू नो आजकल का जो रील कल्चर है, बेसिकली शॉर्ट बट समथिंग जो आपको कैची लगे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिस पर आपका ध्यान जाए, ऐसा कुछ इन्होंने बनाया है। गाने का टाइटल इज थैंकफुल। आई केम अक्रॉस दिस सॉन्ग जब मैं भी इसे स्क्रॉल कर रही थी ऑनलाइन एंड आई रियली लाइक इट, तो मैंने सोचा कि आज यही गाना आपको हम सुनाएंगे सनी साइड अप में। एंड हियर वी गो, आई होप यू लाइक दिस वन।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Global headlines.
3: आज सुबह के मुख्य समाचारों में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि फ्लाई दुबई के जो को पायलट जिन्होंने प्लेन को गिराने की कोशिश की थी को रेडिकलाइज किया गया था, जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अथॉरिटीज इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये कोई टेरर अटैक या प्लेन क्रैश करने की साजिश थी। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई फ्लाइट में ओमानी को पायलट ने इंडियन कैप्टन स्मिथ मच्छर पर जानलेवा हमला कर प्लेन को हजारों फीट नीचे गिरा दिया था। यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने अटैकर को काबू में किया, जबकि फ्लाइट में मौजूद डेंटिस्ट और दो ऑफ रोस्टर पायलट्स की मदद से एयरक्राफ्ट को सऊदी अरेबिया के तबुक एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करवाया गया। भारत में महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक बीच पर स्ट्रॉन्ग सी करंट्स की चपेट में आने से पुणे से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के 8 टीनेज स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई है। आलंदी के विनर्स एकेडमी से पिकनिक पर आए 48 लोगों के ग्रुप में ये 16 साल के बच्चे पानी की गहराई और लहरों के बहाव का गलत अंदाजा लगाकर समुन्द्र में उतर गए थे। फिजी में पार्लियामेंट ने एचआईवी एड्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है, जिससे एचआईवी के फैलाव को रोकने के लिए ड्रग यूजर्स को स्टेराइल नीडल्स और सिरिंजेस प्रोवाइड कराए जा सकेंगे। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रातू एटोनियो ललमबलावू ने साफ किया है कि यह हार्म रिडक्शन प्रोग्राम है, जिससे ड्रग्स या ड्रग ट्रैफिकिंग लीगली अलाउ नहीं होती, बल्कि इसका मकसद डिजीज ट्रांसमिट। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रातू एटोनियो ललमबलावू ने साफ किया है कि यह हार्म रिडक्शन प्रोग्राम है, जिससे ड्रग्स या ड्रग ट्रैफिकिंग लीगली अलाउ नहीं होती, बल्कि इसका मकसद डिजीज ट्रांसमिशन को रोकना है। इस प्रोग्राम के तहत फ्री स्टेराइल नीडल्स, कॉन्डम्स, प्री पेप मेडिसिन, काउंसलिंग और सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्लिनिक्स, एनजीओस और प्राइवेट फार्मेसीज के जरिए दी जाएंगी। अपोजिशन एमपी एल्विक महाराज ने बिल का समर्थन करते हुए रिटेल फार्मेसीज के लीगल प्रोटेक्शन पर क्लैरिटी मांगी, जबकि बाकी नेताओं ने इसे बिना डिले के लाइफ सेविंग स्टेप बताया है। स्पोर्ट्स में अगर देखें तो आईसीसी ने 2027 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फिक्स्चर्स अनाउंस कर दिए हैं। ये टूर्नामेंट अगले साल अक्टूबर में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नेमीबिया में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच थर्सडे 7 अक्टूबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का सामना करेगा। फ्राइडे 8 अक्टूबर को इंग्लैंड बांग्लादेश से खेलेगा। सैटरडे 8 अक्टूबर को जिम्बाब्वे नजर आएगा और हाउस साउथ अफ्रीका का पहला मैच जो है शनिवार 9 अक्टूबर को ब्लैक कैप्स के खिलाफ होने जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच संडे 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। यूएफा नेशंस लीग के मैचेस जो है आज एक बार फिर खेले जा रहे हैं। मैच डे 3 में अभी अजरबैजान और लेचेस्टन के बीच दूसरे हिस्से में खेल जारी है और दोनों टीमें निलोल से बराबर हैं। 7:45 AM पर इसराइल कोसोवो से खेलेगा। ग्रीस वर्सेस नेदरलैंड्स, सेबिया वर्सेस जर्मनी, आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रिया, वेल्स वर्सेस नॉर्वे, माल्टा वर्सेस गिलबर्टा, डेनमार्क वर्सेस पोर्चुगल, कजक और इसके अलावा बाकी के मैचेस जो हैं ये कल खेले जाएंगे। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड।
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और आज के हमारे ब्रेकफास्ट शो के सफर में बहुत सी जरूरी इंटरेस्टिंग जानकारियां जो है ये आपके नाम हमें करनी है. बट राइट नाउ आज की जो सबसे पहली खबर है आपके लिए हम लेकर आए हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सैड आफ्टर हियरिंग दिस क्या, या फिर हाउ मेनी ऑफ यू विल बी लाइक कि यार अच्छा हुआ, लाइक इट्स ओके, इट डजंट मेक मच डिफरेंस. आई मीन ऑफकोर्स ज़्यादा डिफरेंस तो वैसे बहुत से लोगों के लिए नहीं करेगा, बट ऑन द अदर हैंड सम पीपल वर फैंस ऑफ दिस थिंग जिसके बारे में मैं अभी बातें करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉफ़ी विद करण. कॉफ़ी विद करण जो है इसकी शुरुआत हुई थी इन ईयर 2004 नवंबर महीने में और तब से लेकर आज तक इस पर्टिकुलर जो शो है आई कैन से इसके इतने सारे जो एपिसोड्स है सीजन्स है ये अभी तक रिलीज हुए हैं. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 8 सीजन्स जो है इस शो ने कर लिए हैं.
1: ओके
0: एंड अब कहा गया है कि द फाइनल सीजन रिलीज होने जा रहा है विच इज सीजन 9.
1: Oh, that's good news.
0: Jio Hotstar. Jio Hotstar. Coffee with Karan one last time. Kyunki ab iske baad there won't be any more Coffee with Karan. It's like an emotional farewell. जो जियो हॉट स्टार पर एक टीज़र के साथ अनाउंसमेंट जो है इसकी की गई है. एंड ऑफ कोर्स करण जौहर जो कि आ रहे हैं वापस एज दी होस्ट ऑफ दिस पॉपुलर चैट शो एंड दिस इज़ द फाइनल सीजन जिसमें ये दिखने वाले हैं. इट्स रिलीजिंग ऑन जियो हॉट स्टार ऑन द 14th of October.
1: आई डोंट नो सबकी अपनी अपनी राय होगी बट आई एडमायर करण जौहर फॉर द करेज ही हैज.
0: हाँ एक्चुअली में
1: उनके पास बहुत हिम्मत है टू डू थिंग्स सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट जाकर भी जिन चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता ही इज वन पर्सन जो उन चीजों के बारे में बातें कर सकता है. सो
0: एंड ऑन द अदर हैंड ही हैज बीन समवन हु हैज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ना फॉर द चॉइसेस जो वो करते हैं और उन चॉइसेस के लिए उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया है कुछ हद तक कि अगर आप इस जगह पर सोचो कि आप होते, आई मीन इफ आई पुट माई सेल्फ इन हिज शूज एंड आई एम लाइक अगर मुझे मेरे चॉइसेस के लिए इतना क्रिटिसाइज किया गया होता मैं तो कब का आई वुड हैव बीन लाइक फिनिश्ड इन अ वे कि मैं शायद वापस ही नहीं कर पाती ऑन स्क्रीन और एवर ना अपने काम को लेकर भी. बट ही हैज बीन वेरी क्या बोलते वो encouraging about it कि उनके साथ जो भी हुआ जो भी सिचुएशन था बावजूद उसके kept on coming back.
1: See the thing is I'm not saying कि I like everything Karan does.
0: Yeah.
1: But I mean जो शायद फिल्में बनाते हैं जरूरी नहीं कि मुझे उनकी सारी फिल्में पसंद आए, जरूरी नहीं कि जो भी वो करते हैं वो मुझे पसंद आए, लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी लगती है उस इंसान के बारे में वो अच्छी लगती
0: है. There are a lot of good qualities. Yeah.
1: Yeah, obviously.
0: Things worth admiring about him as well.
1: So many things to learn from Karan about life, zindagi, society and वो सारी चीजें. By the way, लगे हाथों जल्दी जल्दी आपको बता दें अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है. आज आ रही है प्रेम कीटाणु.
0: इमरान
1: वीर पहाड़िया
0: नहीं आयुष्मान खुराना. आई वाज गोइंग टू से
1: अपार शक्ति खुराना.
0: अपार शक्ति
1: आफिया सायद और वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना इस फिल्म में काम कर रहे हैं. उसके अलावा दृश्यम द कंक्लूजन
0: ये भी रिलीज हो रही है,
1: ये भी आज रिलीज होने जा रही है. और इंग्लिश में एक मूवी आ रही है वेरिटी, ये आज रिलीज होने जा रही है. इसके अलावा आज एक और फिल्म जो है ये रिलीज होने जा रही है. नवजोत गुलाटी और कनिष्क सिंह देव इन्होंने इसे लिखा है. मृणाल ठाकुर, विजय राज, हुमा खुरैशी जो है ये हेडलाइन कर रहे हैं इस फिल्म के कास्ट को. और ये फिल्म जो है इस पूजा मेरी जान.
0: अरे
1: हाँ, ये द इंटरेस्टिंग थिंग इज ड्रामा मिस्ट्री रोमांस थ्रिलर सब कुछ आपको मिलेगा इस फिल्म का. वो क्या बोलते हैं जो पोस्टर है आप देखेंगे काफी इंट्रीकिंग लग रहा है. जिस तरह से टाइटल है उस तरह से नहीं लग रहा है.
0: टाइटल तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है.
1: okay,
0: बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे.
1: ये फिल्म आज रिलीज होने जा रही है. और आज इंग्लिश में एक और फिल्म डिगा ये रिलीज होगी. नेक्स्ट वीक बॉक्सी और उड़ता तीर, साथ में इंग्लिश मूवी जो है द सोशल रेकनिंग ये रिलीज जा रही है. 15th October जेलर 2, रानवाली 16th October को, और नई नवेली ये भी 16th October को रिलीज होने जा रही है. उज्जवल द उज्जवल निकम स्टोरी प्रहार ये भी 16th October को रिलीज होगी. और उसके अलावा 23rd October को पहला प्यार दूसरी बार, मैं ना रहा मेरा ये रिलीज होगी. लिटिल थॉमस, तू है मेरी किरण, और इसके अलावा काली खेती ये भी 23 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है।
0: सो अक्टूबर महीने में भी बहुत सी फिल्में हैं जो आने वाली है ना। लेट्स सी कि कौन सी फिल्म कितना कमाल करती है द बॉक्स ऑफिस पर। फिलहाल के लिए कमिंग अप नेक्स्ट आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आज का हमारा पहला सवाल ये भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: देखो हम आ गए।
4: Accurate traffic.
5: Meanwhile, in warehouse country,
6: quite cloudy for us today. A little sunshine at times, a high of 17 degrees. Coming into the city, motorways are still very calm and quick. Northern, still just a 15-minute drive in from Constellation, 27 all the way from Silverdale. That is really about as quick as it gets. Northwestern, 16 minutes, Massey to the city, nothing holding you up. Southern, 19 in from Mutoko, fast and southwestern, good both ways.
5: And the country's cheapest nature's fresh bread, eggs and milk are waiting at the warehouse.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
7: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
10: उबर ड्राइवर्स, If you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Breakfast Catch Up.
2: ब्रेकफास्ट कैचअप आपके लिए जारी है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा ये ब्रेकफास्ट शो और 22 मिनट फिलहाल हमारे साथ अगर देखा जाए समय में तो बाकी है ठीक 7 बजने में.
3: आज है 2nd of October. आज का दिन देखिए कई चीजें मार्क की जा रही हैं. इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस.
2: ओके.
3: वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे है आज. Today is Kids Music Day और World Smile Day. ये भी आज मार्क किया जा रहा है.
2: Very nice.
3: इसके अलावा 2 अक्टूबर आज है. 2 अक्टूबर का दिन आज का दिन है बड़ा महान.
2: हाँ, आज के दिन दो फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान.
3: सो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था. उनके साथ बॉलीवुड में हिना खान, के मेनन, आशा पारेख, रोहित रॉय और साथ ही में कई अन्य जो सेलिब्रिटीज हैं इनका जन्म हुआ था. पेसिस खम्बाटा, इनको आप जानती हैं?
2: नहीं.
3: इनका नाम नहीं सुना आपने कभी?
2: सुना है बट आई डोंट नो कि आई मीन आई डोंट रिमेम्बर कि किस चीज के लिए जाने जाते हैं.
3: इन्होंने एक क्या बोलते हैं एक स्टैंडर्ड जो है ये सेट किया था फॉर इंडियन विमन. और इनका जन्म 1948 में हुआ था एक पारसी फैमिली में. और शी वाज द सेकंड विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया इन द ईयर 1965 में जाकर इन्होंने फेमिना मिस इंडिया जब दूसरी बार हुआ था ये जीता था. और साथ में उन्होंने ये थर्ड इंडियन लड़की थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था. पर्सिस खम्बाटा एंड आई थिंक शी वाज अराउंड 13 इयर्स ओल्ड क्योंकि एक फोटोग्राफर ने इनकी फोटोज जो है ये ली थी जो अभी के टाइम में अगर कहा जाए उस टाइम पर काफी वायरल हुआ. एंड उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है ये मिले. 13 इयर्स की उम्र में रेक्सोना का जो एडवर्टीजमेंट है इसमें ये नजर आई. एट द एज ऑफ 13 इयर्स
2: कमर्शियल में दिखी थी पहले.
3: शी वेंट ऑन टू हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया एंड हॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया. 1979 में आई थी स्टार ट्रैक द मोशन पिक्चर. उसमें क्या कोई लेफ्टिनेंट थी.
2: I was just reading about her.
3: हाँ, तो उसमें भी इन्होंने काम किया था. आज के दिन इनका भी जन्म हुआ था. पर्सिस खम्बाटा.
2: Very nice. और इधर चलिए आपके लिए और भी ऐसे जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं ये हम लेकर आते रहेंगे. बाय द वे अगर आज आपका बर्थडे या आपकी किसी जान पहचान के शख्स का बर्थडे है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट करते हुए 5599 पर. अगले घंटे हम आपको विश करेंगे. बट आज का पहला सवाल जो आपके लिए हम लेकर आए हैं आज आपको हम बताना चाहते हैं कि वी टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड सॉन्ग्स बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. नॉट बॉलीवुड ओनली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं गाने. और गाने जो है कि फिल्म की कहानी जो है कभी कभी वो भी दिखाती है. लोगों को एंटरटेन भी करती है. और फिल्म शायद कभी कभी चले ना चले लेकिन गाने चल जाते हैं फिल्मों के, ऐसा भी होता है. तो ऐसे में गाने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऐसी बहुत सी हिंदी फिल्में हैं जिनके बारे में अगर बातें करें तो उनके गाने इतने हिट हुए हैं और लोगों ने इतना पसंद किया है. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि देयर आर सम ऑफ दीज हिंदी फिल्म्स जिनके पास एक रिकॉर्ड है ऑफ हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स.
3: हाँ,
2: कोई कोई फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें
3: थोड़ी थोड़ी देर में गाने आपको सुनाई
2: देते. इतने सारे गाने होते हैं ना कि आप ऐसे थोड़ा शॉक भी हो जाओगी कि यार इतना गाना, मतलब कौन सा गाना था या कौन सी मूवी में, इस मूवी में कौन कौन से गाने थे. याद करने में भी कभी कभी परेशानी होती है. बट आज चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे क्या आपको पता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बातें अगर करें तो कौन सी वो मूवी है जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं. कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं. आपको इस फिल्म का नाम पता है और अगर नाम के साथ साथ आप बता दें कितने गाने हैं तो भी कमाल हो जाएगा. तो अपने आंसर्स जो है ये आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर. नेम दैट हिंदी मूवी दैट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स और अगर आपके पास डिटेल्स हो एज टू कि कितने गाने हैं वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं. बी एफ आंसर या नेम 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है. तो आज हमारी बॉलीवुड मूवी आपको जो बतानी है वो है उस मूवी के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं. अपने मैसेजेस आप सेंड करें हमारे पास और आपको दे रहे हैं जवाब देने के लिए करीबन 5 मिनट्स का टाइम. राइट नाउ गुड मॉर्निंग के कई मैसेजेस हमारे पास आए थे तो अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको विश कर लेते हैं. राज है ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट. सुबह सुबह आपने हमें याद किया है, थैंक यू सो मच आपके साथ और आपके समय के लिए. बॉबी मान जी का भी मैसेज आया है और इन्होंने भी सुबह सुबह अपना जो मैसेज है ये हमारे पास सेंड किया है और कहा है जय माता दी, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैप्पी फ्राइडे, हैव अ लवली वीकेंड. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए.
3: तो ये सुबह जो है इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे और राम राम, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ गुड डे लिसनिंग फ्रॉम सुबह फिजी. अच्छा अब नौसोरी से सुबह चले गए,
2: शिफ्ट हो गए
3: मिस्टर माटा माटा, आई मस्ट बी ऑन अ हॉलीडे.
2: या ऑब्वियसली. रवनेश मुदलियार का भी गुड मॉर्निंग मैसेज आया, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार पूजा एंड विजय एंड लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी एंड लवली डे. थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

मान दे दूं, अपने हिस्से के सारे अरमान दे दूं, इतना पागल हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम मांगो दिल तो मैं जान दे दूं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: ThePropertyDirectory.com.
3: Lots of cloud today, maybe a little sun, a high of 17. Into the city at the moment, it's starting to slow a little bit here and there, but overall we're still very quick. Southern Motorway, 23 minutes, Manukau to the city, just building south of Manukau around at Takanini Manurewa. Northwestern, 19 minutes, Massey to the city, slowing down when you hit Greylin. Northern, 17 in from Constellation, mostly clear, slowly building around Albany.
2: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
4: Dibba khul gaya.
5: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे।
6: संजना का डिब्बा खुल गया।
7: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
6: डिब्बा खुल गया।
7: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू 10,000

0: इंश्योरेंस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
1: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
0: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बायर बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: 9 मिनट ही रह चुके हैं सुबह हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में। आज फ्राइडे 2nd ऑफ अक्टूबर की ये सुबह आपके नाम कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। हमने आज आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या आपको उस हिंदी फिल्म का नाम पता है जिसमें सबसे ज़्यादा गाने हैं, और अगर नाम के साथ साथ आप नंबर ऑफ सॉन्ग भी बता सकें तो इट विन दैट वुड बी अमेजिंग। आई थिंक अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट आंसर है ना, ये रवि का आया है। रवि ने हमारे पास मैसेज किया है, माई एल्डेस्ट सिस्टर्स वेडिंग मूवी हैज़ द मोस्ट सॉन्ग। वेरी नाइस रवि, बट अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है आपका जवाब। थैंक यू हमारे पास मैसेज करने के लिए। सनी है, साथ में रोनल है, आपने भी अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं। आर्तिका है, आपका जवाब आया है इसके साथ साथ। नितिका ने हमारे पास टेक्स्ट किया है, काजल है, काव्या है, देविका ने भी मैसेज अपना भेजा है, मोरिन है, आंचल है, रीना है और रोनल है, विमल है, आपका भी मैसेज हमें मिला है। रोनेश, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए। खुशबू, आपने भी अपना जवाब हमें सेंड किया है। So, I am kind of surprised because ये जो फिल्म है, ज़्यादातर लोगों ने हमारे पास जो जवाब भेजा है saying कि the movie, हिंदी मूवी विद द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इज हम आपके हैं कौन। नाउ हम आपके हैं कौन जो है ये इज़ नॉट द आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर आई वुड से। हम आपके हैं कौन, आई कैन से कि कहीं ना कहीं हाँ ये थोड़ा सिमिलर हो सकता है, बट इट्स नॉट द हिंदी मूवी विद द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स। इसमें 14 गाने थे, 14 गाने थे हम आपके कौन में, लेकिन जिस मूवी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जो हिंदी मूवी, इसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है ऑफ हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स। और हिंदी सिनेमा में अगर देखा जाए तो मैंने तो नहीं सुना भाई किसी फिल्म में इतने सारे गाने। आई थिंक इट वॉज काइंड सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल जब मैंने सुना कि अच्छा इस फिल्म में इतने गाने हैं। बट हम आपके हैं कौन इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो डू यू थिंक यू नो द आंसर? अगर आप दोबारा कोशिश करना चाहें ज़रूर हमारे पास अपने मैसेजेस आप सेंड करें। आपको बस बताना है हमें वो कौन सी हिंदी फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा गाने हैं। और क्लू के तौर पर मैंने आपको ये भी बताया कि इस फिल्म का इस फिल्म के पास एक रिकॉर्ड भी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसमें भी इसका नाम शामिल है ऑफ हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स। सो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स हमारे पास टेक्स्ट करें। आपको लिखना है BF स्पेस योर आंसर, योर नेम और भेज देना है 5599 पर।

0: Future.
1: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
2: चार मिनट हो रहे हैं 7:00 मेगा फाइनेंस की ओर से. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड वेलकम.
3: तो हमने पिछले घंटे आपसे पूछा था वो कौन सी हिंदी फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा गाने जो है ये है, और फिर मैंने क्लू भी दिया था बाद में चलकर कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस फिल्म का नाम शामिल है, फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स. सो ये जो फिल्म है इसके बारे में आपको बता दें, रिलीज इन द ईयर 1932 और जमशेद जी जहांगीर मदन जो है इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म के बारे में कहा गया है कि इसका नाम है इंद्रसभा. इसमें 72 गाने हैं और ये जो 72 गाने हैं इसकी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन द ईयर 1980 रिकग्नाइज किया गया एज द हिंदी मूवी विद द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स. और इस फिल्म में अगर देखा जाए कि क्यों इतने सारे गाने हैं तो कहा गया मूवी जो है इट वॉज अडेप्टेड फ्रॉम एन 1853 उर्दू स्टेज प्ले. ऑलमोस्ट द एंटायर डायलॉग जो है ये गानों के वर्ड्स में लिखा गया था, विद नियरली एवरी कैरेक्टर सिंगिंग देयर लाइन. इस वजह से इस फिल्म में इतने सारे गाने हैं.
2: 72
3: जी,
2: दैट्स अ लॉट.
3: या तो दैट्स व्हाई ना ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें इतने सारे गाने हैं. कुछ लोगों ने वैसे हमारे पास हम आपके कौन लिखकर भेजी थी, बट मैंने बताया था कि हम आपके कौन नहीं है सही जवाब. अगर कुछ और हिंदी मूवी को हम देखें जो मॉडर्न डे बॉलीवुड फिल्म्स हो, इसमें हम आपके कौन जरूर 1994 में आई, 14 गाने थे इसमें. और उसके बाद रॉकस्टार 2011 में आई, इसमें भी 14 गाने थे. ताल जो 1999 में आई थी इसमें 12 गाने थे. एंड जग्गा जासूस 2017 में रिलीज हुई. आई हैवंट सीन द मूवी सो आई कांट कंफर्म इट पर्सनली कि मैंने देखी है, दैट्स व्हाई आई नो. पर कहा गया कि इसके म्यूजिक एल्बम में 29 सॉन्ग्स जो है ये रजिस्टर्ड है.
2: कौन सी फिल्म?
3: जग्गा जासूस.
2: ओह,
3: मुझे तो 2-3 गाने ही पता है, उल्लू का पट्टा और गलती से मिस्टेक. आई डोंट नो एनी अदर सॉन्ग्स, बट सिमिलर वे में, क्योंकि जग्गा जासूस में भी बहुत से लाइन्स जो है ये गा गा कर बोले गए थे, डायलॉग्स जो है.
2: अच्छा,
3: सो दोज डायलॉग्स दोज लाइंस आर रिगार्डेड एज सॉन्ग्स. हाँ, मैंने भी नहीं देखी, तो इसी वजह से उसे 29 गाने जो है ये रजिस्टर हुए हैं इस फिल्म के नीचे, इस फिल्म के नाम पे बेसिकली. सो सम इंटरेस्टिंग अपडेट्स आज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर बातें करें तो. फिलहाल इस घंटे मॉर्निंग मैडनेस में थोड़ी देर बाद आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स.

0: राशि वाइब्स।
1: कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि आज कैपेबिलिटी या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आज आपसी समझ बढ़ेगी, अपनों से आपकी दूरियां जो है ये कम रहेंगी। फाइनेंशियली दिन देखें ठीक ठाक ही रहेगा।
2: और उसके बाद वृष यानी टॉरस, आपके लिए कहा गया है कीप योर प्लान्स सिंपल टुडे। समथिंग जो बहुत स्मॉल हो लेकिन आप अगर उसे एंजॉय कर रहे हैं, दैट कुड बी दी हाईलाइट फॉर योर डे टुडे। इसीलिए लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ होती है उनको अप्रिशिएट करना और एंजॉय करना सीखना चाहिए आपको। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्लोइंग डाउन, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ आपको हेल्प करती है टू कम बैक अगेन एंड यू नो डू बेटर।
1: मिथुन यानी जेमिनी, आज प्रोजेक्ट जो है या फिर कोई काम है नया आपको मिल सकता है, और पार्टनरशिप में जो बिजनेस आप करते हैं उसमें बातचीत के ज़रिए आप बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी निजी ज़िंदगी आपके जीवन साथी के साथ बहुत ही प्यार भरी होगी। इनकम के कुछ नए सोर्सेस आपके लिए तैयार हो सकते हैं।
2: और कर्क यानी कैंसर, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि आप शायद कुछ क्वालिटी टाइम जो है ये चाहते हैं उन लोगों के साथ जो आपको बहुत पसंद है, जिनकी आप कद्र करते हैं, जिनका आप यू नो जिनको आप जिनके आप केयर करते हैं। और दूसरी ओर कहा गया है कि आज ना आपको काम को थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा एंड मेक सम स्पेस अपनी लाइफ में थोड़ी हंसी के लिए, थोड़ा मज़ा के लिए, फॉर अ गुड कंपनी एंड गुड फूड एज वेल।
1: सिंह यानी एलियो, अपने करियर में आज आप प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं ये निखर कर लोगों के सामने आएगी, और आज बिजनेस डील्स पर कुछ नई बातचीत शुरू करने का अच्छा दिन है। फाइनेंशियली कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आज आपको मिल सकती हैं।
2: और इसके बाद अगर देखा जाए तो कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है डोंट लेट आपका जो टू डू लिस्ट हो आपके फ्राइडे के ऊपर ये हावी पड़ जाए, ऐसा ना होने दे आज आप। कोई चीज़ें हैं जो आप बाद में कर सकते हैं, वो आप ज़रूर ऐसा करें। यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि अपनी लिस्ट को देख लीजिए, जो ज़रूरी है उसे गेट इट डन टुडे एंड देन जस्ट स्विच ऑफ, एंजॉय आपका फ्राइडे, एंजॉय योर डे, यू हैव डन इनफ दिस वीक। और इसीलिए ये परमिशन आपको लेनी चाहिए खुद के लिए कि आप अपना जो ब्रेक है इसे एंजॉय करें।
1: तुला यानी लिब्रा, मेंटली और फिजिकली एकदम चुस्त दुरुस्त, एकदम एनर्जेटिक, फ्रेश फील करेंगे। अचानक पैसों का फायदा आज आपको हो सकता है। बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा था उसमें आज आप कुछ तेजी जो है ये भी नोटिस करेंगे।
2: उसके बाद अगर देखा जाए तो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिसकी वजह से आपका प्लान चेंज हो जाएगा। रादर देन रेजिस्टिंग इट आप इसे इंजॉय कीजिए, एक सरप्राइज है जो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है और ये हमेशा आपके जहन में रहेगा। इट विल बी अ मेमोरेबल सरप्राइज फॉर यू।
1: धनी यानी सजिटेरियस, क्रिएटिव कामों में सक्सेस हासिल करेंगे, आपको प्रेज भी किया जाएगा, और बिजनेस में कोई नया डायरेक्शन अगर आप अपनाते हैं तो इससे बड़ा फायदा हो सकता है। बच्चों के बारे में कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है।
2: और उसके बाद अगर देखा जाए तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है यू हैव बीन फोकस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आज का दिन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए लाइफ सिर्फ काम नहीं होता, लाइफ में फन होता है, फैमिली टाइम होता है, हैप्पीनेस होता है, जो आज आपको एक्सपीरियंस करनी जरूरी है। इसीलिए आज आपको एक बहुत जरूरी काम करनी है, वो है टू स्विच ऑफ एंड एंजॉय योर मोमेंट।
1: कुम्यानी एक्वेरियस, अपने इंटेलिजेंस से आज आप काफी यू नो जटिल समस्याओं को सॉल्व करेंगे काम पर, और लोग काफी खुश होंगे आपसे। दोस्तों के साथ समय बिताने से आज आप काफी हैप्पी फील करेंगे। फाइनेंशियली दिन मजबूत होगा और हेल्थ भी बढ़िया रहेगा।
2: और इसके बाद फाइनली मीन यानी पाइसेस, योर मूड कुड लिफ्ट व्हेन यू स्पेंड टाइम अराउंड पॉजिटिव पीपल। इसीलिए जो लोग आज आपको अच्छा महसूस कराते हैं उनके साथ रहना आपके लिए जरूरी है, ना कि उनके साथ जो आपकी एनर्जी आपसे ड्रेन कर लेते हैं। एंड लेट गो ऑफ सम स्मॉल वरीज, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी खुशी के आड़े आ सकती हैं, इनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा। ये थे आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए। अब बारी है थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: चुप हो जा पापियो, चुप हो जा।
0: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
5: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone for a limited time. The Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
6: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
7: At PB Tech, they keep it no frills, so they can bring you those best price thrills. Say no to fancy stores and yes to better deals. Search pbtech.co.nz.
8: Check.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
9: Celebrity Alarm.
11: Hit it. कल हमने जिम कैरी की आवाज़ सुनाई थी और कुछ लोग थे जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में उनकी आवाज़ पहचान ली, तो कुछ लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, क्लूज लिए, मतलब हमने दिए, फिर जाकर आवाज़ पहचानी। आज जिनकी आवाज़ हम लेकर आए हैं, ये बहुत जाने माने हैं, पर कमाल की बात ये है कि इनका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी और इन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि इनके लाइफ का एक ऐसा टाइम था जहाँ पर ये काम कर रहे थे कंटिन्यूसली, बट पीपल वर नॉट रियली रिकग्नाइजिंग हिम और नॉट अप्रिशिएटिंग हिम, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो खुद उनको अच्छा लगे।
12: ओके, इट वाज जस्ट वर्क जो उनको मिल रहा था और वो कर रहे थे।
11: या एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। तो उसी इंटरव्यू का एक बिट आज आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं, इनफैक्ट वही पार्ट हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। आप ये सुनिए और फिर अनुमान लगाइए कि ये कौन है आज के जो हमारी सेलिब्रिटी है।
13: वक्फा गुजरा 10 साल जिसमें काम में करता रहा लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा। सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है। ये जरूर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो लोग मुझ में देख नहीं पा रहे।
11: तो ये आवाज मुझे ऐसा लगता है कि काफी जानी पहचानी है, बट क्या सच में जानी पहचानी है ये नहीं अभी पता चलेगा।
12: A powerhouse of a talent.
11: Very entertaining, I would say.
12: बहुत मजा आता है, अलग अलग, और जिस तरह के भी किरदार आप इनको देते हैं बखूबी निभाते हैं ये उन रोल्स को।
11: अच्छा,
12: चाहे वो
11: मत डिस्क्राइब करना कोई रोल,
12: नहीं चाहे वो एक कॉर्पोरेट रोल हो या फिर एक देहात के व्यक्ति का रोल हो।
11: राइट, ओके, दैट वे यू वर डिस्क्राइबिंग, गुड। राइट, तो आई थिंक बहुत से कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए हैं, बट देयर इज दिस वन पर्टिकुलर कैरेक्टर जो लोग इनका बहुत पसंद करते हैं। ही इज ऑल्सो मैंशनड इन द इंटरव्यू लेटर ऑन कि दैट कैरेक्टर गेव हिम अ लॉट ऑफ लव, जो शायद जिस जो वो चाहते थे। So finally that breakthrough came to him, but many many years later in his career. कौन है ये? चलिए एक बार फिर से आवाज सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
13: एक लंबा वक्फा गुजरा 10 साल जिसमें काम में करता रहा लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा। सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है। ये जरूर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो लोग मुझ में देख नहीं पा रहे।
11: तो कौन है ये? जल्दी से अपना जवाब हमारे पास अब सेंड करें। BF लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना आंसर लिखिए और 5599 पर अपने नाम के साथ आप इसे सेंड कर दें। जवाब देने के लिए आपके पास है 5 मिनट्स का टाइम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
9: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
15: मैं लाऊं अपना ए गेम।
9: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: finance experience. Call 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, साउथ ऑकलैंड के पापाजॉय टोय में एक घर पर हुई सीरियस घटना के बाद पुलिस, फायर क्रूज और पैरामेडिक्स की बड़ी इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट हुई और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। नेबर्स ने डिकेड्स से रह रहे मल्टी जनरेशन फैमिली के घर पर हुए इस इंसिडेंट पर गहरा सदमा जताया, जहां लेट नाइट तक पुलिस और फायर ट्रक्स मौजूद थे। घर के बाहर ब्लैक टॉप लगाया गया है, हालांकि अभी तक किसी के इंजर्ड होने या घटना के असली कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। हॉलीवुड एक्टर क्लिफ कर्टिस ऑकलैंड के वाटर फ्रंट पर एक हाई स्पीड कार क्रैश में घायल हो गए हैं, जिसमें उन्हें इंटरनल इंजरीज आई हैं और उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। एवेटर स्टार के कस्टमाइज्ड ब्लैक टेस्ला ने जेलिको और हॉल्सी स्ट्रीट के कोने पर एक पार्क टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक शख्स को गाड़ी काटकर सीरियस कंडीशन में निकालना पड़ा था। ऑल वाइट्स ने कल एक मैच में पैनामा को पेनल्टी किक्स में 5-3 से हराया। फुल टाइम पर दोनों टीमें जो हैं एक एक गोल से बराबर थीं। सनातन वर्ल्ड कप के अंतर्गत कल दूसरे दिन के मैचेस जो हैं ये खेले गए, और कल के मैचेस की ओर अगर देखें तो कल बिल मैकिनली पार्क पर जो मैचेस हुए उसमें एनजेड नंडरोंगा सनातन की जीत फिजी वारिम्बतिया के खिलाफ 3-1 से हुई। मैनिकाउ सनातन 2, फिजी नांदी सनातन 0, न्यूजीलैंड सनातन 1, मेलबर्न सनातन 1, एनजेड लम्बासा सनातन 5, फिजी नरेरे मकुई सनातन 0, ऑस्ट्रेलियन सनातन 4, टेआओ मूटू सनातन 0, वेलिंगटन सिटी सनातन 3, फिजी वोतवालेवु सनातन 0, फिजी समम्बुला सनातन 5 और क्वींसलैंड सनातन 0। ये 40s ग्रेड का मैच खेला गया। हैमिल्टन सनातन 3, मेलबर्न सनातन 0 और कल के आखिरी मैच में क्वींसलैंड सनातन की जीत फिजी नकाईकोंगो रिवा सनातन के खिलाफ 2-0 से हुई। बाकी के मैचेस के रिजल्ट्स को आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज मैचेस सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे। पहले मैच में बिल मैकिनली पार्क पर मेलबर्न सनातन फिजी बरारा साम्बेतो सनातन से खेलेगा, जिसके बाद न्यूजीलैंड लम्बासा सनातन वर्सेस वोइटाकरे सनातन, ऑस्ट्रेलियन सनातन वर्सेस वेलिंगटन सिटी सनातन, 1:30 बजे वेलिंगटन सनातन वर्सेस फिजी नकाईकोंगो रिवा सनातन, 2:40 PM वाइकाटो सनातन वर्सेस कैलिफोर्निया सनातन, 3:50 PM फिजी नरेरे मकुई सनातन वर्सेस एनजेड रिकिरिकी सनातन, 5:00 बजे हॉक्स बे सनातन वर्सेस मेलबर्न सनातन, 6:10 PM न्यूजीलैंड नंडरोंगा सनातन वर्सेस एनजेड मबा सनातन, 7:20 PM मैनिकाउ सनातन वर्सेस ऑकलैंड सनातन, और 8:30 PM पर आज बिल मैकिनली पार्क का आखिरी मैच न्यूजीलैंड सनातन ओल्ड स्टार्स और क्वींसलैंड सनातन के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा मैचेस आज बैरी केटिस पार्क के दोनों फील्ड, ऑमिस्टन प्राइमरी स्कूल फील्ड 3 और विलियम ग्रीन डोमेन में भी जारी रहेंगे, जहां से अपडेट्स हम आपके लिए हम पर लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Sanathan World Cup updates on Hum, brought to you by NYF Services. Uber drivers, apply for your claims online at nyfservices.com. Buildcaps Real Estate, invest in Dubai. Book your one-to-one consultation today. Visit buildcaps.com. And Professional Visa Services, based in Auckland and Hamilton, offering multiple visa pathways with a team of licensed immigration experts.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, dekho maa gaye.
1: Accurate traffic.
5: Shower dome, shower tops.
6: Quite cloudy today. Some sunny patches, high of 17 degrees. If you're on the southern motorway, a possible incident at the East Tāmaki on-ramp, but no full confirmation on that. Just looks a bit slow. We're slow Manukau to Otahu and then Ellerslie to Green Lane. 25 minutes Manukau to town isn't bad. Northwestern, a quick 19 in from Massey, slow from Grey Lynn. Northern, a bit slow at Silverdale. That's about it.
5: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
7: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko डाइनिंग टेबल पर ले आए
8: वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
9: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
10: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
11: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
12: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
13: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
14: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
15: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
16: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
17: Can't you just use my line from the TV ad?
16: Well, let's just do it again, please, Pepper.
17: Phone dollars are for phones.
18: Obviously?
16: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
18: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
16: Q-T's and C's.
19: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/OneWallet.
16: Call in the NBIT.
19: One New Zealand. Let's get connected.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
3: Birthday greetings.
20: Iska birthday bhai?
21: Mera bhi birthday hai. Chalo line mein aa jao.
20: Happy birthday to you.
22: A very very happy birthday, many many happy returns of the day. आपको विश करने का समय हो रहा है. सबसे पहले आज a very happy birthday to लीलावती of Flatbush. आपको विश करना चाहते हैं lots of love, hugs and kisses and best wishes. आपके हस्बैंड हैं राम कुमार, बेटा है विनेश कुमार और बहू है आपकी विमलेश कुमार. Not forgetting आपके grand children प्रीतल and शायल and grand son in law शिवा की ओर से भी आपको ढेर सारा प्यार and best wishes दिए जा रहे हैं. Love and best wishes आपकी बेटी है संगीता, दामाद है विजय and grand children शामिल and Shail या शायला from LA USA, ये भी आपको ढेर सारा प्यार जो है ये भेज रहे हैं. तो लीला जी हमारी ओर से और हमारी पूरी हम टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू.
2: इनके साथ आज पिंकी आज भी अपनी सालगिरह मना रही हैं. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. खुशी के इस मौके पर शर्मिला कुमार हैं, प्रतीक हैं, सलेशनी हैं और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
3: मॉर्निंग मैडनेस
0: ब्रॉट टू यू बाय मेगा फाइनेंस होम लोन्स मेड इजी विद 30 इयर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपीरियंस. कॉल 0800-634-234.
22: मुझे लगा था कि आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म है ये आसान होगा और बहुत से लोग शायद अपने अपने आंसर्स हमारे पास सेंड करेंगे और गलत जवाब तो कोई देगा भी नहीं. लेकिन बावजूद ऐसा फील होने की हमारे पास गलत जवाब तो आए हैं. किसी ने पंकज त्रिपाठी कहा है 3300 इनके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स हैं. गुंजन ने कहा है मोहम्मद जिशान. तो मोहम्मद जिशान तो बिल्कुल भी नहीं है, पंकज त्रिपाठी भी नहीं है. शेल्विन ने अपना जवाब दिया है, साथ में विधि है और चरण का भी मैसेज आया है अलोंग विद दिवनेश. थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. तो ऐसा करते हैं, पहले तो एक बार फिर से आपको आवाज़ सुना रहे हैं आज जिनकी आवाज़ हम लेकर आए हैं सेलिब्रिटी लाम में. दिस इज द वॉइस, पे अटेंशन टू दिस.
23: जिसमें काम में करता रहा लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा. सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है ये जरूर.
22: तो आपको बताना है कि ये आवाज़ किसकी है, मतलब जो आवाज़ अभी हमने आपको सुनाई. आई'ड लाइक टू हेल्प आउट एंड आई'ड लाइक टू गिव सम क्लूज. अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन है, कि इनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर दैट यू थिंक ही प्लेड, जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो कौन सा कैरेक्टर होगा?
2: सी इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. एक तो इनका जो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था वाज ऑफ अ जज.
22: अच्छा.
2: यू नो उन दो या तीन पार्ट्स में आई थी.
22: तीन पार्ट्स में.
2: हाँ, तो उसमें जज का किरदार इन्होंने प्ले किया था. और इन्होंने एक वेब सीरीज जो है इसमें काम किया था. आई कांट रिमेम्बर द नेम ऑफ द वेब सीरीज. और वो काफी पॉपुलर जो है. हाँ, नाम बता दू वेब सीरीज का?
22: बता दीजिए.
2: बिंदिया के बाहुबली.
22: ये तो मैंने पहली बार सुना है.
2: हाँ, ये जो है इसको आईएमडीबी पर 6.7 स्टार्स जो है ये मिले थे. और उसमें एक रूथलेस माफिया.
22: अच्छा, उसका रोल प्ले किया.
2: रोल इन्होंने प्ले किया था.
22: इंटरेस्टिंग.
2: और ऑब्वियसली देयर शुड बी देयर डिस्क्लेमर्स जो आप अच्छी तरह से देख लें. हाँ. इस वेब सीरीज को देखने से पहले बड़ा दावन
22: है?
2: बड़ा दावन का किरदार इन्होंने प्ले किया था.
22: अच्छा.
2: इस वेब सीरीज में बिंदिया के बाहुबली में.
22: ओके.
2: वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी.
22: इनका एक बहुत ही यू नो कमाल का अंदाज है जहाँ पर ये चाहे कोई विलन वाला किरदार प्ले करते हो, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो या कोई कॉमिक रोल प्ले कर रहे हो, ही प्लेज इट रियली वेल एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये शख्स जो है ऐसे है.
2: हाँ.
22: अभी ये दोनों कैरेक्टर्स जो आपने बताए हैं टोटल ऑपोजिट टू ईच अदर है और फिर भी दोनों को इन्होंने बखूबी निभाया है, लोग पसंद करते हैं. आई थिंक द क्लू दैट आईड लाइक टू गिव यू इज कि एक फिल्म आई थी सत्या और उसका एक गाना था जो इनके कैरेक्टर पर बेस था जो बहुत चला था. इफ यू रिमेंबर द सॉन्ग.
2: आई कांट रिमेंबर.
22: कोई कैरेक्टर, कोई गाना, कल्लू मामा याद है आपको?
2: यस.
22: तो दिस इज माई क्लू. आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है आपकी, बट इट्स ऑल टू मेक इट ईजियर फॉर यू. अभी क्या करना है, हम आपको दे रहे हैं 3 मिनट का टाइम, तब तक आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं. आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है, सेलिब्रिटी अलार्म, ये आपको बताना है. बी एफ लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर और नाम, और भेज देना है 5599 पर. नाउ थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आए खबर. न्यूजीलैंड सुपर मार्केट शेल्फ से एक प्रोडक्ट है जो एकदम गायब सा होता जा रहा है. क्यों? हाँ, शॉर्टेज उसका कहीं ना कहीं देखा गया है. क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये प्रोडक्ट गायब हो रहा है, क्यों ज्यादातर लोग अब इसकी तलाश कर रहे हैं, इससे जुड़े कुछ डिटेल्स थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे.
1: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: आपके लिए। अगले घंटे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं वैसे आज का हमारा ट्रेंड पेट्रोल, और उसी दौरान आपको बताएंगे क्या कारण है जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो शेल्फ से गायब हो रहा है, और न्यूजीलैंड में भी कहीं ना कहीं ये नोटिस किया जा रहा है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है, इट्स यू नो इसकी एक शॉर्टेज जो है ये देखी जा रही है। आई मीन आई हैव सीन इट बिकॉज़ आई डोंट लाइक ईटिंग दिस थिंग।
1: ओके,
0: तो क्या है ये अगले घंटे हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर फिलहाल के लिए क्या इज इट सेफ टू चार्ज योर फोन ओवरनाइट? आप अपना फोन ओवरनाइट चार्ज पर छोड़ते हैं? छोड़ते हैं
1: हाँ। अच्छा, नहीं करना चाहिए, बट क्या करूं?
0: आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए?
1: क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, कुछ भी हो सकता है।
0: अच्छा, बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं कि चार्जर जो है ये बर्स्ट हो जाता है और इसकी वजह से आग भी लग जाती है या एक्सप्लोड हो जाता है। दैट इज द करेक्ट वर्ड। सो बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप भी ऐसा करते हैं, इफ यू आर पुटिंग योर फोन ऑन चार्ज बिफोर बेड एंड लीव इट चार्जिंग ऑल नाइट, वेल यू माइट नॉट नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट एनी मोर, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि विद मॉडर्न स्मार्टफोन्स ओवरनाइट चार्जिंग इज जनरली फाइन, क्योंकि फोन्स हैव नाउ हैव बिल्ट इन सिस्टम्स जो चार्जिंग मैनेज करते हैं और आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। एप्पल, सैमसंग एंड गूगल फोन्स ये ऑटोमेटिकली स्लो कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं चार्जिंग ओवरनाइट, एंड सम अलाउ यू टू सेट अ चार्जिंग लिमिट आल्सो लाइक 80-90% टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म बैटरी वेयर जो है ये आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि अपने फोन को आप रखें इन बिटवीन 20-80% एंड कैन स्टिल हेल्प एक्सटेंड बैटरी लाइफ, बट इफ यू डोंट हैव टू ऑब्सेस ओवर अनप्लगिंग इट इन द मोमेंट ये 100% पहुंच जाता है तो। There is one thing you definitely should watch out for, which is heat. इसका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। डोंट चार्ज योर फोन अंडर योर पिलो, ब्लैंकेट्स जो है इसके ऊपर नहीं पड़े रहने चाहिए, कपड़े नहीं पड़े रहने चाहिए, कहीं ट्रैप नहीं होना चाहिए जो हीट है जो चार्जर से रिलीज होता है।
1: It should be kept clear of other things. That's one thing that I always make sure.
0: And you should avoid charging it in direct sunlight या फिर inside a hot car as well. So, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे थे, यू थॉट कि ये प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द फोन्स हैव इट, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आरएनजेड पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिस पर ये बात सामने आई है कि आजकल के फोन्स जो है से इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि वो खुद को पोज कर सकते हैं ओवरनाइट चार्जिंग से, और जनरली ये एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैटरीज जो है ये खुद के जो फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, ये चार्जिंग को स्लो कर सकते हैं या पोज कर सकते हैं। बट It doesn't mean ki all of us have that quality in our phones. Probably aapke phone mein nahi ho. So advisable ki aap tabhi phone charge par lagaye jab aap use monitor kar sakte hain toh.

0: Hollywood's biggest hits.
1: Project Gandhi.
0: Accurate traffic.
2: Shower dome, shower tops.
3: Lots of cloud in the forecast today. A few sunny patches. Got a high of 17 degrees. Into the city, our motorway network flying really well this morning. Northern just 18 minutes in from Constellation Drive, 30 Silverdale to the city. It's clear pretty much the whole way. Northwestern just a bit slow around Grey Lynn. 18 minutes Massey to the city is quick. And Southern a fast 24 in from Monaco. Little slow Ellerslie to Green Lane.
2: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
4: Spring आ गई है Mitre & Mega Henderson's Home and Garden Evening के साथ. Hands-on activities, delicious food, great deals और garden inspo. 4 to 7 p.m. Thursday, October 8th. सिर्फ Mitre & Mega Henderson में.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
7: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
9: At Woolworths, we're helping you get more value every day, like a massive half price off Tegel products. Stock up on Tegel takeouts, burgers, tenders, nuggets and more. TCs and exclusions apply.
10: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping.
11: Babe, wake up, look at this meme.
10: Ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
12: Happy-o.
13: Hum. Time check.
14: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
15: Good morning, it's 70 card baj rahe hain.
13: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Morning, I'm Grace Cocker with the latest today. A doctors' union is alarmed that physician associates will be regulated by the Medical Council. It estimates there's about 50 in New Zealand. Dr. Deborah Powell says it's unnecessary.
17: We have workforces here in New Zealand, trained here in New Zealand, who do everything a PA can do, from nurses to doctors to pharmacists to paramedics.
16: Police are yet to release details about what they describe as a serious incident in South Auckland overnight. They say it happened on Cambridge Terrace in Papatoetoe just before 7. Cordons are in place. A century-old call is going out to a family of a World War I soldier whose medals were found during a search warrant in Christchurch. Police began a quest for details of Private Victor Powell, who was born in the far north and killed in action at age 25. If his medals can't be reunited, they'll go to the National Army Museum in Waiuru. Questions are swirling about the botched execution of convicted murderer Krista Pike in Tennessee. She's been taken to hospital after 2 lethal injections failed. A review has been ordered. Executions in the state have been halted as well for the rest of the year. In sport, Counties Monaco are determined to keep the Ranfurly Shield for the summer. Captain Jimmy Tupou wants a big crowd to turn up for tomorrow's defence against Hawke's Bay in Pukekohe.
18: Pukekohe's a pretty tough place to beat on an afternoon game, and especially with the Shield Challenge.
16: Otago kicked off the final round with a 45-42 win over Auckland in Dunedin last night to move to the top of the table. That's rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Rugby World Cup packages selling now.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best. Hamari good brands nahi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम मोस्टली क्लाउडी रहेगा और शाम के समय थोड़ी बहुत धूप जो है ये जरूर नजर आएगी. सनसेट तो 7:27 पीएम पर होगा आज. टेम्परेचर इज गोन अप टू 13 डिग्रीज और ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज रहेगा. हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे.
13: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन Living Monaco.
13: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
15: Good morning. Welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. ये है The Breakfast Show with Vijay and Pooja. और Breakfast Show पर अब बारी है आपके लिए. हम लेकर आए आज का हमारा Rush Hour का सफर starting off with Trend Patrol. तो मैंने कहा था ना कि Trend Patrol में आपको बताएंगे क्या गायब हो रहा है न्यूजीलैंड शेल्फ से. एंड इट्स नॉट जस्ट न्यूजीलैंड बाय द वे, दुनिया भर में ये ट्रेंड देखा जा रहा है. दिस पर्टिकुलर ट्रेंड की वजह से कहा गया है सार्डिन क्रेज जो है ये शुरू हुआ है. एंड पार्शली वी कैन से सोशल मीडिया इज द रीज़न जिसकी वजह से सार्डिन जो है ये सुपर मार्केट शेल्फ से अब कम से कम जो है ये दिख रहे हैं. इसे कहा जाता है द ट्रेंड इज नोन एज सार्डिन मैक्सिंग. आपको याद है हमने मैक्सिंग शब्द के बारे में बातें की थी. राइट, तो सार्डिन मैक्सिंग कहा जाता है इस ट्रेंड को. और इसके चलते लोगों को ज्यादातर इनकरेज किया जाता है टू ईट मोर ऑफ द ऑयली फिश, विद सम कंटेंट क्रिएटर्स कॉलिंग इट ईटिंग बोटॉक्स. यहाँ तक कि कुछ का ये कहना है कि इट्स यू ईटिंग योर स्किन केयर. बट बिफोर आप सार्डिन स्टॉकअप करना शुरू कर दें, एक डर्मेटोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा है कि देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड द हाइप, लेकिन आप मिरेकल्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इससे. सार्डिन जो है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में, विच कैन सपोर्ट स्किन हेल्थ और इट ऑल्सो हेल्प्स बाय मेंटेनिंग द स्किन बैरियर एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन.
20: ओके,
15: देयर इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट कैन बेनिफिट योर हार्ट एंड हेल्थ, बोन हेल्थ एज वेल. लेकिन ईटिंग अ टिन ऑफ सार्डिन इज इन गोइंग टू मैजिकली इरेज योर रिंकल्स या फिर आपका जो स्किन केयर रूटीन है ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देयर इज अनदर रीजन शेल्व्स आर लुकिंग अ लिटिल बेयर व्हेन इट कम्स टू सार्डिन्स. और कंज्यूमर न्यूजीलैंड का कहना है कि वुलवर्थ्स हैज सीन सार्डिन सेल्स जंप बाय 53% ओवर द पास्ट ईयर. जबकि फूडस्टफ का कहना है कि देयर आर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स राइट नाउ. वार्मिंग ओशंस जो है मे ऑल्सो बी अफेक्टिंग सार्डिन का जो सप्लाई, बिकॉज उसको भी पकड़ने में फिशरमैन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ओशन का जो पानी है ये गर्म हो रहा है ना. और कम से कम सार्डिन जो है ये भी मिल रहे हैं. एंड इसके चलते इट इज अनदर फैक्टर जिसकी वजह से सार्डिन सप्लाई जो है ये कम है. द गुड न्यूज, मैक्रल एंड एंचोवीज जो है ये इसमें सिमिलर ओमेगा 3 बेनिफिट्स जो है ये पाए जाते हैं. So अगर सार्डिन नहीं मिल रहा है, इफ यू वांट टू कीप ऑन ईटिंग दिस टू ट्राई द ट्रेंड एंड टू कीप योर बोन हेल्थ एंड योर स्किन हेल्थ अच्छा, तो आप मैक्रेल एंड एंचोवीज जो है ये भी ट्राई कर सकते हैं.
20: ओके, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं फ्रॉम वेरेवर दे आर अवेलेबल. रश आवर में आज और भी चीजों के बारे में बातें होंगी. आज व्हाट्स योर टेक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप चाहें तो मैं अभी ही बता देता हूँ ताकि सोचने का वक्त, क्योंकि आज सोचने की जरूरत पड़ेगी.
15: अच्छा, तो ऐसा करते हैं थोड़ी देर बाद आपको हम टॉपिक बताएंगे, देन वी विल गो इनटू अ ब्रेक एंड देन वी विल इनवाइट कॉल्स.
21: तेरे किट धूम, तेरे किट धूम, तेरे किट.

0: रहे थे ये बड़ा ही कमाल का गाना जिसे काफी ट्रोल भी किया गया था वंस इट रिलीज्ड, व्हिच वाज शिल्पा राव एंड साची टंडन की आवाजों में विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो उस फिल्म का ट्रैक रहा और तृप्ति डिमरी पर ये गाना पिक्चराइज किया गया था एंड फॉर हर डांस इनको काफी ट्रोल किया गया था जो भी कोरियोग्राफी की गई थी ना इस गाने की. आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर इट और नॉट, बट फिलहाल 14 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर और आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक.
1: ये जो चीज है आई डोंट नो क्यों और कैसे मेरे मन में आई ये ख्याल जो है, तो मैंने सोचा एंड उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत रिसर्च किया और सोचा कि ये आज आपसे पूछते हैं
0: जी.
1: इट्स अबाउट द एल्डरली इन आवर कम्युनिटी, इन आवर सोसाइटी, इन आवर होम्स. कोई छोटा नहीं हो रहा, सभी धीरे धीरे उस एज की तरफ बढ़ रहे हैं. तो मैंने सोचा आज आपसे पूछेंगे कि हमारे लोग क्या वो डू दे गेट रिटायर्ड और रिटायर्ड.
0: व्हाट डू यू मीन बाय रिटायर्ड? आई मीन आई अंडरस्टूड रिटायर्ड,
1: रिटायर्ड,
0: लेकिन रिटायर्ड क्या है?
1: रिटायर्ड जो है, रिटायर्ड अगर आप देखें तो एक वर्ड है ना.
0: हाँ,
1: एक वर्ड
0: एग्जैक्टली.
1: और री और टाइट के बीच में अगर आप वो लगा दें, क्या बोलते हैं उसको,
0: डैश.
1: हाँ,
0: चेंजेस द मीनिंग.
1: या
0: क्या होता है इसका मीनिंग?
1: अगर आप थक जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं?
0: टायर्ड.
1: और अगर कोई काम आप फिर से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
0: दोबारा से करना.
1: इंग्लिश में
0: कोई काम आप फिर से करते
1: हैं, एक टेक लेते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, दूसरा टेक अगर लेने जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको?
0: रीटेक.
1: यू डूइंग इट अगेन. सो टायर्ड इज अ वर्ड.
0: तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में रिटायर्ड हो रहे हो, एज इन यू कमिंग टू अ सर्टेन एज जहाँ पर ओके अब काम नहीं करना, अब रिलैक्स करना है, लाइफ एंजॉय करना है. एंजॉय इन अ सेंस कि यू डोंट हैव टू गो टू वर्क, यू डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वो सारी चीज़ें जो है प्रोफेशनल करियर एंड दिस एंड दैट, यू डन विद इट. रिटायर्ड वुड बी बेसिकली डूइंग ऑल ऑफ इट अगेन.
1: रिटायर्ड इज बेसिकली
0: प्रोफेशनली शायद ना ही काम करना.
1: उम्र आपकी हो गई अवकाश लेने की
0: पर आप नहीं ले पाए,
1: लेकिन हो नहीं रहा है.
0: हाँ, okay, interesting.
1: You were tired and now
0: you're retired.
1: You are getting retired.
0: Okay, interesting यार, but
1: I don't know कहाँ से क्यों मैं क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था.
0: अपना तो रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं.
1: नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बट दिस थिंग केम इन टू माई माइंड.
0: अच्छा,
1: कि हमारे लोग जो है आर वी गेटिंग रिटायर्ड और रिटायर्ड. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है ये मैंने पढ़ी है कि सर्वेज ये दिखाते हैं न्यूजीलैंड में 70% ऑफ सीनियर्स आर स्ट्रेस्ड अबाउट कॉस्ट. क्या आपके पेरेंट्स एक्चुअली रिलैक्स कर रहे हैं? ओ दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड एंड कीपिंग बिजी.
0: ओके,
1: सर्वे में ये दिखाया गया है कि 80% ऑफ इंडियन केयर गिवर्स, जो बच्चे होते हैं ना, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखरेख कर सकते हैं या बच्चों की देखरेख करते हैं, 80% ऑफ इंडियन केयर गिवर्स आर कंप्लीटली बर्नट आउट ट्राइंग टू मैनेज पेरेंट्स, किड्स एंड जॉब्स.
0: ओके,
1: सो वही मैंने सोचा आज आपसे पूछते हैं. मैं अकेला क्यों लड़ू इस सवाल से?
0: आप भी लड़ो.
1: हाँ, क्यों मेरे मन में ये ख्याल आया ये पता नहीं.
0: ठीक है,
1: क्यों मैं अकेला जूझूं?
0: आई वुड से कि इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, बट इसे कितना नाइस आप सब बनाते हैं वो डिपेंड करता है. टॉपिक हमने आपको बता दिया है, अब बता दें नंबर 0800-004-866 हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आराम से बातें कर सकते हैं हमसे. एंड 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है जिस पर आप टेक्स्ट करते हुए भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं. इफ़ यू कांट गिव अस अ कॉल, इफ़ यू डोंट विश टू कॉल एंड टॉक. तो ये थोड़ी देर बाद लाइंस भी ओपन करेंगे जहां पर आ जाकर हमारे टॉपिक के बारे में आप अपना टेक शेयर कर सकते हैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Spring आ गई है Mitre 10 Mega Henderson's Home and Garden Evening के साथ. Hands-on activities, delicious food, great deals और garden inspo. 4 to 7 p.m. Thursday, October 8th. Sirf Mitre 10 Mega Henderson में.
2: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
3: Okay, we've got a handful of coffee beans, hot water, full fat milk, 3 packets of sugar, oh, and a nice little chalky fish on top. That sound like you?
4: That does sound like me. But wait, how much is that? You know what? I'm actually good. I'm just going to make my own fancy flat white with stuff from Pack and Save.
3: Oh, well, that's sick, man.
4: Close. It's Stick Man. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
3: Assembly? Oh, we used to have that at school.
5: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
6: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
7: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
8: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: तो आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इज समथिंग रियली वर्थ टॉकिंग अबाउट, वर्थ डिस्कसिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब शायद अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में हैं या फिर यू नो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं एंड वी हैव अ एक्सपीरियंस टू टॉक अबाउट दिस और वी हैव ऑब्जर्व्ड एटलीस्ट अपने आसपास ऐसा कुछ जिसके बारे में हम बातें कर सकते हैं.
14: तो आज का टॉपिक है रिटायर्ड रिटायर्ड. जैसे हमने आपको बताया कि अवकाश लेने की उम्र में क्या हम जाकर और ज़्यादा थकावट जिंदगी की महसूस करने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम रिटायर नहीं होते हैं, वी कंटिन्यू एंड अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जीना, क्योंकि देर आर सो मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी हैव टू फुलफिल. एंड अभी आप देखो, मैं किसी एक नॉर्म को किसी एक ट्रेडिशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये हम सभी ये कर रहे हैं और हमारे माता पिताओं ने ये किया, हम ये कर रहे हैं एंड मे बी शायद हमारे बाद बाकी के जनरेशन के लोग करें या ना करें, वो तो वक्त बताएगा कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल जो है ये हमेशा से करते आए हैं. ये भी बात कि और उसकी वजह से शायद ज़िंदगी में वो आराम लोगों को नहीं मिल पा रहा है. हमारी इंडियन कम्युनिटी में आप देखें कि अभी हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अवकाश नहीं ले पा रहे हैं, नॉट इन प्रॉपर मीन्स. शायद दे आर पीपल हु डू एक्चुअली रिटायर, बट दे आर सम हु डोंट एक्चुअली रिटायर. रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम करते रहना पड़ता है बिकॉज दे हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल. सिमिलर सिचुएशन में हमने जो कहा था कि 71% जो लोग हैं, 7 in 10 ओल्डर पीपल जो हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, ये फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर कंसर्न होते हैं और इसके अलावा दे पीपल इन आवर कम्युनिटी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों की देखरेख, अपनी नौकरियां और अपने बच्चों की देखरेख, इन सभी चीज़ों को लेकर. तो व्हेन इट कम्स टू द रिटायरमेंट एज, डू वी एक्चुअली रिटायर, ओ हम रिटायर्ड हो जाते हैं. ये आज का हमारा टॉपिक है.
13: Okay.
14: हम थक जाते हैं और वापस से फिर से थकते हैं. एक तो थके होते हैं लेकिन वापस से फिर से थक जाते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक है.
13: ओके, अगर आसानी हुई है आपको समझने में एंड यू गॉट एनी थॉट्स टू शेयर अबाउट दिस टॉपिक टुडे तो वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और इधर आपको हम याद दिला दें कि 0800 004866 हमारा टेलीफोन नंबर है. आप इस पर कॉल करते हुए अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. डू यू अग्री विद दिस, इज़ इट ट्रू, हैव यू सीन इट, हैव यू एक्सपीरियंसड इट, या फिर आप अगर नहीं अग्री करते हैं, जैसे कि आपने भी बोला कि ऐसा नहीं कि हर कोई ये सिचुएशन से जूझ रहा है. इक्का दुक्का होगा जो शायद नहीं, उनको रिटायर हो चुके हैं, दे एंजॉयिंग अ रिटायरमेंट लाइफ, दे एंजॉयिंग अ गुड लाइफ, बट आप जो भी फील करते हैं, वेदर यू फील इट्स ट्रू, वेदर यू फील इट्स नॉट ट्रू, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें.
14: सी, ग्लोबल साउथ एशियन डायस्पोरा कम्युनिटीज पर जो सर्वे किया गया है, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड द यूके, इसमें ये दिखाया गया है कि इंडियन फैमिलीज एक्सपीरियंस यूनिक इंटरजेनरेशनल ऑब्लिगेशंस जो कि वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं मिलता है, जहां पर सीनियर लिविंग या इंडिपेंडेंट लिविंग केयर इज कॉमन. लेकिन हमारी इंडियन कम्युनिटी में ओवर 85% ऑफ इंडियन फैमिलीज ग्लोबली बिलीव एल्डर केयर मस्ट स्ट्रिक्टली बी हैंडल्ड एट होम बाय द फैमिली.
13: Okay,
14: you know, ये मानते हैं. रिजल्ट क्या होता है, द यंगर अडल्ट चिल्ड्रन एंड अप एग्जॉस्टेड ट्राइंग टू बैलेंस कॉर्पोरेट जॉब्स और ट्रेडिशनल केयर टेकिंग ड्यूटीज. 70-78% फैमिली केयर गिवर्स जो है ये रिपोर्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड और ऑन द वेज ऑफ टोटल बर्नआउट. गिल्ट और स्टिग्मा भी पार्ट होता है. 72% ऑफ यंगर फैमिली मेंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किया है इंटेंस गिल्ट अगर वो टाइम ऑफ लेते हैं या कंसीडर करते हैं आउटसाइड हेल्प, क्योंकि वो कल्चरली ऑब्लिगेटेड फील करते हैं टू हैंडल एवरीथिंग देमसेल्व्स, कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर हम आउटसाइड हेल्प लेते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए. तो ये आज का हमारा टॉपिक है. आई एम नॉट रियली श्योर कितने लोगों को ये इंटरेस्ट करेगा एंड कितने लोगों को इंटरेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अबाउट सीनियर सिटीजंस. उतना फन नहीं है आज का टॉपिक.
13: नहीं, इट्स नॉट फन, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग व्हिच इज जरूरी, इंपॉर्टेंट आई वुड से.
14: सी, असर दोनों को करता है.
13: yeah.
14: हमारे बुजुर्गों को भी करता है,
13: हमको भी करता है. लाइक द एज दैट इज एक्चुअली यू नो टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स एंड हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर द हेड, कि अपने माता पिता को आपको आराम देना भी चाहते हैं पर शायद अब मजबूर भी है इन सिचुएशन लाइक दिस ना. एंड जैसे कि हमने कहा, इफ़ यू फील लाइक यू कांट टॉक अबाउट दिस, यू कैन टेक्स्ट अस, यू डोंट हैव टू कॉल अस.
14: वहीं पर ये भी कहा जाता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इस तरह से, या फिर हम लोग इस तरह से काम करते करते करते करते आ जाते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पर हमें डर लगने लगता है, यू नो एंग्जाइटी होने लगती है कि भाई अब मैं क्या करूंगा.
13: हाँ,
14: और उस डर से भी हम रिटायर नहीं होते हैं.
13: हाँ,
14: उस डर की वजह से हम अवकाश नहीं लेते हैं, वी कीप ऑन डूइंग समथिंग. हालांकि सम एस्पेक्ट्स में ये शायद सही भी हो, दैट यू आर फिजिकली एंड मेंटली वेल, यू नो वो सारी चीजें जो है. कुछ लोग हैं बाय चॉइस बाय हैबिट जो है ये ऐसा करते हैं. सो व्हाट्स योर टेक, 0800 004866 हमारा नंबर है. गुड मॉर्निंग, हेलो.
12: गुड मॉर्निंग, हाय.
14: हाय, गुड
12: मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड एंड पूजा.
13: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
12: आई एम गुड, थैंक यू. आई एम गुड, इट्स अ फ्राइडे, आई कांट कंप्लेन. सो ऑन योर टॉपिक, आई थिंक सम पीपल डू इट आउट ऑफ हैबिट और having, you know, the concern that they don't want to be sitting idle. So I've got my dad who's still working, so he's retired and then he's still taking up like contracts or consultancy. And that's because he doesn't actually really want to stay at home, be idle, or, you know, he prefers working.
14: Yeah.
12: But I think taking care of the old is yes, that is, I mean, it's just sort of inbuilt in us right from childhood that, you know, we've got a responsibility towards our and, you know, at some point we've got to take care. But I think that is sort of shifting now. There's a lot of retirement villages. There's a lot of, you know, elderly living places that are actually coming up, and which, from what I've heard, is you know, there's a lot of people who are actually opting for it.
14: Okay.
12: Especially in this generation, because there's a lot of people, you know, kids working outside of India, and they're not able to come and stay as long as the parents would like. I think there is a shift in that thought process. But also for people who actually live there, but that's probably a smaller majority, but there is still that big majority of, you know, the middle class mentality where people still believe that, you know, the kids have to take care of the parents. And the funny part is, it's sometimes the parents who actually, you know, feel that way, that my kids should be taking care of me. And they get stuck in that web.
13: Interesting. Okay, G.
14: Thank you so much.
12: I think it's just personal preferences for some people, but for some people it is out of, you know, they have to do it, necessity. There's no other way, but, you know, even after you retire, you still have to continue working to keep that family going.
14: All right. Thank you, ma'am. Apni raaye jo hai ye hamare saath share karne ke liye.
13: Bahut bahut shukriya ji. Thank you so much to start of the conversation. Aur ab aisa karte hain ki we actually move on and give people time ki wo text kare hamare paas.
14: Okay.
13: I think it would be better because we are waiting on calls, but there might be a bit of hesitation around the topic. To hum calls ke bajaye chalo messages aapko invite kar rahe hain aapke, aap wo hame bhej sakte hain, and we'd love to hear from you if you can't give us a call, and then we'll see aapka aaj ke topic ke bare mein kya kehna hai.
11: Bollywood's most wanted,
15: gundi ghad dao ya seedha andar aao
16: main lau apna A game.
11: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoy and Hamilton.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं रश आवर 20 मिनट बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में वैसे 9 बजने में ठीक 9 पर तो आपके लिए न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये रहेगा जिसके बाद व्हाट्स गोइंग ऑन की शुरुआत हम करेंगे एक मैसेज आया है इन्होंने कहा जैसे आराम ब्यूटीफुल टॉपिक टू शेयर योर थॉट्स ऑन डू वी थिंक फ्रॉम माइंड और हार्ट 80% बर्न आउट माइट बी वेरी ट्रू एंड रियल ये इन्होंने कहा है
4: जिस सवे की बात हम कर रहे थे कहीं ना कहीं फील है फील है हम सभी को कि ये सही है कि
3: ऐसा होता है
4: फिर हाँ अब फिर द थिंग इज ना कि हम सोचते हैं कि हम क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी जो है अपनी फैमिली को दे देते हैं जब से हम शादी होती है बच्चे होते हैं तो एक और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में सबसे सक्सेसफुल हों देयर इज नो उसमें कुछ गलत नहीं है उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है ये हम लगा देते हैं उनके लिए कि लोग हम ये सोचते हैं कि हमारे बाद कम से कम हमारे बच्चों के सिर पर एक छत हो
3: या कि उनकी लाइफ सॉर्टेड हो उनको उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी हमने की है यू नो दोस आर द थॉट्स वी गो थ्रू
4: वो सारी चीजें जो है ये हम सोचते हैं तो अब जब किसी बाहरी कंट्री में हम आते हैं या अपने होम कंट्रीज को भी ले लो घर खरीद लिया आपने घर खरीदा अगर मान लो आपने 30 साल की उम्र में 30 के एज पर घर जो है ये खरीदा तो कम से कम 25-30 साल आपको लगेंगे मॉर्गेज जो है ये रिपेमेंट करने में
3: right.
4: परिवार का पेट पालना बाकी ये जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी उसी में पूरी उम्र आपकी निकल जाती है और आप कुछ बचा नहीं पाते पैसे आपके बचते नहीं हैं और जब अवकाश लेने की उम्र आपकी आती है तो उस कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक्सपेक्टेशन होती है एज पेरेंट्स कि हमारे बच्चे जो हैं उस समय पर अभी तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ उस समय पर ये
3: हमारे लिए हमारा ख्याल रखेंगे
4: हमारा ख्याल
3: हमारे साथ रहेंगे समथिंग लाइक दैट यू नो हाँ
4: तो ये चीजें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं ऐसा कुछ नया नहीं है एंड उसकी वजह से अब अभी मॉडर्न डे में अगर देखें तो इतने सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि पीपल आर एक्चुअली बर्नट आउट यू नो वो हैंडल नहीं कर पा रहे अभी जिंदगी जीने का तरीका बदल चुका है कॉस्ट बदल चुका है सब चीजें बदल चुकी हैं इसकी वजह से लोग प्रॉब्लम्स का सामना जो है ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फील कर रहे हैं लेकिन शायद बोल बहुत कम लोग रहे हैं इसके बारे में आई डोंट नो इसीलिए मैंने कहा शुरू में कहा था कि मुझे नहीं मालूम मेरे मन में ये ख्याल क्यों कब और कैसे आया और तब मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा और पता लगाते हैं एंड देन आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च जो कुछ पता लगा तो लग सका तो उसी वजह से जब एक इंसान अवकाश लेने की उम्र पर आता है हाथ में पैसे होते नहीं हैं काम करते रहना पड़ता है या फिर जिनके पास होते ही हैं कुछ बचत तो वो सोचते हैं कि भाई अभी के टाइम पर इतने पैसे रिटायरमेंट पूरा करने के लिए इनफ नहीं है फिर भी उनको करते रहना पड़ता है कुछ लोग बाय चॉइस कि मुझे मेंटली फिजिकली अच्छा फील करना है दूसरी तरफ जो उनके बाद वाला जनरेशन है जिनको उन्होंने पाल पोस कर उस मुकाम तक पहुंचाया उनकी फैमिली आ गई
3: right.
4: वो अपने बच्चे को देख रहे हैं इधर अपने माता पिता को देख रहे हैं उसी में जूझते जूझते उनके पास भी रिटायरमेंट के टाइम पर पैसे नहीं,
3: नहीं होते
4: सो ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा है
3: ये चलता रहता
4: है ये साइकिल जो है ये घूम फिर कर हर इंसान उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उनके प्रीवियस पीढ़ी वाले तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछते हैं कि आर वी एक्चुअली रिटायरिंग वी गेट रिटायर्ड और रिटायर्ड
3: यप इंटरेस्टिंग है बट अभी हमारे पास टाइम तो नहीं है टू इनवाइट कॉल्स और एनीथिंग बट इफ यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट टुडे तो आप 5599 पर अभी भी मैसेजेस हमें जरूर सेंड कर सकते हैं
0: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
5: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: वैसे जितने भी उबर ड्राइवर्स हैं, आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक अपना क्लेम जो है ये नहीं फाइल किया है विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, इट्स मूविंग फॉरवर्ड नाउ. एक क्लेम्स मैनेजर है जो है इस मामले में आपसे बातें जरूर करेंगे बहुत ही जल्द. इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक फॉर्म खुल चुका है एंड प्लीज नोट, नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज का जो फोन लाइन है ये करंटली एट कैपेसिटी है. इसका मतलब कॉल करने पर भी शायद आपको ना रिस्पॉन्ड किया जाए. इसी वजह से वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर यू टू नॉट कॉल बट अप्लाई ऑनलाइन इंस्टेड. nyfservices.com, nyfservices.com विजिट करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: की तलाश नहीं कर रही है और लोगों को भी कोई खतरा नहीं है और इस मामले की अच्छी तरह से तहकीकात की जाएगी, छानबीन की जाएगी कि किन सर्कमस्टांसेस में इन लोगों की मौत जो है ये की जाएगी या हुई है, और उनके परिवार वालों को और आसपास रहने वाले लोगों को सपोर्ट जो है ये फिलहाल प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कुछ और डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे।
1: दूसरी ओर एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा मॉर्निंग विजय एंड पूजा, होप यू गाइस हैव एन ऑसम फ्राइडे या अमेजिंग फ्राइडे मॉर्निंग, कैन यू प्लीज प्ले लाइफ इज क्रेजी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वेक अप सिड। थैंक यू, आपने लिखा है, आपका नाम तो नहीं है पर शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। वेक अप सिड का जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया अभी तो हमारे पास नहीं है, वो विल ट्राई एंड लुक फॉर इट एंड देन प्ले इट फॉर यू। फिलहाल चलिए ये गाना आपके नाम जरूर हम कर रहे हैं, सलाम नमस्ते, फिल्म आई थी 2005 में, बहुत पसंद किया गया था इस फिल्म के, इस गाने को भी पॉपुलर भी हुआ था कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाज़ों में।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: ऑलमोस्ट 14 डिग्रीज टेम्परेचर ऑकलैंड में भी आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 12 डिग्रीज रहेगा. मोस्टली क्लाउडी शाम के समय कुछ साफ मौसम जो है ये रहेगा और वेस्ट में कुछ हल्की बारिश हो सकती है. सनसेट आज का 7:27 पीएम पर होगा.
2: व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो,
3: अरे कहना क्या चाहते हो.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं Only on Hum playing Bollywood's biggest hits. और इधर आपके लिए इस दौरान हम लेकर आते हैं क्या बकते हो, as in ऐसी कोई चीज जो आपको ये कहने पर मजबूर कर दे कि is it for real, सच में ऐसा हो रहा है. और ऐसी ही एक चीज जो है ये इनफेक्ट हुई है जहां पर आई थिंक इट हैपन इन शेंजेन चाइना में अप्रैल महीने में 2023 में. और इसके बारे में काफी बातें जो है ये हुई थी बैक देन. और रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट दिस ऐसे स्क्रॉल करते करते कि ऐसा कुछ हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बात करते हैं इसके बारे में, आपको बताते हैं. तो अपेरेंटली एक एनुअल कंपनी डिनर जो है ये होस्ट किया गया था चाइना में, जहाँ पर जो कर्मचारी हैं ये गए और उन्होंने इस डिनर में हिस्सा लिया जो एम्प्लॉयज़ थे. और दे हैड अ गुड नाइट, पर उनके लिए एक सरप्राइज़ भी था क्योंकि उनके जो कंपनी वाले हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक सरप्राइज़ ड्रॉ जो है ये इनके लिए किया था. तो उस ड्रॉ में सभी एम्प्लॉयज़ ने हिस्सा लिया और जो ग्रैंड प्राइज़ है ये एंड में जाकर रिवील किया गया. एक्चुअली दिस हैपेंड एंड कंपनी ने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके साथ थे उनको अपॉर्चुनिटी दी इसमें पार्ट लेने की. और ग्रैंड ड्रॉ में जो प्राइज है ये आफ्टर समवन वॉन रिवील किया. तो जो शख्स जीते थे उनका नाम बहुत हार्ड है, आई वोंट बी एबल टू से इट. और 14 इयर्स से वो इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे. द बेस्ट पार्ट वाज कि कंपनी ने उनको इस ग्रैंड ड्रॉ में 365 डेज ऑफ पेड लीव जो है एज अ प्राइज ये दिया.
1: बस 365 डेज?
4: हाँ, बस 365 डेज का पेड लीव.
1: 366 कर देते.
4: हाँ, अच्छा वो लीपिया नहीं था ना, इसी वजह से. सो पेड लीव दिया. और उससे बढ़िया बात ये कि इनको ये बताया आप अगर चाहो तो पूरा साल आप छुट्टी ले सकते हैं, या अगर छुट्टी पूरे साल की नहीं लेनी है तो आप अपने इन लीव्स को कैश इन कर सकते हैं. हो बोलो बोलो बोलो आपका तो मुंह खुला का खुला रह गया.
1: बहुत पैसे होंगे इस कंपनी के पास ना,
4: अच्छे प्रॉफिट बनाई होगी तभी तो दिया ना. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली केम इन इन नोटिस. एंड व्हेन जब ये कर्मचारी को पता चला कि इसने लॉटरी में जीता क्या है, तो जितना बड़ा आपका मुंह खुला था ना उससे ज्यादा बड़ा इनका मुंह खुला था. वो शॉक में चले गए कि उनके साथ क्या हुआ, आई मीन इन अ गुड वे. और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूछना मत कि कैश इन किया कि क्या.
1: अरे
4: किया,
1: कुछ भी किया हो.
4: हाँ, पर जीता.
1: आप होती तो क्या करती?
4: मैं हाँ. मैं छुट्टी ले लेती यार, पूरे साल पेड लीव था ना. हाँ, हाँ. इनकम आते रहता, आई वुड हैव एंजॉयड इट. पेड लीव था तो आई वुड हैव टेकन अ छुट्टी. हाँ. क्योंकि फिर एक साल बाद जाती तो थोड़ा रिफ्रेश माइंड के साथ जाती.
1: थोड़ा रिफ्रेश्ड
4: फुली रिफ्रेश मतलब चेंज पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बदल जाता मेरा ना एक साल अगर नहीं जाते.
1: एक साल बाद अगर आप काम पर जाएंगे कितना कुछ बदल जाएगा.
4: मैं 5 महीने जब मैटरनिटी लीव पे थी, आई वेंट आफ्टर 5 मंथ्स, बहुत कुछ बदला था. और मुझे ऐसा लगता था कि आई फॉरगॉट द फंक्शंस कि कैसे चीजों को चलाते हैं. माइक ऑन करना एक टाइम पे, पीछे जो ये अभी म्यूजिक आप सुन रहे हैं कैसे अप्लाई करते हैं, आई फॉरगॉट अबाउट ऑल दोस थिंग्स. मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं आता. इट टुक मी अ वीक टू गेट बैक टू इट. आई थिंक वो मम्मी ब्रेन जैसा भी कोई एक चीज शायद उसे भी आप ब्लेम कर सकते हैं. पर 5 मंथ्स जो है उस टाइम पे मेरे को बहुत कम लगे थे. अगर उस टाइम पे मिल जाते ना तो मैं तो खुशी खुशी एक साल घर पे रह लेती. बट हाँ, ऐसा होता है लाइक इफ यू गो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक तो थोड़े चेंजेस आप नोटिस करते हैं खुद में.
1: नहीं, आप भी हमें बताओ अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई लॉटरी हो और आप उसके विनर हो, जहाँ पर कंपनी आपको बताए यू कैन टेक 1 ईयर पेड ऑफ, यू नो आपको वेतन नॉर्मली वैसे मिलता रहेगा.
4: हाँ.
1: शायद इंक्रीमेंट भी मिल जाए परफॉर्मेंस रिव्यू जब हो, और या फिर यू कैन कैश. हाँ, आप अपने एक साल की छुट्टी को एनकैश कर सकते हैं. आप क्या करते उस टाइम पर?
4: तो आप हमें बता सकते हैं आपकी चॉइस
1: की. अच्छा, मैं 6 महीने की छुट्टी ले लूंगा और 6 महीने
4: उतना मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लेट्स कीप इट दिस वे कि पूरा अगर करना हो,
1: हाँ,
4: पूरे साल की छुट्टी या पूरा साल कैशिन.
1: ओके,
4: उस हिसाब से
1: अगर आपको ये ऑप्शन मिले तो आप क्या चूज करेंगे? बताइए हमें. मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ भाई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिव उस शख्स की जिंदगी,
4: दैट मोमेंट, नॉट जिंदगी, दैट मोमेंट जब उसको पता चला उसने क्या जीता है. तो आप भी अपनी चॉइसेस हमें बता सकते हैं. आई मीन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है, पर अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? 5599 पर लिखकर अपना जवाब भेजिए, BF सबसे पहले और अपने नाम के साथ. देखते हैं आप क्या चॉइसेस बनाते.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो सबसे पहले याद दिला दे, आज फ्राइडे है और फिर कल यानी कि 2nd of October को, या माफ कीजिएगा 3rd of October को होने जा रहा है ऑकलैंड का बिग दिवाली सेलिब्रेशन, महिंद्रा एंजर दिवाली मैनिकाओ वेल्डरोम पार्क में, जहां आप पहुंच सकते हैं दिन में 1 से लेकर रात 9 बजे के बीच और सेलिब्रेट कर सकते हैं दिवाली. मोहम्मद सादिक और उनकी टीम आ रही है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से टू परफॉर्म लाइव अलॉन्ग विद डीजे लकी, जो आपके लिए यहाँ पर नॉन स्टॉप अमेजिंग परफॉर्मेंस लेकर आने वाले हैं. इनको भी आप एंजॉय कर सकते हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर लंच और डिनर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस फूड स्टॉल्स भी रहेंगे जो आप चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ से आप खाने का बंदोबस्त भी कर सकते हैं. बच्चे अगर तो इनको भी जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि इनके लिए बहुत से फन राइड्स रहेंगे, दैट दे कैन एक्सपीरियंस. स्कूली छुट्टियाँ चल रही है तो कुछ यू नो सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, मस्ती भी हो जाएगी. स्कूली छुट्टियाँ जो है ये भी इंजॉय करेंगे अपना. बट डोंट फॉरगेट टू स्टे बैक एंड एंजॉय दी फिनाले, जो कि स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स के साथ होगा. All happening tomorrow 1 PM to 9 PM. Entry is absolutely free. Manukau Velodrome Park, Manukau. यहाँ पर पहुँचकर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं.
4: और वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापा टोयटोय में वेद प्रचार सप्ताह जारी है और ये रविवार तक जारी रहेगा. शाम 6:30 बजे से प्रचार आरंभ हो जाता है और ये 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है न्यूजीलैंड में आर्य समाज की स्थापना का. तो इस सेलिब्रेशन में भी आप ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं.
3: तो याद रहे, आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आप चाहते हैं अन्य लोगों तक पहुंचे इसकी जानकारी, तो आप हमारे पास ज़रूर अपने मैसेजेस जो है ये सेंड कर सकते हैं ऑन 5599 और या माफ़ कीजिएगा buzz@hamfm.com पर आप हमारे पास इसे सेंड कर सकते हैं और आपके लिए डिटेल्स जो है ये हम ज़रूर लेकर आएंगे. फिलहाल याद दिला दें आपको, कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज का हमारा डेली राउंड अप रहेगा.
2: Mornings made better.
5: Two frienda, 4 toast, butter, jam, and a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: Driving you home.
7: Drive show with Sandy and Rusby.
8: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
9: ये गलत बोल दिया यार.
8: और पहनता भी नहीं है उसको.
9: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
8: इंटरेस्ट
10: ब्रांड हो गया आप.
9: अभी ब्रांड हो गया ना.
8: रुस्बे के बाल लगे उस.
7: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
11: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
12: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
11: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
13: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI.
14: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
15: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
16: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
17: अब हमारा क्या होगा?
18: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
19: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800 722 462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
3: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
12: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping.
2: Babe, wake up. Look at this meme.
12: Ha ha, reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
11: Happy, happy, happy, oh.
0: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
19: What's going on?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंड व्हाट्स गोइंग ऑन जारी है, आपके नाम कर रहे हैं. और इधर चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद डेली राउंडअप के साथ साथ आज बातें करेंगे अबाउट बॉलीवुड में और क्या कुछ इंटरेस्टिंग जो है ये हो रहा है. और साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें, सनातन वर्ल्ड कप जो है ये जारी है, दिस वीकेंड तक ये चलता रहेगा. तो इफ़ यू गेट अ चांस टू गो एंड वॉच इट, विटनेस इट, सपोर्ट इट, मेक श्योर आप ये ज़रूर करें.
4: और अपडेट्स वगैरह जो है ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आते रहेंगे. ऑल यू गॉट टू डू इज सुनते रहे 104.2 FM या रोवर, और वहाँ पर तमाम जानकारियाँ. आज सुबह 10 बजे से मैचेस जो है ये शुरू हो जाएंगे.
20: Bollywood's most wanted.
21: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
22: मैं लाऊं अपना A game.
20: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 28 मिनट हो रहे हैं, 9:00 द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आपको याद होगा सुबह 6:30 के वक्त जब बॉलीवुड के बारे में हम बातें कर रहे थे, मैंने कहा था कि कई फिल्में इस महीने रिलीज होने जा रही हैं, इंक्लूडिंग तू है मेरी किरण।
1: हाँ जी,
0: ये जो फिल्म है इसमें रियल लाइफ कपल एक साथ दिखने वाले हैं।
1: आई थिंक आई नो हु दिस रियल लाइफ कपल इज।
0: ज़हीर इकबाल
1: एंड सोनाक्षी सिन्हा।
0: हाँ, और ये एक बहुत ही इंटेंस फिल्म है। इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है इसे कल लॉन्च किया गया और टैगलाइन जो है शी फाउंड अ कनेक्शन ही फाउंड एन ऑब्सेशन, ये इस फिल्म का टैगलाइन है। और सोर्सेस ने रिवील किया है कि आज बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ा दिन होने जा रहा है क्योंकि फिल्में जो हैं ये रिलीज होने जा रही हैं। कई दृश्यम, द कंक्लूजन, डिगर, वेरिटी, ये सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। साथ ही में द वन, एवेंजर्स एंड गेम, एनको एट्सेट्रा, बाकी की जो फिल्में आर कैरिंग ओवर जो पहले रिलीज हुई थी। लेकिन तू है मेरी किरण का जो ट्रेलर है इसको फर्स्ट रिलीज थिएटर्स में मिलेगा।
1: ओके,
0: ऑनलाइन नहीं ये रिलीज होगा। और ये फिल्म जो है आफ्टर फ्यू डेज द ट्रेलर विल देन ड्रॉप डिजिटली। सबसे पहले जो है ट्रेलर विल, इस फिल्म का ट्रेलर जो है फिल्मों के साथ थिएटर्स में देखने को मिलेगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तू है मेरी किरण जो है इसे पास कर दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा विद एन UA16+ सर्टिफिकेट। और ट्रेलर का जो ड्यूरेशन है 2:17। विशाल राणा, सर्वेश गोयल जैसे लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और करण रावल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म जो है 23 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है।
1: वेरी इंटरेस्टिंग। सो 23 अक्टूबर इज नॉट फार अवे। अभी देखते हैं कि वंस इट रिलीजेस तो इनको ऑन स्क्रीन फॉर द सेकंड टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक साथ देखने में लोगों को कैसा लगता है, बिकॉज इससे पहले इन दोनों ने डबल एक्सल में मेरे ख्याल से काम किया था। 30 मिनट हो रहे हैं, 9:00 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का हमारा डेली राउंड अप।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
4: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
10: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
11: It's Farmers Sleep Sale with super deals across all Sleepyhead Queen beds. Get the chiropractic firm mattress now $1,199 or the Balance Plus Queen bed set now $2,699. Great bed deals now on at Farmers Sleep Sale. Conditions and exclusions apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: What's going on?
3: डेली राउंडअप का वक्त है. आज सबसे पहली खबर जो है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है. जब तीन लोगों की लाशें कल रात साउथ ऑकलैंड के एक प्रॉपर्टी पर मिली, पुलिस को कैम्ब्रिज टेरेस पापाटोयटोय में कल शाम 6:30 बजे के वक्त बुलाया गया. और जब उन्हें खबर दी गई कि एक व्यक्ति जो है ये मृत है, वहाँ पहुँचने पर इस व्यक्ति की लाश के अलावा पुलिस को दो और लोगों की लाशें मिली. और पुलिस का कहना है कि अभी अर्ली स्टेजेस में है छानबीन, वो किसी की तलाश नहीं कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों की मौत कैसे हुई थी.
4: और इसके अलावा खबरों में और भी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, आपको याद दिला दें, बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड में वेपिंग एक बहुत बड़ा इशू जो है ये बनता जा रहा है. अगर देखें तो रिपोर्ट्स जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यंग कीवीज आर स्टक इन दिस निकोटीन साइकिल, जिसको लेकर काफ़ी इश्यूज रेज किए जा रहे हैं. कंसर्न्स ये है कि ओरल निकोटीन पाउचेस जैसे जिन्स जो है, इट विल ब्रिंग द सेम प्रॉब्लम्स एज वेपिंग, जबकि यंग पीपल दे लुक फॉर अल्टरनेट्स फॉर देयर निकोटीन हिट. तो इस पर अभी फिलहाल के लिए कुछ एक्शन लेने की मांग जो है ये की जा रही है.
3: खबर आ रही है कि सरकारी एजेंसीज जो हैं ने स्पेंड किया मोर देन $1 million ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदीज विजिट इन जुलाई. ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत रेडियो न्यूजीलैंड ने जो डिटेल हासिल की है उसमें कहा गया है, दो दिनों के इस विजिट में एक मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑकलैंड में शामिल था, एज वेल एज इवेंट्स फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल ट्रेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज. और आरएनजेड ने जो स्पेंडिंग इंफॉर्मेशन है ये हासिल किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स से, न्यूजीलैंड पुलिस, न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, न्यूजीलैंड ट्रेड एंड एंटरप्राइज in the Ministry of Foreign Affairs and Trade through Official Information Act request. Agencies ne combined $1,021,168.93 spend kiye the once the figures provided jo hai inko tally kiya gaya. Department of Internal Affairs ne total of $638,309 spend kiye. Department ka kehna hai ki ye cost was in line with expectations and reflected the complexity and the special nature of the visit. General operating costs were highest at $293,698. Government hospitality, including cost associated with New Zealand India business event, the winning partnership gala celebration or gold mine innovation experience sport gathering, $244,983. Accommodation, meal and other travel related cost included cost associated with the guest of government, $53,759. Transport cost, $31,141. Domestic travel, $14,728. New Zealand Police, next biggest spender raha, with a bill of $217,515 as of 28th August.
4: इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स जो है ये सामने आए हैं. और इसके अलावा स्कूल छुट्टियों का पहला ये हफ्ता अब इज कमिंग टू एन एंड. तो कहा गया है कि वेट एंड विंडी वीकेंड अहेड हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर आपके कुछ आउटडोर प्लान्स हो विद द किड्स दिस वीकेंड तो शायद आपको उसे थोड़ा रीस्केड्यूल करना पड़े. यू माइट हैव टू चेक द फोरकास्ट बिफोर आप बाहर जाए. वेट एंड विंडी वीकेंड इज़ ऑन द वे फॉर पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड, जबकि एक फ्रंट है ये मूव हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू डीप साउथ. सर्विस ने फोरकास्ट किया है हैवी रेन इन स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टली विंड्स विद गस्ट्स रीचिंग अप टू 90 किलोमीटर स्पेंड इन आवर एक्सपोज्ड एरियाज के लिए. ये सिस्टम जो है इट विल मूव अप द साउथ आइलैंड बिफोर रीचिंग द लोअर नॉर्थ आइलैंड सैटरडे को, विद रेन एक्सपेक्टेड टू रीच ऑकलैंड एंड नॉर्थलैंड ऑन संडे. देर आर ऑलरेडी हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड वॉचेस इन प्लेसेस फॉर पार्ट्स ऑफ साउथ आइलैंड. लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये है कि टुमारो कुड एक्चुअली फील प्रीटी वार्म, और ऐसे में टेम्परेचर्स जो है ये एक नोटिसेबल टम्बल आपको दिखेगा इसमें, क्योंकि डिग्रीज जो है ये शायद अचानक से ऊपर नीचे जो है ये होते रहे. सो दैट्स द डेली राउंड अप फॉर टुडे, और उम्मीद करते हैं कि इट विल हेल्प यू मेक सम राइट डिसीजंस.
2: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन। दो बातें,
1: कमाल की दो बातें हैं आज की। और एक कड़वा सच पहले आपको बता देते हैं, चेहरा साफ मन में दाग।
2: चेहरा साफ मन में दाग,
1: सामने ताली पीछे गाली।
2: अरे वाह,
1: मुंह पे आप पीठ पे सांप।
2: वेरी नाइस,
1: यही है आजकल के लोगों का रिवाज।
2: आई रियली लाइक इट। आप फिर से बोल सकते क्या एक बार?
1: चेहरा साफ मन में दाग, सामने ताली पीछे गाली, मुंह पे पाप पीठ पे सांप, यही है आजकल के लोगों का रिवाज।
2: वेरी ट्रू।
1: और दूसरी बात, बुराई ढूंढने का शौक है?
2: हाँ जी।
1: आईना खरीदिए, दूरबीन नहीं।
2: वेरी नाइस, वेरी नाइस, या वेरी क्रिएटिव आजकल की आपकी दो बातें जो होती है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे अब इजाज़त, जाने का समय हो रहा है। उम्मीद है कि आज का आपका फ्राइडे हमारे साथ अच्छा बीता। लुक फॉरवर्ड करेंगे अब मंडे को एक बार फिर आपसे मुलाकात करने की, और ये भी उम्मीद करेंगे कि ये जो वीकेंड है आपका बहुत ही बढ़िया कमाल का गुजरे और आप अपने इस वीकेंड को भी इंजॉय करें। जाते जाते आज का थ्रोबैक आपके नाम हम छोड़े जा रहे हैं, बाकी का सफ़र इंजॉय कीजिएगा हमारे बाकी साथियों के साथ जो कि बारी बारी आएंगे आपको एंटरटेन करने के लिए।

0: Birds Adda.
1: तो हमारी एक्सपर्ट तो टेलीफोन लाइन पर आ चुकी हैं एंड रचना जी काफी दिनों के बाद आप आई हैं. नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू यू. हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग काशिका जी. नमस्कार, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: जी. आज 2 अक्टूबर का दिन है. आज का दिन है बड़ा महान. आज के दिन दो
2: फूल जयंती है जी.
1: हाँ जी बिल्कुल, हम दो फूल आपस में बातें भी कर रहे हैं. मैंने कहा था कि आप आने वाली हैं, तो मैंने कहा अरे वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू रचना जी, हमने आपको मिस किया. एंड इन्होंने पूछा है कि अगर इनको अपने घर को उसका लोन उनको फिक्स करना है, क्या 1 साल के लिए करें कि 2 साल के लिए करें? सीइंग द करंट मार्केट सिचुएशन, व्हाट डू यू सजेस्ट?
2: ओके, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. एंड देखो, हम सभी को पता है लास्ट दोनों बारी OCR इंक्रीज हुआ है बाय 0.25%. ठीक है, तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि वन मोर राउंड, वेदर इन अक्टूबर वो लोग इंक्रीज करेंगे या नवम्बर में इंक्रीज करेंगे, बिकॉज OCR एवरी 6 वीक्स रिव्यू होता है. ओके, एंड वो रिजर्व बैंक का डिसीजन होता है कि वो इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे. ओके, नाउ बेस्ड ऑन व्हाट द OCR इज, यूजुअली बैंक डिसाइड्स देयर फ्लोटिंग रेट एंड सम और द अदर वे फिक्स्ड रेट्स आर इम्पैक्टेड. अगर आप आज के डेट में देखो, 1 ईयर का रेट मोस्ट ऑफ द बैंक आर ऑफरिंग 4.99. वन ऑफ द बैंक इज ऑफरिंग 4.79 एट 80% लेंडिंग. ठीक है,
1: ओके,
2: एंड 2 ईयर्स का रेट है 5.45. नाउ आप अगर 6 महीने में ही घर बेचना चाहते हो तो मुझे आप बताओ, आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए लोन को क्यों फिक्स करोगे? अगर आप हाई LVR पे हो, मतलब 90% लेंडिंग पे हो, तो आप 2 साल के लिए क्यों लो इक्विटी मार्जिन पे करके 2 साल के लिए फिक्स करोगे? सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सिचुएशन टू सिचुएशन इट चेंजेस वेदर यू नीड टू फिक्स इट फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, और हैव अ ऑफसेट फैसिलिटी और अ फ्लेक्सी फैसिलिटी. तो ये केस बाय केस बेसिस पे होता है, बट एट दिस गिवन पॉइंट मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर गिविंग 1% कैशबैक. तो जिन जिनको 2 या 3 साल हो चुके हैं अपने बैंक से या 2 या 3 साल होने वाले हैं अपने बैंक के साथ, तो प्लीज आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वेज वेर वी कैन ऑफसेट द इंटरेस्ट. मतलब हम कोई जादू की छड़ी लगा के आपको अगर 5% इंटरेस्ट रेट है तो 4% नहीं दिलवाते, बट द वे वी स्ट्रक्चर इट, द वे वी कैन गेट यू द कैश बैक, द वे वी कैन ऑर्गेनाइज योर लोन विल एंड अप हेल्पिंग यू सेव लॉट ऑफ मनी ऑन योर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड हेल्प यू पे द मॉर्गेज फास्टर. सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप 0800 रचना पे कॉल करो एंड यू नो डिस्कस योर own situation and then we'll give you the tailor-made solution rather than one dawai ki aap 1 saal fix kar lo ya 2 saal fix kar lo.
1: I agree, but definitely I think the best thing would be to as rightly said by you, only when an expert gives us this kind of a suggestion ya hum baat karte hain aapke sath to hame ye baatein hoti hain, but you don't realize it.
2: Sometimes आप भूल भी जाते हो, तो ये kind of a gentle reminder हो जाता है कि just because की जो cheapest human psychology होती है कि cheapest rate है तो उसको fix कर लो, but क्या वो term आपके लिए सही है कि नहीं, क्या वो rate सही है कि नहीं, क्या market में उससे cheaper rate available है कि नहीं, वो हमारा रोज का काम होता है तो वो हम करते हैं. Look, if you want to call me, it's no obligation. आप मुझे 0800 रचना, which is 0800-722-462 पे कॉल कर सकते हो, या आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, which is Level 3, 45 Mount Wellington Highway, Mount Wellington. So you're more than welcome to come and we can just give you the tailor-made solution.
1: Awesome, great. So इधर उधर जाने से बचना. कॉल करो रचना. थैंक यू सो मच रचना फॉर टुडे. अगले हफ्ते आपसे दोबारा बातचीत करेंगे.
2: बिल्कुल,
1: टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मोर पावर टू यू. बाय.
2: थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर, लिव बेटर. ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing. Walking acceleration
4: this,
5: record,
4: this is my fancy English. That's a very...
5: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
9: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462. For first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
14: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel. Packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads. From just $11. Eat

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office shout out. मैं ऑफिस शॉर्ट आउट की जब बात करती हूँ ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एक मेरे दोस्त हैं वेलिंगटन में बैठे हैं. कैसा चल रहा है वेलिंगटन भाई? यहाँ तो ठंड है, ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है. तो इन्होंने लिख के भेजा, वेरी हैप्पी हेल्थी इंडियन नेशन को बापू और शास्त्री जी का हैप्पी टू यू करने वाली, वीकेंड पे वेरी वेलकमिंग बाय करने वाली, नॉट सनी बट ओके ओके वेदर के साथ हम सब के साथ 12 बजे तक रहने वाली, काशिका जी को जय हिंद, एश फ्रॉम वेलिंगटन. ब्यूटिफुल. मैं तो आज पूरे गाने के मूड में लग रही हूँ. बट हाउ आर यू? थैंक यू सो वेरी मच. आप जब इस तरह से लिख के भेजते हैं बहुत अच्छा लगता है. चलिए, ऑफिस शाउट आउट तो आपके लिए हो ही चुका है, लेकिन क्या खास चल रहा है? कुछ खास चल रहा है तो ज़रूर मुझे बताइए इधर उधर. और अभी तो रचना निकल के गई हैं, लेकिन हाँ, इनके लिए टेक्स्ट एक और आया, विच आई विल बी प्रोबेबली सेंड दैट अक्रॉस.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: better, live better.
1: इट्स रियली सैड क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हानिकारक होती है और बापू ने हमेशा कहा था कि भाई सबसे अच्छे रहो, सत्य वचन करो. एक बेस जंपर जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लीप लिया जहां पर एक डेवलप हो रही थी, कोई टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूजीलैंड. बट इस चीज को पुलिस ने बोला ये रेकलेस है. अब इनका नाम तो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है समय, लेकिन इन्होंने अपने आप को फिल्म किया फ्रॉम द 187th मीटर सीस्केप टावर जो एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए तैयार की जा रही है. वीडियोस में दिखाया जा रहा था कि एक बीच रोड के पास लैंड करने से पहले उन्होंने अपना पैराशूट खोला, पहला जंप किया. जब पायलट जो थे जिन्होंने जंप किया उनके साथ में, उन्होंने कहा कि यस दे वेंट. अ पुलिस इज सेइंग दैट दे आर अवेयर ऑफ दिस वीडियो एंड ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे उन्होंने जंप करने की कोशिश की फ्रॉम अ बिल्डिंग फ्रॉम द CBD. माय गुडनेस, इंजरीज आर पॉसिबल इजंट इट. लेकिन इंक्वायरीज की जा रही कि किस तरह से उसे एक ऑथराइजेशन मिल गया टू क्लाइंब अप दैट हाई एंड टेक अ जंप. Isn't that a reckless way? But I don't know. अगर आपको कोई खबर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ. मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ. ऐसी चीज़ें कोई ना करना ओके ओवर द वीकेंड.

0: Eat better, live better.
1: एक रोमांटिक थ्रिलर बहुत जल्द आने वाला है जिसमें मैं कह सकती हूँ 23 अक्टूबर के दिन तू है मेरी किरण, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सोनाक्षी और जहीर उनके हस्बैंड वो नज़र आने वाले हैं. एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. द पोस्टर सीम्स टू ब्रिंग अस सम रोमांस, मिस्ट्री, सस्पेंस. ओके, सो आई एम वेरी श्योर समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ गोइंग टू बी अप ऑन अस लीव. वैसे आप तो सनातन वर्ल्ड सनातन कप के अपडेट्स हमारे साथ लेते ही चले जा रहे हैं. हम थोड़ी देर बाद अपने साथी को भी ऐड करेंगे. लेकिन कोई ऐसा आपके पास ड्रीम है जो आप ड्रीम कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं. आई वुड लव टू इंटरप्रेट.
2: Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
3: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like a massive half price off Tegel products. Stock up on Tegel takeouts, burgers, tenders, nuggets and more. TCs and exclusions apply.
4: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
5: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

0: with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: ड्रीम डायरी तक तो मैं पहुंच चुकी हूं, मगर आज का जो ड्रीम मेरे पास आया है ना, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आई एम सीइंग दैट ऐसा ड्रीम शायद बहुत शायद लोगों को रेयरली आता होगा. बट ओके, नाउ ऑल आई कैन से इज आई मीन आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड बट एंड स्केप्टिकल एज वेल. आपने देखा कि और आपने कहा कि You are a Hindu, okay? And आपने कहा कि आपने देखा कि किसी तरह से आपने snakes को मारते हुए देखा, तो that's why I was a bit hesitant to talk. But कभी कभी ये एक auspicious है, inauspicious है, ये आपने लिख कर पूछा है. तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ that ऐसा होता है that ये inauspicious sign, अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर कह रही हूँ, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर चलो, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंसाइट्स, स्नेक्स जो हैं बहुत सेक्रेड माने जाते हैं, क्योंकि दे आर टाइड अराउंड लॉर्ड शिवा. और इनको हार्म करना, जब ये काम होते हैं नॉन थ्रेटनिंग स्नेक्स को, तो कभी कभी अनलकी साइन इनको माना जाता है. इट्स अबाउट द इनर गिल्ट, फाइनेंशियल लॉसेस, मेंटल स्ट्रेस आपको कभी कभी हो सकती है जब आप सपने में देखते हैं. और रैंडमली एक कोई ओमेन इसको माना जाता है. येस, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, बट इतना ही कह सकती हूँ दैट आपका टेक्स्ट आया, आपने कहा कि चांट द मंत्रा ओम नमः शिवाय. ओके, थैंक यू. और कुछ क्वाइट मेडिटेशन अगर आप करें, एंड यू नो इफ यू फील सम काइंड ऑफ अ गिल्ट कमिंग सम वे ऑफ योर्स, तो मेक श्योर दैट आप यू नो उस चीज़ को क्लियर कर लें. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. एंड इतना ही कहना चाहती हूँ, स्टे ब्रेव.
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए भाई आपको लेके चलती हूँ कैसे गाने की तरफ. आई मीन आई हैव नॉट हर्ड दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जसपिंदर नरूला इज बेस्ट एट हर वोकल्स हियर. वैसे आज मैंने अभी फेसबुक के पेज पर भी पोस्ट किया है और अगर आप जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी इनका जन्मदिन है. जय जवान जय किसान इन्होंने इनका नारा होता था और इनका कहना था कि द लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज़. Isn't that so true? बहुत खूबसूरत कहा था इन्होंने. और इसी तरह बापू ने महात्मा गांधी जी ने कहा था बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड यू नो इन. तो मेक श्योर आप ये मैंने कुछ सेइंग्स जो हैं इनकी दोनों की पोस्ट की हैं. आपको कोई और सेइंग इनकी याद आ रही है तो ज़रूर मुझे बताइए. एंड आप इनफैक्ट बता सकते हैं और सिक्स वर्ड स्टोरी भी आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड इस आज फिनाले होगा. मैं पूरी स्टोरीज के साथ एक वीडियो भी बनाऊंगी तो रेडी हो जाओ. ओके अरे भाई 5599 पे टेक्स्ट करो ना स्टोरी तभी पता चलेगा. ओके नाउ द सॉन्ग विच आई एम ब्रिंगिंग आउट फॉर यू एज आई सेड जसपिंदर नरूला. और उसके बाद एक ऐसा गाना आ रहा है जो सतार खान एंड सलीम मर्चेंट ने बालम जी गाया था. बहुत ब्यूटीफुल है.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 11:02 हो रहे हैं। आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वैसे हमारे दो ऐसे इंडिया में नेशनल डे होता था, गांधी जयंती का दिन आज के दिन सेलिब्रेट भी किया जाता था। और या ये गाना बहुत बजा करता था, यू नो, बचपन में वी यूज टू बी लिसनिंग कि आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। तो जय जवान जय किसान, और ऑफ कोर्स लाल बहादुर शास्त्री जी, कितने हम्बल प्राइम मिनिस्टर, और बापू जो नेशन के अपने इंडिया के नेशन के एक बापू के नाम फादर ऑफ द नेशन माने जाते थे। तो जितने लोग आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं आप लोग, कितने बड़े दिन आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाय द वे, जब कुछ सेलिब्रेशंस होती तो मीठा खाने को मन करता है, और मीठे में खास तौर पे चॉकलेट्स। डू यू थिंक यू कैन ईट चॉकलेट्स इन द मॉर्निंग? चलो इसी बारे में बातचीत करेंगे, हाउ गुड इट कैन बी फॉर यू।
1: बचाओ क्या

0: मैं बात कर रही थी अबाउट चॉकलेट एंड हाउ इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. आई मीन आई लव चॉकलेट ऑनेस्टली, बट देन फिर लगता है ओ माई गॉड मैं कितनी खाऊं, और जब मैं खाती हूँ तो मैं बहुत सारी चॉकलेट खा लेती हूँ. बट आई कैन टेल यू इट इज़ एक्चुअली अ हीरो फॉर अस, क्योंकि जब हम अंदर से डिप्रेस फील कर रहे होते हैं चॉकलेट एक्चुअली हेल्प बहुत ज़्यादा आपको करने लगता है. आपको एक सपोर्ट देता है एक हेल्थी सर्कुलेशन के लिए, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, और जो मिनरल्स और मैग्नीशियम आयन होती है वो बूस्ट ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा माना जाता है. यानी कि अगर आप ब्रेकफास्ट में चॉकलेट ले रहे हैं एंड यू एडिंग सब कोका पाउडर टू दिस विच कंटेन्स बेनिफिशियल एंटी ऑक्सीडेंट्स, तो ये आपके लिए आयन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन डेफिनेटली एड चिया सीड्स और हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू इट, यू शुड डू इट. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कॉफ़ी ऑफ कोर्स, बट I prefer, now I can see matcha. So many people opting out for matcha because caffeine se log hatna chahte hain. But things said and done, coffee plays its own role. Chocolate plays its own role. I can only suggest one thing, that agar aap subha subha, you know, lete hain, this is, chocolate is a very skin loving thing, jo kabhi aap हेज़ल नट्स के साथ अगर ले लें, विटामिन ई है इसके अंदर, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, आपके हाइड्रेशन में, आपके ड्यूई कम्प्लेक्शन में ये हेल्प भी कर सकता है. तो मेक श्योर कभी कभी आप जब सुबह के समय एक डिलिशियस बाइट लेना चाहते हैं, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट. क्या है भई आपके खजाने में सोशल मीडिया से रिलेटेड?
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइंस मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
9: Stuck Take Madness on now at JB Hi-Fi. Save big on phones, TVs, computers and more. Grab the 65-inch Hisense Smart TV for only $1,288 in 7th October. JB, you've done it again.
10: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's Works with an X. Slide

0: Eat better, live better.
1: Mid-morning maza. So mid-morning maza mein meri six word ki story mein aaj aapne likhe bheja, traded genuine smiles for digital emojis. My goodness, isn't that so heavy? It's so true. हम उन लाइक्स का या उन डिजिटल एमोजीज का वेट करते हैं और हमारी जेन्युइन स्माइल्स जो होती हैं खो जाते हैं. लिविंग फॉर नोटिफिकेशंस, डाइंग फॉर अटेंशन. वी टच्ड स्क्रीन्स बट मिस्ड हैंड्स. आई लव दैट. एंड फ्रॉम माय एंड, यू नो देयर इज अ रूल एट माय हाउस विच हम कहते हैं कि खाना खा रहे होते हैं उस समय फ़ोन मत देखो. एंड It's so true, but for me, I can just add my story to it. Dinner table set, everyone stared down. So, मैं ये भी कह सकती हूँ कि you know, अब तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बट ऐसा होता था. So, try and see how you can improve the family time.
0: Six word story. Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
1: तो जब मैं बात कर रही हूँ अबाउट नन अदर देन द सनातन कप जो होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और वहाँ से हमारा साथ बिन मिकिनली पार्क से निभा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भरसक प्रयत्न करते हैं सब प्लेयर्स को इकट्ठा करने की, उनसे बात करने की और हमारे साथ अपडेट्स फेसबुक पे शेयर करने के लिए. एंड आई हैव नन अदर देन नमन विद मी ऑनलाइन. एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग कशिका. एंड हम के लिसनर्स का हम वेलकम करना चाहेंगे वंस अगेन. जबकि आज है फ्राइडे 2nd of October, 11 सनातन वर्ल्ड कप के तहत, तो मैं आपको बताऊं यहां पर माहौल बहुत ही बढ़िया है. एंड जबकि फ्राइडे है, काफी जो पेरेंट्स है शायद आप लोगों ने छुट्टी लिया होगा क्योंकि आपके बच्चे घर पर है, उनको आप लेकर आना चाहते हैं, फील फ्री लेकर आइएगा. और यहाँ पर जो गेम है ये जो शुरू हो गया है, और साथ है मेलबर्न सनातन और फीजी बरारा सांबे तो सनातन के मध में, और फिर एनजेड लंबासा सनातन वही ताकरे सनातन के मध में गेम होगा. एंड देन 12:20 PM ऑस्ट्रेलिया सनातन वेलिंगटन सिटी सनातन में गेम होगा. 1:30 PM आज वेलिंगटन सनातन और फीजी नकाई कोंगो रेवा सनातन के मध में गेम होगा. 2:40 PM वैकाटो सनातन कैलिफोर्निया सनातन का सामना करेगा. 3:50 PM आज फीजी नरेरे मकोई सनातन और एनजेड राकी राकी सनातन के मध में गेम होगा. 5 PM आज होक्स बे सनातन मेलबर्न सनातन के मध में गेम होगा. 6:10 PM एनजेड नंड्रोगा सनातन और एनजेड बा सनातन के मध में गेम होगा. 7:20 PM आज रात मेनिकाउ सनातन ऑकलैंड सनातन के मध में गेम होगा. एंड 8:30 PM एनजेड सनातन ऑल स्टार्स एंड क्वींसलैंड सनातन के मध में गेम होगा. अच्छा, लेट मी टेल यू गाइस, जितने भी हमके लिसनर्स है, दीज आर द टू फेवरेट टीम्स अभी यहाँ पर, एनजेड सनातन ऑल स्टार्स और क्वींसलैंड सनातन, ये बहुत ही फेवरेट है. और क्वींसलैंड सनातन ये तो क्वालिफाई हो चुके हैं, कल इनकी दो गेम्स में शानदार जीत हुई है. थर्सडे वाले गेम्स में कल इनकी जीत हुई है, फीजी नकाई कोंगो रेवा सनातन से इनकी जीत हुई है और वेलिंगटन सनातन से इनकी जीत हुई है. सो इनकी इनके लिए अगर देखा जाए तो बहुत बहुत फैन फॉलोइंग है. और आज सुबह गेम पर जाने से पहले कशिका जी, हम के लिसनर्स को हम बता दें, आज मुझे इन्वाइट किया गया था और आज मैं क्वींसलैंड सनातन टीम के साथ था, जहां पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लिया गया है. अनीश खेम इज दी हार्ट थ्रोब, ये फीजी में बहुत ही पॉपुलर थे, ये रेवा लंबासा के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और अब ये क्वींसलैंड सनातन में है. आज मुझे इनवाइट किया गया, उनकी टीम के पास में गया था सुबह सुबह, आज सुबह अराउंड लाइक 9 o'clock मैंने इनका फ्रेश इंटरव्यू लिया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं जल्द से जल्द हम के फेसबुक पेज पर. और साथ इनके टीम के जो कैप्टन है, आज सुबह ये आए हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से ये न्यूजीलैंड आए कैप्टन अक्षय, इनका भी इंटरव्यू आप देखेंगे. एंड अक्षय सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि इनकी टीम की जीत हुई है कल दो गेम्स में. सो अक्षय भी आ चुके हैं, इनका भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे हम के फेसबुक पेज पर. सो हम के साथ बने रहेगा और हम अपडेट्स आपको बारी बारी से देते रहेंगे. फिलहाल के लिए 11th सनातन वर्ल्ड कप से नंबर वन स्पोर्टिंग डायल हम के लिए, दिस इज राउडी नमन.
1: Wow, this is so exciting. अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं तो बिल मिकिनली पार्क आप भी पहुंच सकते हैं, जहां पे हमारी हम की टीम आपका स्वागत भी करेगी, शायद आपके साथ इंटरव्यू भी कर ले.

0: ईट बेटर लिव बेटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हम शायद मिस आउट कर जाते हैं, और ऐसे में उन चीज़ों को हम आपको याद दिला देते हैं, चाहे वो अनफिल्टर्ड विद शर्ली सेठिया हो। तो ये कॉन्वर्सेशन रुज़बे और सैंडी के साथ हुआ, जहाँ पे हर जर्नी अबाउट न्यूजीलैंड टू इंडिया और किस तरह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्होंने साथ इनको मिला, क्या प्रेशर्स होते, क्या स्ट्रगल्स होते, उसके बारे में बहुत सारी इन्होंने बातचीत हमारे साथ की। एक और चीज़ है उबर ड्राइवर्स, माय डियर उबर ड्राइवर्स, ध्यान से सुनो, इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, मूविंग फॉरवर्ड आप आगे के लिए आपको बता सकते हो कि क्लेम्स मैनेजर आपके साथ टच में रहेंगे, और आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो इनटेक 4 अब खुल चुका है। ऐसे में अगर आप नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज में कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम करंटली बहुत ज़्यादा बिजी है, फ़ोन नहीं उठाएगी आपका, इसीलिए इन्होंने सुझाव दिया है कि आप अप्लाई करें nyfservices.com के ज़रिए, और आपकी एप्लीकेशन जो है जो ऑनलाइन वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। चलो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अगली खबर जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, कल आप क्या कर रहे हैं, पहुँच जाइए 1 बजे दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक एट द मैनकाओ वेलोड्रोम पार्क मैनकाओ, जहाँ मोहम्मद सादिक एंड टीम लाइव फ्रॉम इंडिया आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए एट द दिवाली सेलिब्रेशंस इन एसोसिएशन विद NZI कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI। और साथ साथ वेद प्रचार का हफ्ता चल रहा है, इसी संडे तक चलने वाला है, नहीं गए तो 32 ग्लासगो एवेन्यू पापटोए आप पहुँच सकते हैं शाम 6:20 से 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हैरे समाज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ श्री राम मंदिर में पूज्य राजन जी जो हैं इनका प्रवचन चलने वाला है, चल रहा है और 6 अक्टूबर तक चलेगा। 7 से 9 बजे महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है, तो तैयार रहिए। और बस थोड़ी देर बाद और भी जानकारी, रिसाइकल में रीयूज में आज क्या है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
2: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
3: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
4: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havelit 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
5: MediaWorks Complaints, how can I help?
6: Yeah, hi, you guys made some ads for my local business.
5: Nice.
6: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
6: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
6: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
6: Yes.
5: What's that thing you do again?
6: Stop it.
5: You bring the mouth.
6: Stop it.
5: I'll bring the pie.
6: Stop it, please.
5: Okay.
6: Yeah, sure, I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
6: My name's Bruce.
7: Advertise with
8: MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods,

0: rescue me recycle me
1: dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4 NZPMI.
0: मैं इतना ही कह सकती हूँ रेस्क्यू मी रिसाइकिल मी में. एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रिसाइकिल करते हैं. कभी कभी ऐसा दिवाली के टाइम पे हो जाता है कि लोगों के घर पे मिठाइयाँ या गिफ्ट आने लग जाती हैं, और ऐसे में वो आप उनको भी रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं. क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? आई हैव नो क्लू, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है. हुआ क्या था कि हमारे घर पर हमारे गेस्ट आए थे कोई इंडिया से, और हम उन्हें मिलाने के लिए लेके गए थे किसी एक गेस्ट के साथ. और फिर नॉट दिवाली टाइम बट जनरल, तो हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट लेकर गए उनके लिए. अच्छा, हमने अच्छी तरह पैक किया था और उन्होंने भी चलते चलते एक गिफ्ट पकड़ाई. अब कैन यू बिलीव इट व्हाट इट वाज? दोनों ने एक ही तरह की गिफ्ट एक दूसरे को पकड़ाई, एंड व्हेन वी ओपन्ड इट एट होम वी ऑल वर लाफिंग. ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो एक कंपनी है मार्च 2025 में न्यूजीलैंड की APVM इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको पकड़ा गया ट्राइंग टू एक्सपोर्ट 9098 इंटीग्रेटेड सर्किट्स टू सिंगापुर एंड हांगकांग. ये दो शिपमेंट्स जो थे ऑफ 9098 रिस्पेक्टिवली, अब इन्हें पकड़ा क्यों किया, क्योंकि वाइल द सर्किट्स यूज़ कर रहे थे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, दे कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिलिट्री टेक्नोलॉजी. ये कंपोनेंट्स हमले ज़रूर सुनाई देते हैं, बट इन द रॉन्ग हैंड्स दे कुड सपोर्ट ड्रोन्स, वेपन्स गाइडेंस सिस्टम्स या मिसाइल टेक्नोलॉजी. कस्टम्स इन्वेस्टिगेशन मैनेजर डोमिनिक एडम्स, देखिए कितने ज़्यादा अलर्ट हैं यहाँ पे लोग, उन लोगों ने ये बात की खबर दी. और साथ साथ ये भी बताना चाहा कि जिस तरह से ये इन्हें एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे थे, दे बीन फाइंड विद $19,000 एज ऑफ नाउ. इट कैन बी यूज्ड. और इस तरह से कंपनी को जब देखा गया कि उन्होंने इस टेक चीज़ें जो है ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो है ये इनके लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है. बट ओके, लेट्स नॉट गेट देयर. अभी के लिए मैं चलती हूँ और मंडे की सुबह आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ. तो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है आपके लिए शुक्रवार 2 अक्टूबर, और मेरी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी. मैंने 6 word stories इंस्टा पे तो पोस्ट कर दी हैं, बस फेसबुक पर जाते जाते पोस्ट करके जाऊँगी, ताकि आप उन स्टोरीज़ को जिन्होंने टेक्स्ट किया है डेफिनेटली सुन पाएँ. हफ्ता आपका अच्छा जाना चाहिए, आपका पूरा का पूरा सप्तांत यानी वीकेंड अच्छा जाना चाहिए. रीज़न बीइंग, आपको अपने लिए अपना ध्यान रखना है ना, वरना मंडे की सुबह आके मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ. ऑलराइट, टेक केयर. दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ. फाइनली टेक केयर, बाय.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
10: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30.

नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम बुला, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेरियस फ्राइडे इट इज, और क्या प्लान्स हैं आपके वीकेंड के? वेल, मेरे भी अपने वीकेंड्स हैं और बताऊंगा क्या करने वाला हूं, पर ये सभी के लिए आप एंजॉय करते रहिए, खूबसूरत वादियों के मजे लीजिए, थोड़ी हवा बारिश भी है बाहर तो उसके भी मजे लीजिए। हैव सम चाय, हैव सम कॉफी, हैव सम ब्रेकफास्ट, अगर आपने नहीं लिया तो, वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं बचा, अभी तो डायरेक्ट लंच का ही टाइम होगा, पर जस्ट इन केस अगर आप लेना चाहते हैं तो ब्रंच भी कर सकते हैं। पर यस, आज आपने क्या एंजॉय किया है आप मुझे 5599 पे भेजिए। होम सिक रेमेडीज की बातें भी, जी हाँ, 5599 पे भेजिए ताकि हम थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात करें। यस, भेजिए, आप फोन उठाइए और 5599 पे भेज दीजिए। मैं हूँ केतन और मैं हूँ 3 बजे तक यहाँ पे, बहुत सारी बातें लेके आएंगे लेटेस्ट खबर के साथ, कुछ और भी दमदमाती खबर। बस स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी ओनली ऑन हम 104.2 एफएम के जरिए, रो ऐप के जरिए, वेबसाइट hum.roa.nz, या फिर आप सिटी की तरफ हैं अगर तो 87.7 एफएम के जरिए मुझे सुन सकते हैं। बचाओ क्या?

वेल, जो मैसेज मैंने पिक किया है वो है प्रतीक भाई का। प्रतीक भाई कहते हैं, क्योरा केतन, पुट माय रिसाइकलिंग विली बिन आउट ऑन द कर्ब यस्टरडे ओनली टू फाइंड अ बिग ब्राइट रेड स्टिकर ऑन इट दिस मॉर्निंग सेइंग बिन रिजेक्टेड ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑल बिकॉज एक्सीडेंटली टोस्ट अ सॉफ्ट प्लास्टिक ब्रेड रैपर इनसाइड। Well, back home in Suwa, waste disposal was so simple and straightforward, and you could actually talk to the local collectors. Here in Auckland, standing on my driveway in the freezing morning air, looking at my uncollected bin with a red tag of shame, while my neighbors drove past, felt so embarrassing and ridiculous. How do we navigate these super strict Auckland rubbish rules without getting publicly shamed? प्रतीक भाई, आपके इस रेड स्टिकर ऑफ शेम वाले दुख पर पूरे ऑकलैंड के लोगों ने अपनी आंखें बंद करके ठंडी सांस भरी होगी। या वैसे एक चीज आपको बता दूं, एटलीस्ट यू आर बेटर प्लेस, आप ऑकलैंड में हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक व्लॉग देखा था, सम पीपल वेंट टू जापान एंड वहां का रूल इज इवन मोर स्ट्रिकर। वहाँ पे तो फाइन के साथ साथ जेल भी हो सकती है अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया। यहाँ पे तो क्या, कभी कभी गलत चीज़ चली गई उसमें, रिसाइकल वाला वेस्ट में चला गया, तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड एक्चुअली, इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। बट जापान में तो और भी बहुत ही यू नो टाइट स्केड, मतलब टाइट उनका वो है, क्या बोलते हैं उस शब्द को, मतलब बहुत ही, अरे यार क्या था, अब भी मेरे दिमाग में था, अब भी डैम, जैसे याद आता है मुझे मैं बता दूँ आपको। बट यस, इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ का रूल, स्ट्रिक्ट है रूल्स, यही तो मैं बोला था यार। यही चीज़ मेरे को याद नहीं आ रही थी। बट यस, उनके रूल्स जो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बट यस, चाहे इंडिया हो या फिर फीजी ब्रो, हमारी आदत होती है कि कचरा मतलब कचरा। यहाँ ऑकलैंड में तो रिसाइकलिंग बिन बाहर निकालने से पहले 10 बार चेकिंग करनी पड़ती है, ये प्लास्टिक हार्ड है या सॉफ्ट, नंबर 1 या 5। एक छोटी सी सॉफ्ट प्लास्टिक की थाली या टेक अवे बॉक्स डाल दो और काउंसिल वाले इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर्स रिजेक्टेड का थप्पा लगाकर आगे निकल जाते हैं। ये क्वाइट कॉमन एक्चुअली यहाँ पे देखा है हमने। बट यस प्रतीक भाई, इस रेड टैग वाले ट्रॉमा से बचने के एक बहुत ही बढ़िया देसी जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑकलैंड काउंसिल की रिसाइकलिंग गाइड जो है उसको एक छोटा सा चार्ट अपने फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के साथ चिपका दो। सॉफ्ट प्लास्टिक ब्रेड बैग्स और बबल रैप को रिसाइकलिंग बिन में डालने के बजाय अलग एक इकट्ठा करो, और जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए काउंटडाउन या फिर यू नो एनी अदर प्लेसेस यू गो, वहां के सॉफ्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिन पर ड्रॉप कर दो। और अगर कभी लाल स्टिकर लग जाए तो शर्माना नहीं यार, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अकेले नहीं, यहाँ पर बहुत जनों के साथ होता है ये। बट यस, रॉन्ग आइटम निकाल लो, और हमें सबसे बेस्ट बताऊं, रो ऐप को ऑन करके हम रेडियो चलाकर आराम से एंजॉय करो, स्ट्रेस यू भागेगा ऑनेस्टली। बट यस, एक बार ट्राई करो, जस्ट यू नो इफ एनी वन ऑफ माय लिसनर हैव अ बेटर सुझाव यहाँ पे, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पे। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। 80s के रेट्रो गाने।

0: Yeah, rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Spring आ गई है Mitre 10 Mega Henderson's Home and Garden Evening के साथ. Hands-on activities, delicious food, great deals और garden inspo. 4 to 7 p.m. Thursday, October 8th. सिर्फ Mitre 10 Mega Henderson में.
2: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
3: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
4: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
8: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
9: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
11: The best investment isn't on any stock exchange. It's in New Zealand children. At Barnardo's, every dollar can result in $91 of positive social goods. That's real, life-changing generational returns on investment that, like me, matures over 18 years. Donate to Barnardo's Aotearoa at investinchildren.nz.

चलिए हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। आज के दिन 2 अक्टूबर 1941 को न्यूजीलैंड के फ्लाइट फाइटर पायलट कार्ल एवरिज ने स्कॉटलैंड के कोवी विलेज में अपनी जान देकर कई लोगों की जान बचाई थी। ट्रेनिंग एक्सरसाइज से वापस आते वक्त उनके स्पिटफायर का इंजन जो है वो फेल हो चुका था और प्लेन सीधा हाउसेस की तरफ जा रहा था। एवरिस ने प्लेन से बेल आउट करने के बजाय उससे विलेज से दूर ले जाने की कोशिश की। वो हाउसेस को क्लियर करने में सक्सेसफुल रहे लेकिन उनका प्लेन नियर बाय कोल माइन के रेलवे साइडिंग पर क्रैश हो गया और उनकी डेथ हो गई। 2007 में कोवी को रेसिडेंट्स ने उनकी ब्रेवरी को ऑनर करने के लिए एक मेमोरियल और ब्रॉन्ज बस्ट अनवील किया था, जो कि आप वहां पे जाके देख सकते हैं।

0: कुछ कम्युनिटी न्यूज के भी बात कर लेते हैं। ऑकलैंड आपका दिवाली जो सेलिब्रेशन है वो आने वाला है, सो आप रेडी हो जाइए। महिंद्रा न्यूजीलैंड दिवाली 2026 मनुकाओ वेलोड्रोम पार्क में होने वाला है, जहां पे मोहम्मद सदीक आ रहे हैं अपनी टीम के साथ यहां पे परफॉर्म करने, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डीजे लकी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ये भी आ रहे हैं। डिलीशियस फूड स्टॉल होगी वहां पे, फन राइड्स फॉर द किड्स और काफी स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स भी होने वाला है फिनाले पे, यानी कि एंड में। मनुकाओ विलोड्रोम पार्क, मनुकाओ ये यहाँ पे नाम है जहाँ पे आपको पहुंचना है 3 अक्टूबर को, यानी कि कल के दिन सैटरडे 1 बजे से लेकर 9 बजे के बीच ये इवेंट होने वाला है। कंप्लीटली फ्री एंट्री है, सो यस आप जाइए और एंजॉय करिए, बिकॉज ये जो इवेंट है उसे इन एसोसिएशन विद NZI कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग दिवाली सेलिब्रेशन। तो आइए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। एंड यस, अगर आपको कुछ प्रचार सुनने का है तो मन है तो ये हफ्ता चल रहा है प्रचार अंटिल 4th यानी कि संडे तक, 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो, आप शाम के 6:20 में पहुंच जाइए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आर्य समाज करीबन 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं यहाँ पे, तो उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में अगर श्री राम कथा आपको सुननी है तो यस आप पूज्य राजन जी उनकी उपस्थिति में 30 सितंबर से शुरू हो चुका था और 6 अक्टूबर तक चलने वाला, शाम के 7 से 9 बजे के बीच 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहां पे आप पहुंच के एंजॉय कर सकते हैं। लंच बॉक्स
1: विद केतन, ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी,

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता,

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: An award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and that seat.
6: James, this is a radio ad.
5: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
7: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like buy one, get one half price on Crayola, 20% off Elmer's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
8: Zabardast hits. Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
9: चलिए बात करते हैं न्यूज, फटाफट न्यूज। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक से बढ़कर एक न्यूज जो भी अभी लेटेस्ट खबर आई है। सबसे पहले ऑकलैंड से ब्रेकिंग अपडेट। साउथ ऑकलैंड के पापाटोटो में पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज एक सीरियस इंसिडेंट पर रिस्पॉन्ड कर रही है। कैम्ब्रिज टेरेस को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पॉलिटिक्स में काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रही है, जहां पे लेबर ने $40 मिलियन स्कूल साइंस किट कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑडिटर जनरल से इंक्वायरी की डिमांड की है। लेबर टेंडर्स प्रोसेस और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस प्रॉपर था। एक इमोशनल स्टोरी भी आई उस क्राइस्टचर्च से। पुलिस को वर्ल्ड वॉर वन सोल्जर प्राइवेट विक्टर पॉवेल के मेडल्स मिले हैं। पॉवेल फार नॉर्थ में बॉर्न हुए थे, 1916 में एनलिस्ट किया और 25 साल की एज में फ्रांस में शहीद भी हो गए थे वाइल डूइंग द एक्शन। और पुलिस अब उनकी फैमिली को लोकेट करके मेडल्स रिटर्न करना चाहती है। फ्लाइट में शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। इजराइल बाउंड फ्लाई दुबई फ्लाइट में एक पायलट ने एलिजली दूसरे पायलट को स्टेप किया और एयरक्राफ्ट को क्रैश करने की कोशिश की। पैसेंजर्स और क्रू ने अटैकर्स को रिस्ट्रेन किया और प्लेन सेफली सऊदी अरब में लैंड हो गया। पायलट कैप्टन स्मिथ वचर ने न्यूजीलैंड में डनेडिन के मेनलैंड एयर से ट्रेनिंग ली थी। आर्ट लवर्स के लिए ह्यूज ऑक्शन। साउथ बाइज में वैन गो, सिजैन, मोनेट और रेनॉयर जैसे आर्टिस्ट के वर्क्स ऑक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ वैन गॉग की चेस्टनट ट्रीज इन फ्लावर की एस्टिमेट अराउंड करीबन $320 मिलियन बताई जा रही है न्यूजीलैंड के करेंसी के हिसाब से। एंड NRL अवार्ड्स में वॉरियर्स के लिए बिग मोमेंट। एंड्रयू वेबस्टर को NRL कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, वाइल पेनरिथ स्टार नेथन क्लियरली ने अपने फर्स्ट दिल्ली एम मेडल जीता। सर रॉड स्टुअर्ट ने अनाउंस किया है कि 2027 का फाइनल इंकोर टूर उनका लास्ट मेजर टूर होगा। 6 डिकेड से ज्यादा ट्यूरिंग के बाद 81-year-old सिंगर ने कहा कि वो ट्यूरिंग से फेवर लेंगे, ऑल्दो म्यूजिक कंप्लीटली क्विट नहीं कर रहे। और आखिरी है, ऑस्ट्रेलिया में कार्ड सरचार्ज का बैन आज से इफेक्टिव हो गया है। न्यूजीलैंड में भी सरचार्ज बैन के प्लान है, लेकिन अभी तक प्रोग्रेस स्टॉल है और गवर्नमेंट कह रही है कि वो फीडबैक कंसीडर करना चाहती है।
8: लंच बॉक्स विद केतन।
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
10: हम
8: दिल से Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: चलिए आज का सवाल mostly millennial या फिर उनसे पहले वालों के लिए है. हो सकता है Gen Z वालों ने भी फिल्में देखी हों. ये तो definitely आप मुझे बता सकते हैं. My question is, in the Harry Potter series, what is the name of the wizarding school Harry attends? Harry Potter movie में जो school होता है जहाँ पे Harry Potter जाता है पढ़ने अपने दोस्तों के साथ, वो उस school का नाम क्या है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए 5599 पे.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
9: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
10: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity.